0: the development about SIR in various parts of the country was found to be valid and legally permissible by the Supreme Court of India. Supreme Court ne pure SIR ki prakriya ko challenge karte hue kaun log gaye the? Congress party gayi thi, Communist party gayi thi, CPM gayi thi aur TMC to darjano case kiya tha. तो सबको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को ओके कहा.
1: A fresh political flashpoint is brewing in Uttar Pradesh. Akhilesh Yadav's cryptic warning, Congress not begging, retort, and BJP's attack have put the opposition alliance under a renewed strain. The war of words has now intensified from Ikra Hassan's only Akhilesh pitch to Congress not begging, retort, and Akhilesh cryptic warning. The alliance tensions are spilling into the open. The alliance war is now spilling into a public face-off. Akhilesh SP and Rahul Gandhi to decide the pact. Congress has hit back, saying it's not begging for an alliance. That's the word coming in from the two sides, and all of this is happening right before the UP elections are less than few months away.
2: Samajwadi party aur Congress party ka gathbandhan jo hai wo dono rashtriya neta tay karenge, Rahul ji tay karenge, Akhilesh ji tay karenge, lekin jo Congress party ke netaon ke betuke bayan aa rahe hain yah keval dabav banane ke liye aate hain. Congress कितना पानी में है उत्तर प्रदेश में और बिहार में ये जग जाहिर है. कांग्रेस पार्टी ही जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है. अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो सीट मायने नहीं रखता, जीत मायने रखती है और उस जीत के लिए समाजवादी पार्टी हर स्तर पर जाएगी.
3: हम अपने काम के ऊपर आश्वस्त हैं और हम अपने काम के ऊपर पूरी तरह से लगे हुए हैं. कांग्रेस लड़ेगी और कांग्रेस, राहुल गांधी जी ने जो माहौल तैयार किया है देश में वो राहुल जी ने तैयार किया है. राहुल जी हैं जो डरते नहीं हैं. पूरे देश ने कल देखा है कि किस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने सड़क पर आकर के बताने का काम किया है. तो कांग्रेस कोई दबेगी और डरने वाली पार्टी नहीं है. अरे छोड़िए, हमारे यहाँ भी बहुत सारे नेता हैं, उनके यहाँ भी बहुत सारे नेता हैं. जब बारात चढ़ती है ढोल बजाने वाले बहुत होते हैं, बजाने दीजिए ढोल, क्या फ़र्क पड़ रहा है. इस देश के अंदर इस वक्त हालात ये हैं कि राहुल जी के बिना कोई कुछ नहीं है. कोई भी गलत फहमी ना पाल के रखे. बंगाल के अंदर हाल देख लिया आपने क्या हुआ था. देखिए हाल, राहुल जी ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम विष भी पियेंगे, हम विष भी पियेंगे, हम लेकर के चलेंगे, हम आखिर दम तक कोशिश करेंगे कि साथ चलें.
4: उत्तर प्रदेश में ना तो समाजवादी पार्टी कोर्ट मिलने जा रहा है ना कांग्रेस पार्टी कोर्ट मिलने जा रहा है. ये समझ रहे थे कि हम इस तरह का गठबंधन कर लें, भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे देंगे. इनको आपस में ही लड़ने से फुर्सत नहीं मिल रही है. और अगर एक दूसरे का इस्तेमाल ना करें तो उत्तर प्रदेश की एक सीट भी नहीं जीत सकते हैं. आज तो इनके नेताओं के बयान गठबंधन की जगह लठबंधन नजर आ रहा है.
1: Prime Minister Narendra Modi attended a Bhajan clubbing event in Delhi to mark the birth anniversary of Pandit Deen Dayal Upadhyay. Videos from the evening showed Prime Minister sitting in the front row of the audience while singers and musicians on the stage sang devotion songs. Congress has targeted the Prime Minister, alleging that this time he is seen attending a Bhajan clubbing event, but he avoids accountability and difficult questions on the public platform.
5: भाजपा जो है संस्कृति संस्कार इसके पीछे छुपती आई है. भजन कीर्तन करें, छैना बजाएं, ढोली बजाएं, चिमटे थाली पिटवाएं, टॉर्च लाइट दिए जलवाइए, कोई मना नहीं है. पर देश के प्रधानमंत्री का जो पद पे बैठे उनकी जो जिम्मेदारियां इस देश के प्रति हैं उससे वो मुंह मोड़ चुके हैं, पूरी तरह फेल हो चुके हैं, है ना. तो मुझे ये है कि प्रधानमंत्री जी को ये सब करना है तो झोला आपका जहाँ पर भी पड़ा है उठाइए और चले जाइए ना, करिए सारा दिन यही काम करिए. प्रदेश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ से अधिक की आबादी वाला उम्मीद करता है कि रोटी मिले, रोजगार मिले. महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी में इस भारत के आंकड़े कहाँ खड़े हुए हैं. अर्थव्यवस्था आप देख लीजिए, ये आंकड़े झूठे, इनकी अकड़ यही आंकड़ों से निकालेंगे. तो दुख होता है कि प्रधानमंत्री जी ढोंग और तमाशे और इस तरीके की चीज़ों में पीटते रहिए, ढोल पीछे दिया चलाइए और उससे सब ठीक होता था.
6: कांग्रेस इज नेवर अगेंस्ट इंडियन कल्चर. इट हैज़ बीन पार्ट ऑफ इट एंड इट इज़ पार्ट ऑफ इट एंड इट विल रिमेन पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन. द इशू इज ऑफ पीपल हु आर डूइंग रॉन्ग to the country and trying to cover up by attending such functions and diverting the mind of people from issues, very basic issues like what the ECI is doing. Ganesh Kumar has no right to continue.

0: Just earlier today, the Hanuman Ansh team was there in our NDTV studios, and they were also present yesterday at the Bhajan Clubbing event. Here's their take on the event and the political controversy.
1: Heard that Prime Minister was there at Deen Dayal Upadhyay Park, and he wo haath mein dafli leke baithe the, aur Parvati ka gana chala, Hanuman Ansh ka tha, aur sabhi log jo hain, even the youth, the Gen Z jo hum baat kar rahe hain aaj, ek to Gen Z connect tha wahan pe, Prime Minister bhi the, upar se Bhajan Clubbing, so ye jo mixture tha, in fact aap bhi the us event pe, kaisa raha aapka experience jab Bhajan Clubbing ho rahi thi, Prime Minister the wahan pe, aur kitne log bol rahe the that they were not expecting the Prime Minister, aur wo jab aaye tab mahol hi badal gaya, to Bhajan Clubbing jo एक कॉन्सेप्ट है उसको आप कैसे देखते हैं, स्पेशली विद द प्राइम मिनिस्टर आल्सो अटेंडिंग इट?
2: जी, जितना जो आपने बोला कि ये भजन क्लबिंग का प्रधानमंत्री का वहाँ पे होना सारी चीज़ें, तो ये बस इतना कहूँगा कि ये कितना दिलचस्प है, कितना अच्छा खूबसूरत है कि हमारे प्रधानमंत्री जिनकी जनरेशन अलग है, वो जेंजीज के साथ में बैठ के उनके ही जैसे बच्चे बन गए और इंजॉय कर रहे हैं भजन को, और इससे वो एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि भजन क्लबिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है और आपके जीवन में किस तरह से इम्पॉर्टेंट है और क्या बदलाव ला सकती है, और बाकी सबका उसी तरह से अडाप्ट करना। इससे ये समझ में आता है कि जो जेंजीज की एक इमेज शायद वेस्ट वर्ल्ड ने बनाई होगी या जो भी बनाई होगी, वो नहीं है। भारत के जो जेंजीज हैं, तो भारतीय परंपरा में अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे कोई जेंजीज या ये सब वर्ड ही नहीं है। हम छोटे हैं या तो बड़े हैं, छोटे बड़ों का आदर करते हैं, बड़े छोटों को संभालते हैं और एक सही रास्ता दिखाते हैं। यही परंपरा चली आई है और वही कल देखने को मिला हमारी सनातन परंपरा।
0: And shifting our focus, the Veeramani Poxo case has sparked a political war. On one hand, Vijay alleges there was a cover-up, but DMK refutes these allegations. AIADMK General Secretary has also waded in, crediting the court over the arrest. With the allegations coming its way, DMK has now taken the matter to the Election Commission, alleging that the Chief Minister's remarks violated court observations and ECI norms on unproven allegation. TVK and its counter is now questioning DMK's handling of the case and asking why no case was booked in 2024, what instructions were allegedly given to the police, and why the government is issuing multiple clarifications now. EPS is hitting back at Vijay over the POXO case, claiming that the arrest followed a court direction, not the action of the state government.
3: அன்பும் குறிப்பிட்டார், அரசுடைய முயற்சியிலே அவர் கைது செய்யப்படவில்லை, நீதிமன்றம் எடுத்த முடிவின்படி, நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பின்படி திரு ஜெம் வீரமணி அவர்களை கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்ற தகவலை சொல்லியிருக்கிறார். ஆக நேற்றைய தினம் அரசியல் ஆதாயம் தேடுவதற்காக முதலமைச்சர் திரு விஜய் அவர்கள் தேர்தல் பிரச்சாரின் போது இந்த கருத்து சொன்னது அப்பட்டமான பொய். இன்னைக்கு சினிமாவில் தான்
4: Yesterday, we could see all the DMK leaders are getting overreactive and responding for this issue. Definitely, we are what the real accusation was, a business icon like Veeramani has been accused and FIR has been filed, and he has been investigated also. Further, nothing has been done and the complete investigation has been dropped and closer report has been filed. And court didn't accept, and after that it came to the view of the current government. A case like this, and definitely it would have gone for a highest level of that department as a CM, like CM, when the case was filed or something. Definitely a person like Veeramani, who is a very big icon, and he has access to all higher political power center, and he would have reached the political power center. So we wanted to know which power center gave this excuse, which power center influenced and saved Veeramani.
5: Yesterday's poll speech is disgusting. How can you exploit a POXO case for votes? Our leader, Mr. M.K. Stalin, made it very clear. He gave a statement that the DMK did not interfere. There were no instructions from any of the top DMK that the case should not be investigated. He made it very clear. He said, oh, will Mr. M.K. Stalin speak? And he spoke. And he's saying the same thing again in the meeting. In the meeting, the chief minister says, why Mr. M.K. Stalin has not opened his mouth? I don't know. Probably this script was prepared prior to our leader's statement.
0: A political face-off in West Bengal, MTMC MLA Kunal Ghosh's car was allegedly attacked with eggs and stones and rods in Hooghly as he travelled to Mamata Banerjee's Serampore rally. Ghosh alleged that BJP-backed goons attacked him in the presence of police, calling it an attempt to murder, and was forced to turn back. Mamata accused the BJP of blocking TMC workers and questioned police inaction. BJP has denied any involvement, calling it an internal rift of the TMC.
6: ये जो हमला है ये हम लोग कंडेम कर रहे हैं. ये जो है ये जंगल राज चल रहा है और वहाँ पर उत्तर पड़ा पुलिस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि हर एक जगह पे भाजपा जीटी रोड जैसा इम्पोर्टेंट रास्ता रोक के वो मारपीट कर रहे थे और पुलिस वो अलाउ कर रहे थे, एक भी पुलिस नहीं था. इसीलिए अभी जो कॉम्प्लेन है हम सप्लीमेंटरी कॉम्प्लेन विथ डॉक्यूमेंट्स हम पुलिस को सबमिट करेंगे.
7: আমাদের এমএলএ কুনাল ঘোষের গাড়ি ভাঙচুর করে শ্রীরামপুরেও সবার বাড়ি গিয়ে গিয়ে পুলিশ কাল রাত্রি নাকি বলেছেন. পুলিশ কিন্তু আমার শত্রু নয়, আমি মনে করি আপনারাও আমাদের পরিবারের অংশ, কিন্তু যে কাজটা বিজেপি আপনাদের দিয়ে করাচ্ছে একবার নিজের পরিবারকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন.
8: দেখি আগর বিজেপি কা সরকার নেই বনকে তৃণমূল কা সরকার হতা তো আজ সুকান্ত মজুমদার কে গাড়ি আক্রান্ত সিব নেই হতা. কুনাল ঘোষ কে উপর তো আন্ডা ফেঁকা গয়া, আমার উপর বোম ফেঁকে যাতে, আগর সম্ভব হতা তো গ্রেনেড ভি ফেঁকতে.
9: কুনাল ঘোষ কে উপর যে হামলা হুয়া হে ও বিজেপি নে নেহি কিয়া হে, কিউকি বিজেপি কা জো অধ্যক্ষ হে और मुख्यमंत्री जो है शुभेंदु अधिकारी, दोनों मिलकर बोल दिया है जो कोई तृणमूल का ऊपर आक्रमण नहीं करेगा और बीजेपी का कोई कर्मी इस तरह आचरण नहीं कर रहा है. ये सब कर रहा है जो तृणमूल का लोग था पहले, वो लोग जो तृणमूल से बाहर होके फिर अलग तृणमूल बनाया है, उस लोग ने उस लोग को ऊपर आक्रमण किया है, उसका इंटरनल फाइट है ये. और वो अभी बीजेपी का घर में दोस्त चबाने के लिए ये सब बोल रहा है, बीजेपी इसमें नहीं है.
10: हमें यह विश्वास है कि अपना गाड़ी खुद कुणाल घोष तोड़ा है और उसके बाद अपना टूटा हुआ गाड़ी को लेकर चला गया पुलिस हेडक्वार्टर में और पहले से ही मीडिया को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बोल दिया हम अपना टूटा हुआ गाड़ी लेके जा रहे हैं, फोटो उठाओ. आप एक चीज बताइए तो मेरे को, 4 बजे ममता बनर्जी का सभा है, 1:30 बजे कुणाल घोष वहां पर क्या कर रहा था? पंडाल बांधने गया था. ये कुणाल घोष खुद करवाया है ताकि ममता बनर्जी का पूरा रोशनी वो खींच ले और मीडिया में सारा दिन कुणाल घोष दिखाए, ममता बनर्जी ना दिखाए.
11: उनका ऊपर जो अंधा थेरापी किया गया है वो भी गलत है. ये जो बात हो रहा है ये कानून का मुताबिक नहीं हो रहा है. ये भाजपा ने जो ऐसा स्थिति पैदा कर रहा है इसमें काल जनता दूसरी तरफ से हटना शुरू करेगा तब समाज के लिए हानिकार होगा और हमारा कानून व्यवस्था का ऊपर ये भी गलत असर पड़ेगा.
0: Well, that story and much more goes up on our website ndtv.com. With that, it's a wrap on this edition. Thank you so much for watching.

0: The ideas, the issues, the questions that matter. NDTV Yuva, young voices, bold dialogues. 28 September 2026.
1: Home Minister was in Greater Noida here. Fulsome praise he heaped on Yogi Adityanath.
2: He praised Yogi Adityanath. I have been talking to very senior leaders of the BJP. They are worried and they are also concerned about what's happening on the ground as far as the UP is concerned.
3: Amit Shah will praise Yogi Adityanath. What does he think about Yogi Adityanath being the next big leader, potentially the next Prime Minister candidate? In the first amongst equals list, where is the doubt that Yogi Adityanath is the most popular leader?
1: सभी जी छुट भैया कौन है ये अलायंस होगा कि नहीं होगा
2: अखिलेश यादव ने भी रायबरेली से जो यात्रा मचाता शुरू किया संदेश देने की कोशिश तो राहुल गांधी को की है जरा इस बात को ध्यान तो रखें कि आज इटावा मैनपुरी और कन्नौज में कांग्रेस कार्यालय एक दुकान के रूप में कन्वर्ट हो
1: इंटेंडेड कि भाई अगर पंडित को वू करने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव देन सडनली दिस होल मनुस्मृति एंगल कम्स
4: राहुल गांधी का एक दलित एजेंडा है ही इज वर्किंग ऑन अंबेडकराइट पॉलिटिक्स

0: Hooghly as he travelled to Mamata Banerjee's rally. While Ghosh alleged that BJP-backed goons attacked him in the presence of police, calling it an attempt to murder, and was forced to turn back. Mamata Banerjee has accused the BJP of blocking TMC workers and even questioned the police action. The BJP has denied involvement, calling it an internal TMC fight and pointing to the Ritu Bros of faction. Congress too has condemned the incident, while the state chief, Subhankar Sarkar, has warned that such a culture is harmful for Bengal and its society.
1: हमला है ये हम लोग कंडेम कर रहे हैं ये जो है ये जंगल राज चल रहा है और वहाँ पर उत्तर पड़ा पुलिस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था क्योंकि हर एक जगह पे भाजपा जीटी रोड जैसा इम्पोर्टेंट रास्ता रोक के वो मारपीट कर रहे थे और पुलिस वो अलाउ कर रहे थे एक भी पुलिस नहीं था इसीलिए अभी जो कॉम्प्लेन है हम सप्लीमेंटरी कॉम्प्लेन विथ डॉक्यूमेंट्स हम पुलिस को सबमिट करेंगे
2: আমাদের এমএলএ কুনাল ঘোষের গাড়ি ভাঙচুর করে শ্রীরামপুরেও সবার বাড়ি গিয়ে গিয়ে পুলিশ কাল রাত্রি নাকি বলেছেন পুলিশ কিন্তু আমার শত্রু নয় আমি মনে করি আপনারাও আমাদের পরিবারের অংশ কিন্তু যে কাজটা বিজেপি আপনাদের দিয়ে করাচ্ছে একবার নিজের পরিবারকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন
3: দেখি আগর বিজেপি কা সরকার নেই বনকে তৃণমূল কা সরকার হতা তো আজ সুকান্ত মজুমদার কে গাড়ি আক্রান্ত সিব নেই হতা কুনাল ঘোষ কে উপর তো আন্ডা ফেকা গয়া আমারে উপর বোম ফেকে যাতে আগর সম্ভব হতা তো গ্রেনেড ভি ফেকতে
0: Well, let's now take you to Uttar Pradesh. A fresh political flashpoint is now brewing in Uttar Pradesh. Akhilesh Yadav's cryptic warning, Congress not begging retort and BJP's attack have put the opposition alliance under renewed strain. The war of words has now intensified from Ikra Hassan's only Akhilesh pitch to Congress's no begging retort and Akhilesh's cryptic warning. The alliance tensions are now spilling out in the open. The alliance war is now spilling into a public face-off, like I said, that while Samajwadi Party backs Akhilesh and Rahul to decide the pact, Congress hits back saying that it's not begging for an alliance. Akhilesh Yadav's cryptic message comes amid the growing Samajwadi Party and Congress friction, with both sides now trading sharp barbs ahead of the Uttar Pradesh polls. The BJP is also now piling on, saying that the Samajwadi Party-Congress alliance is consumed by internal fight. It claims that party can defeat the BJP, that neither party can do it alone, and even mocks the dependence on one another.
4: कि आपस में इस प्रकार के बातें कर करके बीजेपी को मौका नहीं देना चाहिए समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ इस बार चुनाव मैदान में है और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के अंदर इसमें इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी और हमारी ख्वाहिश यही है हमारे लीडर अखिलेश यादव जी की कि हम लोग मिलकर ही चुनाव लड़ें
5: समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन जो है वो दोनों राष्ट्रीय नेता तय करेंगे राहुल जी तय करेंगे अखिलेश जी तय करेंगे लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बेतुके बयान आ रहे हैं यह केवल दबाव बनाने के लिए आते हैं कांग्रेस कितना पानी में है उत्तर प्रदेश में और बिहार में यह जगजाहिर है कांग्रेस पार्टी ही जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो सीट मायने नहीं रखता जीत मायने रखती है और उस जीत के लिए समाजवादी पार्टी हर स्तर पर जाएगी
6: अपने काम के ऊपर आश्वस्त हैं और हम अपने काम के ऊपर पूरी तरह से लगे हुए हैं कांग्रेस लड़ेगी और कांग्रेस राहुल गांधी जी ने जो माहौल तैयार किया है देश में वो राहुल जी ने तैयार किया है राहुल जी हैं जो डरते नहीं हैं पूरे देश ने कल देखा है कि किस तरीके से कांग्रेस के लोगों ने सड़क पर आकर के बताने का काम किया है तो कांग्रेस कोई दबेगी और डरने वाली पार्टी नहीं है अरे छोड़िए हमारे यहाँ भी बहुत सारे नेता हैं उनके यहाँ भी बहुत सारे नेता हैं जब बारात चढ़ती है ढोल बजाने वाले बहुत होते हैं बजाने दीजिए ढोल क्या फ़र्क पड़ रहा है इस देश के अंदर इस वक्त हालात ये हैं कि राहुल जी के बिना कोई कुछ नहीं है कोई भी गलत फहमी ना पाल के रखे बंगाल के अंदर हाल देख लिया आपने क्या हुआ था देखिए हाल राहुल जी ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम विष भी पियेंगे हम विष भी पियेंगे हम लेकर के चलेंगे हम आखिर दम तक कोशिश करेंगे कि साथ चलें
7: उत्तर प्रदेश में ना तो समाजवादी पार्टी कोर्ट मिलने जा रहा है ना कांग्रेस पार्टी कोर्ट मिलने जा रहा है ये समझ रहे थे कि हम इस तरह का गठबंधन कर लें भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे देंगे इनको आपस में ही लड़ने से फुर्सत नहीं मिल रही है। और अगर एक दूसरे का इस्तेमाल ना करें तो उत्तर प्रदेश की एक सीट भी नहीं जीत सकते हैं। आज तो इनके नेताओं के बयान गठबंधन की जगह लठबंधन नजर आ रहा है।
0: Moving on to Tamil Nadu, the Veeramani Poxo case has now sparked a political war. On one hand, Vijay alleges that there was a cover-up, but the DMK refused these allegations. And now the AIADMK General Secretary has also waded in, crediting the court over the Granite Baron's arrest. With allegations coming its way, the DMK has now taken the matter to the Election Commission, alleging that the Chief Minister's remarks violated court observations and that the ECI norms are on unproven allegations. The TVK in its counter has now questioned the DMK's handling of the case, asking why no case was booked in 2024, what instructions were allegedly given to the police, and why the government is issuing multiple clarifications now. Meanwhile, EPS is hitting back at Vijay over the POXO case and claimed that the arrest followed a court direction and not state government action. He also accused Vijay of using the case to score political brownie points.
8: அரசுடைய முயற்சியிலே அவர் கைது செய்யப்படவில்லை. நீதிமன்றம் எடுத்த முடிவின்படி, நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பின்படி திரு ஜெம் வீரமணி அவர்களை கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்ற தகவலை சொல்லியிருக்கிறார். ஆக நேற்றைய தினம் அரசியல் ஆதாயம் தேடுவதற்காக முதலமைச்சர் திரு விஜய் அவர்கள் தேர்தல் பிரச்சாரின் போது இந்த கருத்து சொன்னது அப்பட்டமான பொய். இன்னைக்கு சினிமாவில் தான் நடிக்கிறார் என்று சொன்னால் நிஜ வாழ்க்கையில் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்.
9: Yesterday's poll speech is disgusting. How can you exploit a POXO case for votes? Our leader, Mr. M.K. Stalin, made it very clear. He gave a statement that the DMK did not interfere. There were no instructions from any of the top DMK that the case should not be investigated. He made it very clear. He said, oh, will Mr. M.K. Stalin speak? And he spoke. And he is saying the same thing again in the meeting. In the meeting, the Chief Minister says, why Mr. M.K. Stalin has not opened his mouth? I don't know. Probably this script was prepared prior to our leader's statement.
0: All right, moving on to some more updates for you. Well, the External Affairs Minister, S. Jaishankar, has delivered a sharp message to the United Nations General Assembly, remember, attacking Pakistan's support for terrorism and stressing that terrorism cannot be normalized. He said India will exercise its right to self-defense while warning that goodwill cannot coexist with terror. The External Affairs Minister also flagged the fallout of the Gulf and the Ukraine wars, saying that conflicts far beyond their borders are now impacting countries worldwide. He even called for global de-escalation, protection of commercial shipping and seafarers, and action on the four Fs, which essentially are food, fuel, fertilizer and finance, while putting energy and global security at the center of India's message at the United Nations.
10: United Nations enters its ninth decade. It was founded to maintain international peace and security and take effective collective action to that end. Members committed to develop friendly relations and to strengthen universal peace. Yet, even as we meet, conflicts and confrontations remain our primary preoccupation. The inability to maintain peace is not just undermining security, but threatening progress and retarding development. In a globalized world, the effects of war are felt worldwide. Countries far from conflicts are being penalized for no fault of theirs. Those most impacted often have the least say. This assembly must face up to the true state of affairs.
0: Well, in fact, the External Affairs Minister also slammed Pakistan while he was present at the United Nations. Let's also listen in to what he had to say.
11: Everybody from nearby deals, when your government will stop sponsoring terrorism in Pakistan? And why will Gorwig is trying to kill Sikh leader Gurbachan Singh Pallu here in New York? Can you just tell us when your government will top spots you carry them in Pakistan.
12: Terrorist countries asked to be at risk.
0: Alright, on that note, we're slipping into a short break, but well, coming up on the other side of the break is an update from Thailand, where Bangkok is battling severe flooding as all 50 districts have been declared as disaster zones. So bringing you that and a whole lot more, do stay on with us.

0: सुबह।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा, सबका राजा आके और मसाला।
2: The biggest defense lineup: Defense Minister Rajnath Singh, Defense Secretary Rajesh Kumar Singh, Chief of Defense Staff General N.S. Raja Subramani, Army Chief General Dheeraj Seth, Navy Chief Admiral Swaminathan, Air Marshal Tejpal Singh. India's top military and strategic minds on one mega platform. NDTV Defense Summit, 27 September. New Delhi.
3: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
4: A healthier India doesn't happen in a day.
5: It starts with the health choices that we make every day.
6: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे और हर हाथ में हो बेहतर सेहत का अधिकार।
4: Because बनेगा स्वस्थ इंडिया is just not about living longer.
7: It's about living healthier, feeling alive and making every day count.
6: One informed choice और एक healthier action.
4: Giving better health in more hands every day.

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: सबका राजा आटा और मसाला।
3: The biggest defense lineup. Defense Minister Rajnath Singh. Defense Secretary Rajesh Kumar Singh. Chief of Defense Staff General N.S. Raja Subramani. Army Chief General Dheeraj Seth. Navy Chief Admiral Swaminathan. Air Marshal Tejpal Singh. India's top military and strategic minds on one mega platform. NDTV Defense Summit, 27 September. New Delhi.
4: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
5: A healthier India doesn't happen in a day.
6: It starts with the health choices that we make every day.
7: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे और हर हाथ में हो बेहतर सेहत का अधिकार।
5: Because बनेगा स्वस्थ इंडिया is just not about living longer.
8: It's about living healthier, feeling alive and making every day count.
7: One informed choice और एक healthier action.
5: Giving better health in more hands every day.

0: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे दिस इज अ वर्ल्ड बिटवीन ऑर्डर्स अनसर्टन अनरिटन एज ग्लोबल इक्वेशन शिफ्ट Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi. The next chapter of the NDTV Golf Pro-Am begins here. Bigger, bolder, teeing off across India. The course of champions. The conversation of leaders. The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Tee off, 3rd October, Kutub Golf Course, Delhi.
1: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our product.
2: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
3: NDTV's big splash at Apple event.
4: This year at the Asian Games, viewers, India's multi-sport footprint is expanding into unfamiliar territory. The nation is securing podium finishes in disciplines that have been historically, it has been out of reach for India, proving it can rise to the occasion on any surface now. Mixed martial arts, that is where Suchika Tarial clinched a historic bronze, delivering India's first ever medal in the sport at the Games. Over on the water, the rowing contingent defied odds to secure crucial placements despite late crew adjustments. But while the surprises build momentum, traditional strengths continue to save the day. In shooting, you had Kamaljeet and Suruchi Singh struck gold in the 10-meter air pistol mixed team final with a spectacular score of 484.6 points. On the cricket pitch, the women's team dominated their campaign to lock down an early gold. By combining these core victories with breakthrough combat and water sports, India is steadily turning raw potential into balanced continental leaderboard presence.
5: Roshi, पहले सबसे पहले अपना मेडल दिखा दो NDTV के दर्शकों को. वेरी प्राउड मेडलिस्ट, दो दो बार उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है एशियन गेम्स से.
6: आई एम वेरी प्राउड ऑफ टू माय पेरेंट्स, दे आर फार्मर, बट हमेशा हम लोग को जो भी कमियां नहीं देने के लिए लगातार मेहनत करता है.
7: वी फॉट टिल द वेरी लास्ट टारगेट डिस्पाइट हैविंग सम क्रेजी राउंड्स एंड सम क्रेजी स्टेशंस इन द मिडिल, बट वी गिव इट आवर ऑल एंड वी आर हैप्पी टू गो बैक होम विद अ मेडल.
8: पूरा हम कॉन्फिडेंस थे कि जो इस बार एशियन गेम्स में जरूर एक मेडल हम जरूर लेना है, तो सर को भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस थे हर टाइम में, हर ट्रेनिंग में. तो बस यही सर का जो कॉन्फिडेंस है मेरा स्ट्रॉन्ग, मतलब उनसे ताकत मिलते हैं. तो बस मैंने भी ट्राई किया कि इस बार तो पक्का मुझे जरूर एक मेडल जरूर इंडिया के लिए देना है.
9: मिक्स टीम में नाम आ गया तो मेरे को अब तो एक मौका हो रहा है, मतलब इसका भी मेडल का, तो इसमें मैं अपना बेस्ट करूँगा और मैं किया तो आ गया मैं मेडल.
10: इस कमबैक के असली हकदार मेरे कोच और मेरी मम्मी हैं, जिन्होंने मेरा दिमाग रीसेट करने में मेरी बहुत बहुत ज़्यादा मदद करी है. वरना मैं एकदम इस वाले मैच में भी लास्ट मैच का फील लेती रहती और मैं ये इस मैच में भी अपना परफॉर्म नहीं कर पाती.
11: तो लास्ट मैच के बाद आप भी काफ़ी मायूस हो गए थे?
10: बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने इतना स्कोर कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था.
12: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात.
13: वाओ मामा, क्या स्वाद है!
14: अरे मेरे राजा,
15: सबका राजा आर्थर मसाला.
0: The biggest defense lineup. Defense Minister Rajnath Singh, Defense Secretary Rajesh Kumar Singh, Chief of Defense Staff General NS Raja Subramani, Army Chief General Dheeraj Seth, Navy Chief Admiral Swaminathan, Air Marshal Tejpal Singh. India's top military and strategic minds on one mega platform, NDTV Defence Summit 27 September, New Delhi. मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज.
4: A healthier India doesn't happen in a day.
14: It starts with the health choices that we make every day.
16: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे और हर हाथ में हो बेहतर सेहत का अधिकार.
4: Because बनेगा स्वस्थ इंडिया is just not about living longer.
17: It's about living healthier, feeling alive and making every day count.
16: One informed choice और एक healthier action.
4: Giving better health in more hands every day.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये ही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: A healthier India doesn't happen in a day.
2: It starts with the health choices that we make every day.
3: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे और हर हाथ में हो बेहतर सेहत का अधिकार.
1: Because बनेगा स्वस्थ इंडिया is just not about living longer.
4: It's about living healthier, feeling alive and making every day count.
3: One informed choice और एक healthier action.
1: Giving better health in more hands. Every day.

0: पवन शरावत, पवन आप ओपनिंग सेरेमनी के दौरान फ्लैग भी आपने कैरी किया था, आपको तब लग रहा था कि ये मोमेंट आएगा, फ्लैग तो कैरी कर लिया आप, मेडल भी लेके जाएंगे?
1: ये तो मैंने जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे इंडिया कैंप में थे, नेशनल कैंप में थे, वहीं पे मुझे आइडिया था कि इंडिया का गोल्ड आने वाला है। और मैंने पहले भी जितने भी इंटरव्यूज हुए मैंने सभी में ये बोला कि इंडिया गोल्ड लेके आएगा। थोड़ी सी टफ फाइट होगी रन के साथ, लेकिन गोल्ड हमारा ही होगा।
0: पवन, इंडियन टीम क्या इतना ही कॉन्फिडेंट था और इतना ही मतलब काबिल था कि आपको भी नहीं फील्ड करना पड़ा इंडियन टीम को?
1: वो देखियो, गेम प्लान होता है और उनका ओवरऑल फोकस मेरे पे था और यंग प्लेयर्स काफ़ी अच्छा कर रहे थे कैंप के दौरान प्रैक्टिस में, तो इट्स अ गेम प्लान, वो कोई भी खेल ले, बस हमें गोल्ड से मतलब था और गोल्ड हमारा आया भी।
0: मुझे ये बताइए कि बहुत सारे यंग प्लेयर्स थे ड्यूरिंग द कैंपेन, और यंग प्लेयर्स को जो सीनियर्स थे जिन्होंने हैंगझाओ में गोल्ड जीता है, उन्होंने कैसे मोटिवेट किया, कैसे इंस्पायर किया?
1: हम तो यही कर रहे थे क्योंकि यही एक ही मैच है और इसी के लिए हम आते हैं एशियन गेम में। और हम मैं बाहर बैठ के आज मुझे पता था कि जब जो फट से हम खेल रहे हैं मुझे उसको मोटिवेट करना, कहीं से जो भी मुझे आइडिया है आज तक का एक्सपीरियंस है मैंने बाहर बैठ के वही टीम के लिए मैंने किया, जो मेरा काम बन रहा था, जो भी मेरी ड्यूटी था एज ए सीनियर प्लेयर, मेरी ड्यूटी ये बन रही थी कि टीम में जो भी कमी हो उसको मैं पूरी करूँ, प्लेयर्स को बताऊँ, और मैं जो भी ड्यूटी मुझसे दी जाती है मैं वो करता हूँ, अपनी होनेस्टी से करता हूँ, और मुझे लगता है कि कभी भी होनेस्टी से काम किया तो हमेशा मिला है और गोल्ड हमें मिला।
0: पवन, यहाँ पे सिर्फ एक नहीं बल्कि दो दो गोल्ड मेडल्स आए हुए हैं लड़कियों का भी, लड़कियों के बारे में क्या कहेंगे और लड़कियों को इस गोल्ड मेडल से क्या बेनिफिट्स मिलना चाहिए?
1: मैं लड़कियों को नहीं, मैं अपने लिए भी बोलूँगा, लड़कियों के लिए भी बोलूँगा कि बेनिफिट्स जैसे पर्सनली सबको अपनी अपनी एक जॉब पसंद होती है, मुझे भी DSP की जॉब पसंद है लेकिन मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ तो वहाँ पे DSP नहीं देते, लेकिन जैसे योगी जी ने दे रखा है, लड़कियों के लिए भी मैं सेम बोलना चाहूँगा कि उनके लिए भी जॉब की रिक्वायरमेंट की जाए, अभी ना वर्किंग ऑन RBI लेकिन सबकी एक फेवरेट जॉब होती है, तो मैं लड़कियों के लिए भी चाहूँगा कि भाई कोई भी गवर्नमेंट हो, हरियाणा गवर्नमेंट हो, दिल्ली गवर्नमेंट हो या UP कोई भी गवर्नमेंट हो, जो भी मेडल लेके आ रहे हैं, सिर्फ कबड्डी की बात नहीं, किसी भी स्पोर्ट्स में मेडल लेके आ रहे हैं तो उनके लिए जॉब ऑफर की जाए, स्टेट पूरा सपोर्ट करे, ये मेरे दिल से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो भी मेडल हो देश के लिए काम कर रहे हैं तो प्लीज उनको और ज्यादा सपोर्ट किया जाए।
0: थैंक यू वेरी मच एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर द गोल्ड मेडल।
1: थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू
0: देवांग, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू NDTV। आप इस टूर्नामेंट के एक ब्रेकआउट स्टार रह चुके, एक्सपीरियंस के बारे में बताइए।
2: देखो, एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा है और एक्सपीरियंस यूँ लगा लो हम तो काफ़ी साल से खेल रहे हैं तो एकदम से तो एक्सपीरियंस नहीं होता, तो काफ़ी अच्छा खेल खेल के और काफ़ी बहुत सारे मैच खेल खेल के एक्सपीरियंस होता है। और यहाँ पे मैं थैंक यू करना चाहूँगा कैप्टन सर का और कोचिज का जिन्होंने इतना मतलब शुरू से ही भरोसा दिखाया और मेरे को खिलाया और मैं उस पर कायम उतरा, तो काफ़ी एक्सपीरियंस रहा इस एशियन गेम से मेरा।
0: देवांग, आप जैसे कई नए खिलाड़ी थे और कई एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी इस कैंपेन में थे, कैसे जो एक्सपीरियंस जिनके पास था हांगझोउ में गोल्ड मेडल जीतने का, उन्होंने आपको क्या बोला इस कैंपेन के दौरान?
2: उन्होंने बस यही बोला था कि एशियन गेम्स में एक ही टीम है जो मतलब थोड़ा हमारे साथ अच्छा खेलती है, ईरान, तो उसी के साथ अच्छा खेलना था, तो कैप्टन सर ने यही बताया था कोई प्रेशर नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, अपना जो गेम है वो खेलो, और हमने वही किया बिना प्रेशर के, जो हमारा गेम था हमने वो खेला और हमारी जीत हुई।
0: आप एक वर्ल्ड क्लास रेडर है, मतलब सिर्फ इंडिया के नहीं वर्ल्ड के निगाह आप पे है, तो कभी इससे प्रेशर बनता है?
2: जी बिल्कुल नहीं, प्रेशर तो नहीं है, वो काफ़ी खुशी होती है, मोटिवेशन मिलता है कि हम मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड हमें ऐसा मानता है कि हाँ बेस्ट रेडर है, भगवान का शुक्रिया अदा है जो मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है, तो काफ़ी खुशी मिलती है।
0: कबड्डी कहाँ से शुरू हुई?
2: देखो, कबड्डी 10th क्लास के बाद शुरू हुई थी गांव से और वहीं से खेलना शुरू किया था, तो यहाँ तक का सफ़र।
0: और घर वालों को क्या बताओगे आज के विन के बारे में और विन होने के बारे में अगर बात हुआ है या नहीं?
2: देखो, बात हो गया, घर वालों का सपना था कि हमारा भी बेटा एशियन गेम में जाए, गोल्ड ले गया है, तो आज सपना पूरा हुआ है, तो काफ़ी खुश है घर वाले भी और मैं भी।
0: थैंक यू वेरी मच दीपांक, ऑल द बेस्ट। कैसा एक्सपीरियंस रहा गोल्ड मेडल का आपका?
3: एक्सपीरियंस तो बहुत काफ़ी अच्छा रहा, पूरी टीम एक जी जान लगा के खेली और एक टीम स्पिरिट जो होता है वो आज दिखाया टीम ने। मुझे लगता है फाइट तो अच्छा हुआ, बट जो कम गलतियां करेगा वही जीतेगा 100%, तो ईरान के साथ हमने जितनी गलती हम कम कर सके खुद को प्रिपेयर करके कैप्टन के साथ कोचेस के साथ जो भी बात करके पूरा और सीनियर प्लेयर्स की राह मतलब बात सुन के सब ने एक जान बोलते वैसे लड़ा आज और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आया फिर एक बार।
0: कैसा उपलब्धि रहा आपका ये गोल्ड मेडल जीतने का?
3: उपलब्धि तो बहुत अच्छा रहा है मुझे लगता है, बट लास्ट एशियन गेम में हमारे साथ थोड़ा कंट्रोवर्सी भी हुआ था, थोड़ा जो हमारे साथ डिसीजन था वो गलत दे रहे थे, बट वो डिसीजन हमारे साथ आ गया था बाद में। हम तो बहुत खुश है इस बार हम फिर एक बार हमारे हिस्ट्री को फिर एक बार क्रिएट कर पाए जो लास्ट एशियन गेम में भी हमने गोल्ड लिया था इस बार भी, और खुशी का माहौल है बहुत ज़्यादा।
0: कैसे सेलिब्रेशन हुआ अंदर?
3: सेलिब्रेशन तो बहुत अच्छा हुआ, सब खुश थे, कोचेस सारे प्लेयर्स को ही हर एक खिलाड़ी की दिल से इच्छा होती है ना कि हमने गोल्ड मेडल लेके जाए, तो हम तिरंगे के साथ वो अलग ही फीलिंग होती है मुझे लगता है, और जब हम अपने देश का तिरंगा लेके भाग रहे हैं और हमारे कंधे पे तिरंगा है तो मुझे लगता है वो 140 करोड़ लोगों की निगाहें और तिरंगे की निगाह हमारे साथ है, तो मुझे लगता है उसके लिए हमने जी जान लगा कि आज फिर एक बार खुशी की राहत ली है।
0: बहुत सारे ब्रेकआउट स्टार्स था इस कैंपेन के दौरान, उनके बारे में बताइए जरा।
3: ब्रेकआउट स्टार्ट मतलब समझाने?
0: बहुत सारे नए खिलाड़ी भी आपके साथ थे इस बार, उनके बारे में बताइए, देवांग जैसे नए खिलाड़ी। हाँ,
3: नए खिलाड़ी मुझे लगता है हर बार हम इंडियन टीम में एक हिस्ट्री रहा है कि नए मतलब नए और पुराने ये दोनों सीनियर और जूनियर्स का जो कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नए खिलाड़ी को मौका देना भी जरूरी है, क्योंकि कबड्डी बहुत बड़ा गेम है हमारे इंडिया में, और वही कॉम्बिनेशन के सामने इस एशियन गेम में हम आए थे और फिर एक बार हर एक खिलाड़ी ने प्रूव करके दिखाया, जूनियर्स ने भी और सीनियर्स ने भी।
0: एक लास्ट सवाल कि जापान में भी बहुत सारे फैंस आपका मैच देखने के लिए आए हुए थे, सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम नहीं बल्कि कबड्डी टीम के साथ साथ भी बहुत फैंस दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में क्या बोलेंगे?
3: बहुत खुश हूँ, आज कबड्डी गेम इतना बड़ा हो चुका है जब ग्रास लेवल से खेला जाता है इंडिया में, और ये इंडिया का गेम है मुझे लगता है, तो हर एक गांव में से कबड्डी खिलाड़ी आते हैं, और खुशी के बाद मैं भी खुद एक विलेज बैकग्राउंड से हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि आज जैसे बाकी खेले उसको देखने के लिए स्टेडियम पूरे भर जाते हैं, तो आज भी हमारे कबड्डी के लिए इतने स्टेडियम भर रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे कबड्डी जगत के लिए मुझे लगता है।
0: थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द मोमेंट।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: The biggest defense lineup. Defense Minister Rajnath Singh, Defense Secretary Rajesh Kumar Singh, Chief of Defense Staff General N.S. Raja Subramani, Army Chief General Dheeraj Seth, Navy Chief Admiral Swaminathan, Air Marshal Tejpal Singh. India's top military and strategic minds on one mega platform. NDTV Defense Summit, 27 September, New Delhi.
6: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: A healthier India doesn't happen in a day.
2: It starts with the health choices that we make every day.
3: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे और हर हाथ में हो बेहतर

0: General Dheeraj Seth, Chief of Army Staff, Sri Rahul Kamal, CEO and Editor-in-Chief, NDTV, Sri Shiv Arur, Managing Director, Sri Vishnu Shom, Senior Managing Editor, और NDTV families के अन्य सारे सभी members. डिस्ट्रिक्ट डिफेंस कॉन्क्लेव में आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं आप सबके बीच हाजिर हूं. और वैसे 2024 में भी जब NDTV ने यह कॉन्क्लेव किया था तो उस कॉन्क्लेव में भी मैंने शिरकत की थी और देश की सुरक्षा से संबंधित कई विषयों पर चर्चा भी हुई थी. और आप जानते हैं कि इस समय जो यह कॉन्क्लेव हो रहा है तो ऐसे समय में हो रहा है जब ग्लोबल सिनेरियो में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है और वारफेयर के तौर तरीके भी बदल रहे हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज का भी जितनी तेजी के साथ इजाद हो रहा है. ऐसे में इस तरह के आयोजन की जरूरत मैं समझता हूं कि और अधिक बढ़ जाती है, जिससे कि नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस से जुड़े विषयों पर गंभीर और व्यापक संवाद हो सके. होता यह है कि संवाद होता है, डिस्कशन जब होते हैं तो नई आइडियाज भी मिलती हैं, और यदि कोई प्रॉब्लम रहती है तो कभी कभी उन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालने में भी काफी मदद मिलती है. मुझे बताया गया है कि इस कॉन्क्लेव का यही उद्देश्य है कि डिफेंस एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री लीडर्स, इनोवेटर्स और बाकी सभी स्टेक होल्डर्स एक जगह आ सकें और इस महत्वपूर्ण विषय पर वह विचार विमर्श कर सकें. इस आयोजन के लिए मैं NDTV की पूरी टीम को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि यहां हुए डिस्कशंस डिफेंस सेक्टर से जुड़े जो विमर्श हैं उनको और इनरिच करेगी, उनको समृद्ध करेगी. साथियों, पिछले 12 वर्षों में हमारे डिफेंस सेक्टर की न केवल क्षमता बढ़ी है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर हमारे अप्रोच में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है. अब हमारा ध्यान केवल वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज हम आत्मनिर्भर और फ्यूचर ओरिएंटेड डिफेंस इकोसिस्टम बनाने की दिशा में भी तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं. और पिछले 12 वर्षों में भारत के डिफेंस सेक्टर में ग्राउंड ब्रेकिंग इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए हैं, यह मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, और इससे हमारी डिफेंस प्रिपेयरनेस को काफी ताकत मिली है और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भी एक नई गति मिली है और नेशनल सिक्योरिटी भी हमारी और अधिक मजबूत हुई है. पिछले 3 दशकों में हमने टेली कम्युनिकेशन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है. फर्स्ट जनरेशन यानी 1G से लेकर 2G, 3G, 4G और 5G तक की यात्रा केवल मोबाइल नेटवर्क की स्पीड और कनेक्टिविटी बढ़ने की ही कहानी नहीं है. हर एक जनरेशन ने न केवल कम्युनिकेशन की हमारी क्षमता को बढ़ाया है बल्कि कम्युनिकेशन के पूरे सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया है. जैसे 1G से 5G तक मोबाइल नेटवर्क की स्पीड, कनेक्टिविटी और कैपेबिलिटीज बढ़ती गई और इसके साथ कम्युनिकेशन के तरीके भी बदलते गए. ठीक उसी तरह डिफेंस सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी के विकास के साथ हथियारों, सैन्य क्षमता और युद्ध लड़ने के तरीकों में भी लगातार तेजी से बदलाव आया है. और इस बदलाव को दिखाने के लिए वारफेयर की अलग अलग जनरेशंस की बात की जाती है. जैसे आज हम 5th जनरेशन वारफेयर के दौर में हैं, जहां लैंड, वाटर, एयर के साथ साथ साइबर स्पेस और ह्यूमन माइंड भी युद्ध के नए क्षेत्र बन चुके हैं. आज सप्लाई चेन्स भी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का एक नया ग्राउंड बन चुका है. ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम और हाइपरसोनिक जैसी नई टेक्नोलॉजीज पूरे डिफेंस सेक्टर का स्वरूप बदल रही हैं. प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की डिफेंस प्रिपेयरनेस भी इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरमेंट के अनुरूप ही बदल रही है. मैं आपको इसके कुछ उदाहरण देना चाहूंगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए एक डिफेंस एआई काउंसिल और एआई प्रोजेक्ट एजेंसी की स्थापना की गई है। हमने रिलायबल और रेजिलिएंट एआई यूज इंश्योर करने के लिए फ्रेमवर्क और गाइडलाइंस भी जारी किए हैं। ऐसे में इंडिजिनस क्वांटम कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ ने एक रिसर्च सेंटर भी स्थापित किया है और क्वांटम टेक्नोलॉजी को तीनों सेनाओं में इंटीग्रेट करने के लिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क भी जारी किया गया है। और हमारे फॉर्मर डीआरडीओ के यहाँ चेयरमैन भी बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी डॉक्टर कामत। अगर मैं हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की बात करूं तो हमने लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल कर लिया है। और तो और लॉन्ग ड्यूरेशन स्क्रैमजेट इंजन भी टेस्ट कर लिया गया है। इन सभी बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चाहे वह कॉन्टैक्ट वारफेयर हो या नॉन कॉन्टैक्ट वारफेयर हो, काइनेटिक वारफेयर हो या नॉन काइनेटिक वारफेयर हो, भारत की सेनाएं हर डायमेंशन में अपनी क्षमता और प्रिपेयर्डनेस को लगातार और भी तेजी से मजबूत कर रही हैं। साथियों, डिफेंस और स्ट्रेटजिक स्टडीज में एक टर्म आप लोगों ने सुना होगा, फुल्डा गैप। फुल्डा गैप वैसे तो यह एक जियोपॉलिटिकल लोकेशन का नाम है, लेकिन इसका उपयोग स्ट्रेटजिक वल्नरेबिलिटी या क्रिटिकल वीक पॉइंट दिखाने के लिए एक मेटाफोर की तरह भी किया जा सकता है और किया जाता है। आज फुल्डा गैप्स केवल बॉर्डर्स पर ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, एनर्जी, डाटा और सप्लाई चेन्स में भी हो सकते हैं। पिछले 12 वर्षों में ऐसी सभी वल्नरेबिलिटीज को हमने समाप्त करने का काम किया है जो कि हमारे डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकती थी। और साथियों, जैसे सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हम पूरी सप्लाई चेन को भारत में ही विकसित करने पर बल दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसी तरह क्रिटिकल मिनरल्स में इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करने के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भी प्रारंभ किया है। हमने अपने एनर्जी रिसोर्सेस को भी डाइवर्सिफाई किया है ताकि किसी एक सोर्स पर अत्यधिक निर्भरता हमारी न रहे। रिन्यूएबल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा दिया जा रहा है और तेल की आपूर्ति की सुरक्षा, क्रूड सप्लाई सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी बनाए गए हैं। साथियों, अंग्रेजी में दो कहावतें हैं, पहली है इफ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर, यानी युद्ध न हो इसके लिए आवश्यक है कि युद्ध की तैयारी पूरी हो। और दूसरी कहावत है कि द मोर यू स्वीट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वार। इस कहावत से आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं, यानी शांति काल में की गई तैयारी युद्ध के समय होने वाली हानि को सीमित कर देती है। हमने दोनों बातों को ध्यान में रखा है। डिफेंस के क्षेत्र में हमारी तैयारी पूरी भी है और मजबूत भी है, और भी मजबूत करेंगे। हम बदलते समय के साथ लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और साथियों, 2026-27 में डिफेंस मिनिस्ट्री को 7.85 लाख करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा एलोकेशन मिला है, 7.85 लाख करोड़, जबकि 2013 और 14 में यह अप्रॉक्सीमेटली 2.53 लाख करोड़ था। माने डिफेंस सेक्टर पर हमारी गवर्नमेंट ने कितना ध्यान दिया है इस बजट एलोकेशन से आपको पता लग जाएगा। हमारी सरकार ने डिफेंस बजट में कैपिटल एलोकेशन में भी अच्छी खासी वृद्धि की है, और इतना ही नहीं है, आज कैपिटल एक्विजिशन बजट का लगभग 75% यानी अप्रॉक्सीमेटली 1.39 लाख करोड़ डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री से प्रोक्योरमेंट करने के लिए एयरमार्क किया गया है। इसका अर्थ क्या है? साथियों, इसका अर्थ है जब हमारी सेना मॉडर्नाइज होगी तो भारत की फैक्ट्रीज भी मॉडर्नाइज होंगी। जब हमारे सैनिक के हाथों में नए वेपन्स होंगे तो भारत के इंजीनियर्स को नए अवसर मिलेंगे। जब हमारे आर्म्ड फोर्सेज के लिए नया प्लेटफॉर्म बनेगा तो उसके पीछे हजारों एमएसएमई की सप्लाई चेन भी डेवलप होगी। और साथियों, आज का युद्ध केवल सैनिक बनाम सैनिक नहीं है, आज का युद्ध मल्टी डोमेन है। लैंड, एयर, सी, स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, इंफॉर्मेशन वारफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, ऑटोनोमस सिस्टम्स और प्रिसीजन वेपन्स। हम समझ सकते हैं कि भविष्य में सुरक्षा का क्षेत्र और युद्ध का मैदान टेक्नोलॉजी ड्रिवेन होगा। जो देश टेक्नोलॉजी में आगे होगा उसे बैटल फील्ड में स्वाभाविक रूप से एडवांटेज होगा। इसलिए हमने भारत की डिफेंस स्ट्रेटजी को फ्यूचर रेडी बनाने पर बल दिया है और अब हमारा फोकस केवल आज के वेपन्स पर नहीं है, हम आने वाले 10, 20, 25 वर्षों के वारफेयर को ध्यान में रखकर अपनी कैपेबिलिटी डेवलप करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि भारत केवल टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट न करे, भारत ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि भारत टेक्नोलॉजी को डिफाइन करे। भारत केवल दूसरे देशों की मिलिट्री टेक्नोलॉजी का उपयोग न करे, भारत अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी बनाए। साथियों, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देने के लिए हमारी सेनाओं द्वारा 5 पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट जारी की गई है और इनमें शामिल डिफेंस इक्विपमेंट, वेपन सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म्स की कुल संख्या अप्रॉक्सिमेटली 509 है और इनका प्रोडक्शन अब अनिवार्य रूप से भारत की धरती पर ही किया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार हमारी डीपीएसयू द्वारा भी अब तक 6 लिस्ट जारी की गई है। यस, जो 6 लिस्ट है जिसमें 405 आइटम शामिल थे वह पिछले महीने ही जारी की गई है और इनमें शामिल स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एलआरयूज, लोकल रिप्लेसमेंट यूनिट्स इन्हें बोलते हैं। यह स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एलआरयूज यानी लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स, सब सिस्टम्स, स्पेयर्स एंड कंपोनेंट समेत कुल आइटम्स की संख्या अप्रॉक्सिमेटली 5,417 है और इनमें से करीब 3,300 आइटम्स को इंडिजनाइज हम लोगों ने कर लिया है। हमारे डीपीएसयू स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स और सिस्टम्स के इंडिजनाइजेशन की दिशा में इस समय कंपैरेटिवली बेटर काम कर रहे हैं। हमारी फिलॉसफी बहुत ही सिंपल है, जो भारत में बन सकता है उसे बाहर से हम क्यों खरीदें, और जो अभी नहीं बन सकता है वह भारत में क्यों नहीं बन सकता है इस पर काम करें। मैं समझता हूं इसे ही हम आत्मनिर्भरता कहते हैं और यह आत्मनिर्भरता केवल मिसाइल या बड़े शिप्स जहाज बनाने तक सीमित नहीं रहने वाली। यह आत्मनिर्भरता एक स्क्रू से लेकर सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स तक है, एक कंपोनेंट से लेकर कंप्लीट वेपन सिस्टम तक है और यही वह अप्रोच है जो भारत को स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की ओर ले जा रही है। साथियों, आज भारत में एरोप्लेन के इंजन से लेकर ड्रोन इंजन तक बनाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए जा रहे हैं और काफी हद तक लगातार कामयाबी हम लोगों को मिलती जा रही है। सिर्फ 5th जनरेशन फाइटर जेट्स ही नहीं, भारत 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है और मैं जानता हूं इस राह में कई समस्याएं आएंगी, मगर मैं ये आपको आश्वस्त करना चाहता हूं हमारा कन्विक्शन, हमारा संकल्प अटूट है। अगले 10 वर्षों में भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ी लंबी छलांग लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और साथियों, आज दुनिया भारत को केवल डिफेंस इंपोर्टर के रूप में नहीं देखती है, 2025-26 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 38,424 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया एक्सपोर्ट, जबकि 2013-14 में यही एक्सपोर्ट का आंकड़ा 686 करोड़ था। जहां एक्सपोर्ट उस समय 686 करोड़ होता था, उसको आज हम अप्रॉक्सीमेटली 39,000 करोड़ तक ले गए। यानी 12 वर्षों में डिफेंस एक्सपोर्ट्स में अनएक्सपेक्टेड वृद्धि हुई है। हमने पिछले साल यह टारगेट दिया था कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 30,000 करोड़ हो, और वह हमने बहुत ही शानदार तरीके से हासिल किया है। अब हमारा लक्ष्य है कि 2029 समाप्त होते होते हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 50,000 करोड़ का होना चाहिए। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, 29 समाप्त होते होते 50,000 करोड़ के इस टारगेट को हम अचीव करेंगे। हम जानते हैं कि यह होकर रहेगा, और आज भारतीय डिफेंस प्रोडक्ट्स दुनिया के 100 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं, 100 से अधिक, और इन देशों में एशिया और अफ्रीका के साथ साथ लैटिन अमेरिका और यूरोप के देश भी शामिल हैं। यह मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। यह केवल एक इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स नहीं है, यह भारत की बदलती हुई ग्लोबल इमेज है। क्योंकि जब कोई देश भारत में बना डिफेंस प्रोडक्ट खरीदता है, तो वह केवल एक मिसाइल, राडार, एम्युनिशन या प्लेटफॉर्म नहीं खरीदता, वह भारत की टेक्नोलॉजी पर भरोसा करता है, क्वालिटी पर भरोसा करता है, डिलीवरी कैपेबिलिटी पर भरोसा करता है, और मैं ये कहूंगा कि वह भारत पर भरोसा करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि मेड इन इंडिया अब केवल एक मैन्युफैक्चरिंग लेवल नहीं है, मेड इन इंडिया अब यह केवल एक मैन्युफैक्चरिंग लेवल नहीं है, यह धीरे धीरे ट्रस्ट इन इंडिया का सिंबल बन रहा है। अब भारत की फैक्ट्री में केवल हथियार नहीं है, भारत के प्रति भरोसा भी बनता है। भारत की फैक्ट्री में केवल हथियार नहीं, बल्कि भारत के प्रति भरोसा भी बनता है। आज यह बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब भारत का अप्रोच केवल युद्ध के लिए तैयार रहने का नहीं है, हमारी कोशिश ऐसी डिफेंस कैपेबिलिटी और इको सिस्टम बनाने की है जो युद्ध को रोकने के लिए क्रेडिबल डिटरेंस भी साबित हो, और यदि चुनौती सामने आए तो उसका प्रभावी जवाब देने में हम सक्षम भी हों। और साथियों, 2014 में से पहले डिफेंस के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को बहुत सीमित अवसर मिलते थे, और इससे देश में मौजूदा टैलेंट और जो कैपेबिलिटी थी, यानी प्रतिभा और क्षमताएं थी, उनका पूरा उपयोग नहीं हो पाता था, बहुत पोटेंशियल भी वेस्ट हुआ और अपॉर्चुनिटीज भी मिस हुई। 2014 से पहले डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत छोटी विंडो खुली हुई थी, बहुत छोटी विंडो खुली हुई थी, लेकिन आज हमारी सरकार ने प्राइवेट कंपनीज, स्टार्टअप्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के लिए डिफेंस सेक्टर के दरवाजे खोल दिए हैं। इसका परिणाम भी आज साफ दिखाई दे रहा है। अब आप बस कल्पना कीजिए कि 2013-14 में जितना हमारा टोटल इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन था, लगभग उतना प्रोडक्शन तो आज सिर्फ प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। आंकड़े भी दे देता हूं, 2013-14 में इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन 43,746 करोड़ था, आज सिर्फ प्राइवेट सेक्टर 42,000 करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन कर रहा है भारत में। साथियों, भारत में आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम पूरी तरह से बदल रहा है। डीपीएसयूज हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, 16,000 से अधिक एमएसएमईज हैं, स्टार्टअप्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिविजुअल इनोवेटर्स हैं। यह नया डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स केवल दिल्ली या किसी शहर तक ही यह सीमित नहीं है, उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु तक, गुजरात से महाराष्ट्र तक, कर्नाटक से तेलंगाना तक, देश के अलग अलग हिस्सों में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का नया नेटवर्क बन रहा है। साथियों, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में अब तक करीब 70,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए हैं, 70,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए हैं और लगभग 10,000 करोड़ के का इन्वेस्टमेंट अब तक हो चुका है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने सृजन पोर्टल के माध्यम से रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों और सेनाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो हमारे इंपोर्टेड जो आइटम्स होते हैं, आयातित उपकरणों की सूची उद्योगों के लिए उपलब्ध करा दी है। इस सूची में अप्रॉक्सिमेटली 33,000 ऐसी चीजें हैं, ऐसे आइटम्स हैं जिनका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हमारा लक्ष्य है।
1: देशवासियों नमस्कार, मन की बात के सितंबर माह में फिर से एक बार आपको मिलने का अवसर मिल रहा है। मैं देश के सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मन की बात में हम देशवासियों के सकारात्मक प्रयासों को मंच देते हैं, देश की उपलब्धियों की बात करते हैं। भारत की ऐसी ही एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि को एक दिन बाद 10 साल होने जा रहे हैं। ये उपलब्धि है सर्जिकल स्ट्राइक की। 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। एलओसी के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। साथियों, आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। एक समय था जब भारत में सीरियल ब्लास्ट होना बहुत सामान्य बात हो गई थी। सितंबर के इस महीने में यानी 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में अनेक निर्दोष लोग मारे गए थे। इसके कुछ सप्ताह बाद ही मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ था। साथियों, पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, समय बीतने का इंतजार किया जाता था। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं। साथियों, इस साल 9/11 के आतंकी हमले को भी 25 वर्ष हुए हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन निर्दोष लोगों ने अपना जीवन खोया था उनमें अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लोग भारत के थे। मुझे याद है 2014 में पीएम बनने के बाद जब मैं अमेरिका गया था तो न्यूयॉर्क में मैं इन निर्दोष नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंच गया था और आज फिर एक बार मैं भारत के करोड़ों नागरिकों की ओर से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों देश की एक बहुत बड़ी तस्वीर तैयार हो रही है। इस तस्वीर में आप भी हैं, आपका परिवार भी है, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं। मैं बात कर रहा हूं भारत की जनगणना की। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। इन दिनों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के दुर्गम और बर्फीले इलाकों में भी ये काम चल रहा है। वहां से कई प्रेरक अनुभव हमारे सामने आए हैं। उत्तराखंड में जनगणना की शुरुआत चमोली के माणा गांव से हुई। माणा को देश का पहला गांव कहा जाता है। माणा में सबसे पहले 83 साल की पूर्णिमा रावत जी से इसकी शुरुआत हुई। उत्तरकाशी के बगोरी गांव में होमस्टे चलाने वाले हरदेव सिंह राणा जी ने डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज की। साथियों, जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है। साथियों, इसके लिए आपको जनगणना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होता है। ये पोर्टल है sec.census.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, अपना स्थान दर्ज कीजिए, अपने परिवार से जुड़ी जानकारी भरिए और उसे सबमिट कर दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया

0: में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना है। जानकारी सबमिट करने के बाद आपको एक विशेष आईडी मिलेगी। जब गणना कर्मी आपके घर आए तो आप उन्हें ये आईडी बता सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि होने के बाद वो जनगणना का हिस्सा बन जाएगी। साथियों, अब तक मोबाइल से 2,60,00,000 से ज्यादा लोग जनगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भर चुके हैं, स्वगणना कर चुके हैं। आपका भी इसमें थोड़ा सा समय खर्च होगा, लेकिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सही जानकारी, आपके परिवार की सही जानकारी देश के भविष्य की सही तस्वीर तैयार करने में मदद करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 27 सितंबर की ये तारीख एक विशेष कारण से और भी विशेष हो गई है। आज एक ऐसे महानुभाव की 100वीं जन्म जयंती है जिन्होंने संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय स्वर्गीय अशोक सिंहल जी की। 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, जो ऊर्जा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला। जब मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में शामिल हो रहा था तब भी मुझे बार बार अशोक जी की याद आना बहुत स्वाभाविक था। साथियों, अशोक जी के बारे में ऐसी कितनी ही बातें हैं जिनकी उतनी चर्चा नहीं होती। राम मंदिर आंदोलन के साथ ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव और विषमता के खिलाफ भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म एक बेहद समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सिविल सेवा अधिकारी थे। उनके भाई बहनों में भी अधिकांश लोग बड़े बड़े पदों पर रहे। वे खुद भी IIT BHU से ग्रेजुएट थे, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने समाज और संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित किया। यही महान लोगों की पहचान होती है। आज मैं उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके करोड़ों प्रशंसकों की ओर से उन्हें नमन करता हूं। मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत हमने स्वाभिमान के एक महापर्व के साथ की थी। ये पर्व था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। आज से 1000 साल पहले 1026 में मोहम्मद गजनी ने पहली बार सोमनाथ मंदिर को विध्वंस किया था। लेकिन जो लोग सोमनाथ को तोड़कर भारत की पहचान मिटाने आए थे, आज उनका कोई वजूद भी नहीं है। और सोमनाथ मंदिर पूरी भव्यता के साथ विशाल समुद्र के किनारे भारत को अमरता का आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए हमने पूरे गर्व के साथ इस साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। साथियों, ये चर्चा में आज मन की बात में फिर से क्यों कर रहा हूं, इसकी भी एक खास वजह है। 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढ़ेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ था, उसे तोड़ा गया था। यानी मोढ़ेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। 1025 में इस मंदिर का निर्माण राजा भीमदेव ने कराया था। साथियों, आप उस कालखंड के बारे में सोचिए जब इतना बड़ा आक्रमण हुआ हो, सोमनाथ मंदिर जैसा आस्था का इतना बड़ा केंद्र खंडित किया गया हो और कई जगहों पर भी हमले हुए हो, तो किसी भी समाज या शासन का मनोबल टूट सकता था। लेकिन राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था बल्कि कुछ ही समय में मोढ़ेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवड़ता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा। साथियों, मोढेरा सूर्य मंदिर पर भी बाद के कालखंड में हमले रुके नहीं। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर वास्तुकला के इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया था। लेकिन साथियों, हम भारत के लोग सूर्य की उपासना केवल वास्तु और मंदिरों के जरिए ही नहीं करते। हमारी सूर्य उपासना उसका एक अर्थ ये भी होता है, प्रकाश, ऊर्जा, विज्ञान और निरंतरता की प्रेरणा। इसलिए मोढेरा भी आज न केवल सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है, बल्कि गुजरात का ये गांव देश का प्रथम सूर्य ग्राम सोलर विलेज बन चुका है। मोढेरा आज पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता है और उसने देश के सामने सस्टेनेबिलिटी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मोढेरा में पर्यटकों के लिए कई आकर्षण और सुविधाओं की शुरुआत भी हुई है। जनवरी में मकर संक्रांति के बाद वहां मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन भी होता है। इसमें भारत के सांस्कृतिक और शास्त्रीय नृत्यों की अद्भुत प्रस्तुति होती है। मैं चाहूंगा आप सब भी एक बार मोढेरा अवश्य जाएं और भारत के इस गौरवशाली विरासत के दर्शन करें। साथियों, अतीत से हमारा जुड़ाव आज भी बहुत जीवंत है। इसके पीछे उन लोगों का समर्पण और परिश्रम है जो इसे और गहरा बना रहे हैं। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के मनप्पारई में ऐसा ही एक अनूठा प्रयास हो रहा है। एक कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ तमिल स्टडीज से जुड़े ए सेल्वा राजू जी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। एक लेक्चर के दौरान उन्हें अपने एक स्टूडेंट से कुछ प्राचीन प्रतिमाओं की जानकारी मिली थी। इस विषय पर चर्चा के बाद उन्होंने फील्ड विजिट का प्लान बनाया। इस विजिट के दौरान उन्हें अलग अलग जगहों पर कई प्रतिमाएं मिली और प्राचीन मंदिर मिले। अतीत से जुड़ने का एक रोचक प्रयास है। इस प्रकार हम अपनी विरासत को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। ये हमें अपने इतिहास को करीब से देखने और समझने का अवसर देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसी रील्स बार बार हमारा ध्यान खींचती है। हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई प्रयास देखे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं। इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। मुंबई में कुछ युवा समुद्र तटों को साफ रखने की पहल कर रहे हैं। हर हफ्ते किसी न किसी बीच पर सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। यहां दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में युवा छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिकनिक स्थलों पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं। साथियों, इन सभी प्रयासों में एक बात बहुत सहजता से दिखाई देती है। कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया। यही तो जनभागीदारी है। बापू के प्रति हमारी सबसे सुंदर श्रद्धांजलि भी स्वच्छता ही है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हम केवल पेड़ पौधों या जीव जंतु को ही नहीं बचाते, हम उस पूरी जीवन व्यवस्था को मजबूत करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे कुछ प्रयास इस भावना को बहुत सुंदर तरीके से सामने ला रहे हैं। साथियों, असम में सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक समय था जब यहाँ हाथियों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जंगल की जमीन पर इंसानी दखल बढ़ता गया, जिसे हाथियों ने इस इलाके से दूरी बना ली। 3 साल पहले इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और अब इसके अद्भुत परिणाम सामने आए हैं। हाथी यहाँ फिर लौट आए हैं। जिस इलाके में बरसों से उनकी चहल पहल नहीं थी, आज वहां फिर हाथियों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। साथियों, असम में ही एक और सुंदर प्रयास हुआ है। ये प्रयास एक बहुत छोटे से जीव पिग्मी हॉक को बचाने का है। एक समय इसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था। तब केवल 6 पिग्मी हॉक के साथ एक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्हें फिर जंगलों में बसाया गया, उनके रहने के लिए ग्रासलैंड्स को भी संवारा गया। आज इस प्रोग्राम की वजह से पिग्मी हॉक की संख्या 190 से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ उसे सहेजने तक सीमित नहीं है। कई बार हम प्रकृति को संभालते हैं तो वही प्रकृति हमारे जीवन का सहारा बन जाती है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में कुछ महिलाएं इसी रिश्ते की प्रेरक मिसाल पेश कर रही हैं। जारखाली की ये महिलाएं मैंग्रोव के जंगल तैयार कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर वो महिलाएं हैं जिनके पति की टाइगर अटैक में जान चली गई थी। पति को खोने के बाद उन्हें सुंदरबन से ही आजीविका का सहारा मिला। उनके द्वारा लगाए गए मैंग्रोव आज गांवों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन रहे हैं और इन्हें लगाकर इन महिलाओं की कमाई भी हो रही है। साथियों, हम पर्यावरण को सहेजें, प्रकृति के संतुलन का सम्मान करें और उसकी विविधता को सुरक्षित रखें। हमारा हर ऐसा प्रयास भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश के लाखों युवाओं ने नशे के विरुद्ध, ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। युवाओं ने खुद भी नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। इसमें माय भारत के वॉलंटियर शामिल है, एनएसएस से जुड़े हमारे युवा भी इसका हिस्सा है, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय भी साथ आए हैं और अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों संकल्प समारोह और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। साथियों, इस अभियान में एक बात मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी, नशा मुक्ति का संदेश हमारे युवा खुद अपनी भाषा में अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने मन की बात में भी युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़े और मुझे खुशी है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर हमारे युवा हैशटैग नशामुक्त युवा के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं। यानी संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। साथियों, जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, लाल किले से मैंने इस बार स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। भारत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करता रहे, इसके लिए गांवों और कस्बों तक पहुंचकर स्पोर्टिंग टैलेंट को खोजना जरूरी है। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसी काम के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। उनका एक ही पैशन होता है, टैलेंट को खोजना और उन्हें तराशना। हमारे पंजाब में यही काम राजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनके नाम में सीनियर भी जुड़ा हुआ है। वे 1980 के ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। 1982 के वर्ल्ड कप में छाए रहे थे। 2001 में भारत ने पहली बार मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। वहीं 2003 में देश ने सीनियर एशिया कप टाइटल पर कब्जा किया था। इन दोनों ही टूर्नामेंट में वे कोच की भूमिका में थे। अब वे राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी के जरिए अपने पैशन को आगे ले जा रहे हैं। उनके प्रयासों से गांवों में नई हॉकी एस्ट्रोटर्फ बिछाई जा रही है। राजेंद्र जी का फोकस एकदम क्लियर है, ऐसे गांवों में बच्चों की पहचान करना जहां बेहतरीन कोचिंग की सुविधाएं कम है। ऐसे प्रयासों से कई खिलाड़ी भारत के जूनियर और सीनियर लेवल पर अपनी जगह बना रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी के इस समर्पण की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मेरे प्यारे देशवासियों, आंवला हम सभी के लिए बहुत जाना पहचाना है। ज्यादातर घरों में इससे बने अचार और मुरब्बे का प्रयोग होता है। बहुत से लोग आंवले का जूस पसंद करते हैं और सर्दियों में च्यवनप्राश हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो पीढ़ियों से आंवले के गुणों के बारे में बताते आए हैं। साथियों, यही आंवला आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है। प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है। पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं। आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है। आज प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ी करीब 100 यूनिट काम कर रही है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही है। ऐसा ही एक समूह है देवगढ़ कमासी गांव का, सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप। इससे जुड़ी महिलाएं आंवले से कैंडी, मुरब्बा और जूस बना रही हैं। ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच बढ़ने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह एक गांव में विंध्यवासिनी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इस ग्रुप की महिलाएं आंवले का अचार, डाइजेस्टिव पाउडर ऐसी कई चीजें तैयार कर रही है। इन महिलाओं को प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी मिली, लोन की सुविधा मिली, स्थानीय व्यापार मेले से जुड़ने का अवसर भी मिला और देखते ही देखते उनकी आय काफी बढ़ गई। साथियों, हमारे देश के हर क्षेत्र में ऐसी कोई न कोई विशेषता जरूर है। कहीं कोई खास फल है, कहीं कोई पारंपरिक कला है, तो कहीं कोई अनोखा हुनर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाने का अभियान है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे गांव और छोटे शहरों की ये पहचान सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित न रहे, वे देश और दूसरे हिस्सों तक पहुंचे और दुनिया के बाजारों तक भी पहुंचे। इससे वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बल मिलता है। ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी प्रेरणा देता है। आने वाले त्योहारों में भी हमें वोकल फॉर लोकल वाले मंत्र को तो कभी भी भूलना नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, सितंबर का ये महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक कार्य के लिए एक साथ आती हैं। कुपोषण से मुकाबला करने के लिए इस साल कई सराहनीय पहल की गई है। छत्तीसगढ़ ने हर घर मुनगा, घर घर मुनगा ये अभियान शुरू किया है। इसमें लोगों को पौष्टिक मुनगा यानी मोरिंगा को अपने खान पान में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुजरात ने भी वांगी स्पर्धा यानी मिलेट से बने व्यंजनों का कंपटीशन शुरू किया है। इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खान पान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। वहां टीचर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों के माता पिता जागरूकता अभियान से जुड़ रहे हैं। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडियाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है। मुझे आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े उन सभी लोगों पर भी गर्व है जो इस तरह की पहल का हिस्सा रहे हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र अब पोषण ट्रैकर से डिजिटली जुड़ गए हैं। करीब 9 करोड़ लाभार्थी इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल संभव हुई है। हमें कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई को इसी तरह आगे लेकर जाना है। हमें हमारे समाज को कुपोषण से पूरी तरह मुक्त करना है। साथियों, हम सब ने इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया है। देश भर में पूरे भक्तिभाव से गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। यह पावन अवसर पूरे वातावरण को उमंग और उल्लास से भर देता है। साथियों, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश ज्ञान, बुद्धि और शुभ कार्यों के आरंभ के प्रतीक है। उनके प्रति अगाध श्रद्धा सिर्फ भारत में ही नहीं है। जैसे श्रीमान पंथोन थिरखानोन जी, उन्हीं की बात ले लीजिए। वे वैसे तो थाईलैंड के हैं। यहां भगवान श्री गणेश की पूजा फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है। और जब वे 19 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उन्हें भगवान श्री गणेश की एक फोटो भेंट की थी। यहीं से उनमें अद्भुत भक्ति जागृत हुई। वे भगवान श्री गणेश से जुड़ी परंपराओं के अध्ययन में 4 दशक से भी अधिक समय बिता चुके हैं। उन्होंने भारत और नेपाल सहित एशिया के कई देशों की यात्रा की है। महाराष्ट्र से उनका विशेष लगाव रहा है। अष्ट विनायक परंपरा के बारे में जानने के बाद वे कई बार यहां आ चुके हैं। उनके प्रयासों से थाईलैंड के श्रद्धालुओं के बीच भी अष्ट विनायक यात्रा लोकप्रिय हो चुकी है। वर्ष 2002 में उन्होंने उत्तरी थाईलैंड के चियांग माई में गणेश हिमाल म्यूजियम की स्थापना की। आज इसमें 10,000 से अधिक गणेश प्रतिमाएं हैं। म्यूजियम में उन भक्तों के लिए अष्ट विनायक की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं जो भारत नहीं आ सकते। यहां हर रविवार सुबह करीब 10 बजे गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणपति से जुड़े विशेष अवसरों पर भी अनुष्ठान होते हैं। यह बताता है कि भारत की आस्था, कला और सांस्कृतिक परंपराएं दूसरे देशों में भी कैसे लोकप्रिय हो रही है। मेरी कामना है गणपति बप्पा का आशीर्वाद सभी पर हमेशा बना रहे। साथियों, मन की बात के हर एपिसोड के बाद मुझे अनेक विषयों पर आपके संदेश मिलते रहते हैं। आप इसी तरह प्रेरणा से भरी गाथाएं भेजते रहिए। जब आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों की सराहना करते हैं तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। मन की बात के माध्यम से उनके बारे में जानकर देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी प्रेरित होते हैं। ये यात्रा इसी तरह आपके सहयोग से निरंतर आगे बढ़ती रहे। आने वाले त्योहारों को आप अपने परिजनों और दोस्तों के साथ पूरे आनंद और उल्लास से मनाएं। मैं आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: It's a very, very deep privilege this morning to have the chief of the Indian Army, the chief of the army.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: असामाजिक तत्व सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर झूठी, बेबुनियाद और मनगढ़ंत अफवाहें फैला रहे हैं। इससे छात्रों के बीच बेवजह भ्रम पैदा हो रहा है और जितना भी एकेडमिक माहौल है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से ये झूठी और गुमराह करने वाली जानकारी व्यवस्थित रूप में फैलाई जा रही है, उससे तो ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और उसकी छवि खराब करने के लिए सोची समझी कोशिश है। यूनिवर्सिटी साफ तौर पर स्पष्ट करती है कि सभी फैलाई जा रही अफवाहें में कोई भी सच्चाई नहीं है। छात्रों को, अभिभावकों को, पेरेंट्स को, आम जनता को, सबको अनुरोध है कि ऐसी अफवाहों पर विश्वास ना करें, ना ही उन्हें फैलाएं और ना ही उन्हें बढ़ावा दें। उन्हें केवल यूनिवर्सिटी के आधिकारिक माध्यम जैसे कि UMS से दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें।
1: हमने अपनी रेंज के सारे SSPs और मैं खुद यहाँ पे हमने मोबिलाइज की फोर्स, पर यहाँ पे आके इनकी ये बेसिकली डिमांड थी कि 3 दिन पहले एक लड़की का रेप हुआ है और वो घर चली गई है, G3 हॉस्टल की रहने वाली है, उस पर कार्रवाई नहीं हुई और वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास इन्होंने स्टेटमेंट दे दी है, हमने पर्चा दर्ज कर लिया, मतलब FIR दर्ज हो रही है, जल्दी FIR की कॉपी हमारे पास आ जाएगी। कुछ इसके अलावा इनकी और डिमांड्स हैं, उसके लिए 12 बजे मैनेजमेंट के साथ, LPU मैनेजमेंट के साथ मीटिंग रखी हुई है। बॉयज हॉस्टल्स की कुछ डिमांड है, गर्ल्स हॉस्टल की कुछ डिमांड है, स्टूडेंट लीडर से हमारी बात हो गई है, वो 12 बजे तक हम जो है मीटिंग कर लेंगे। जहां तक FIR की सवाल है, FIR रजिस्टर होकर कॉपी इनको दे दी जाएगी, FIR टेक्निकली इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो फोरेंसिक एनालिसिस होगा, जो CCTV एनालिसिस उसका करेंगे, फोन एनालिसिस करेंगे, इसके अलावा स्टूडेंट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको साथ लेके तफ्तीश करेंगे।
2: We will keep tracking that story and getting you the very latest from LTU. For now, we're slipping into a short break, getting you a lot more on the other side. Stay with us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो सुबह केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: आप लुधियाना से?
1: जोधपुर राजस्थान से है।
0: जूनागढ़ गुजरात से आया हूँ।
2: मुंबई गोरेगांव।
3: चित्तौड़गढ़ राजस्थान। कब आए?
4: हम परसों आए थे, कल हम जिम कार्पेट गए थे और कल नैनीताल हो गए, आज इधर आए।
0: कल रात को निकले, आज पहुंच गए।
1: हम कल ही आए थे ट्रेन से और अभी आज घूम के वापस निकल जाएंगे।
5: They've come from different places. Some left home last night, some have been here before. Others don't quite know what to expect. But this morning, they're all heading in the same direction.

0: The road runs through the Kumaon Hills, along the river, around one bend, and then another. And the closer one gets, something changes. There are more cars, more people, and increasingly, more people making that last stretch on foot.
1: इतनी दूर से आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं?
2: हमारी को श्रद्धा है, हम भगवान के दर्शन करने आए हैं अपने।
3: हम बाबा की शरण में आए हैं आज।
4: लोग बाहर से भी आते हैं उनके दर्शन के लिए, क्योंकि एक है उनमें ताकत। आपको कहीं पे भी हो दुनिया में, वो आपको प्यार से खींच लेंगे अपने।
0: Faith, curiosity, habit, hope. Perhaps something harder to explain. Everyone seems to have brought something to this road, and everyone seems to be looking for something at the end of it. Follow the pilgrims. What are they looking for? Where will that road lead?

0: केंची धाम।
1: ये जीवन है आज वो बाबा जी का दिया हुआ है, मैं बाबा जी को बार बार प्रणाम करता हूँ।
2: कुछ फैमिली इशू वगैरह कुछ है तो अंदर से हुआ कि वहाँ जाके आए भगवान के, तो सारे सॉल्व हुए इसलिए फिर हम दोनों आए।
3: मैं सबसे पहले 2019 में आया था, वो भी रैंडम प्लान बन गया था। मैं ऐसे नॉर्मल वीडियो देख रहा था इंस्टा पे, फिर वो नीम करौली बाबा की एक वीडियो आई, फिर मेरा प्लान बन गया। उसके बाद से बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मैं 18 महीने में 10 बार आ चुका।
4: पहली बार सोच रही थी आने का पर मैं नहीं आ पा रही थी, फिर मुझे गुस्सा आया बजरंगबली के ऊपर, बाबा के ऊपर। मैंने उनको एक जैसे फादर बोलते हैं वैसे उनको चिल्लाया कि आप मुझे बुलाते नहीं हो। फिर अचानक से हमारा अचानक ही प्लान बना जाने का, फिर तब से आ ही रहे हैं। तब से 6 महीने में 5 महीने में चक्कर लग जाता
5: है। स्वर्ग देखना है, ये है
0: curious thing. They know the name, they've been told. They recognize the face, they've seen pictures. Many know the stories, they've heard it often enough. But most people who come here today could never have known the man. The mortal being known as Neem Karoli Baba died in 1973. More than half a century later, it is deep faith and blind belief that make people. Many of them born long after his death make their way here. Faith can move mountains, but the genesis of that faith is not to be found here in Kenchi. Beginning, the mountains must be removed, the direction of travel changed southwards 362 odd kilometers towards a small village near Tundla in Uttar Pradesh. Akbarpur, this is where the story begins. It is said that one Lakshman Narayan Sharma was born here around the turn of the 20th century. The record of his early life is mostly hearsay. Much of what is known or popular comes from accounts narrated nearly three quarters of a century later. The broad storyline that got established was about how Lakshman Narayan Sharma married young, had a family, and spent long periods away from home traveling as a holy mendicant, a sadhu.
6: लक्ष्मी नारायण नाम था उनका, सुन गांव का। जब बाबा बने तो लक्ष्मण दास हो गया उनका। उनके हम तो बच्चे ही थे उस समय, उनकी गोद तक मैं खेले जी जाग बोलिए ये जो उनने अपने हाथ से ही बनवाई थी और यहाँ पर ही उनका स्थान था। जब भी आते थे ब्रह्मल से तो यहीं पर रुकते थे और यहीं पर बैठते थे और पूरा गांव उनका इज्जत इतनी करता था कि पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था।
0: His travels, the stories go, took him to different parts of India and along the way he came to be known by names as transient as his stay. Then one of them stuck, Neeb Karoli.

0: In Farukabad district of Uttar Pradesh, there's a village called Neeb Karori. Accounts place Lakshman Narayan Sharma here for an extended period as a resident sadhu. And the name of the village became attached to the man they looked at with holy reverence, Neeb Karori Baba. The surviving images draw a simple picture. A dhoti, a blanket, people around him. The Baba did not leave much in way of his own writing. Much of what is ascribed to him is from the recollections of those who spent time with him.
1: पहली बार आप कब मिले बाबा से?
2: उस टाइम में हम बच्चे थे ना, कक्षा 2-3 में ही पढ़ता था. ऐसा थे वो हम जैसों को जैसे हम थे. अब ये बच्चे ही हैं, इनसे क्या बात करो ज़्यादा. और वो हंसी मजाक भी करते थे, वो हमसे थे, हमसे करते थे. कुश्ती लड़ो तुम बाहर से, कुश्ती लड़ो तो जो जीतेगा मैं उसको ये दूंगा, मिठाई दूंगा. हम कुश्ती लड़ते थे, हम छोटे, इससे कुछ बड़ा होगा ऐसे ही होगा.
1: जी जी. आपकी एज क्या थी जब आप पहली बार हमसे मिले थे?
3: मेरी 15 साल की उम्र थी, 1963 में प्रथम दर्शन किया.

0: For most people arriving at Kenchi, this is the destination. For the man beside us, it is a place of memory.
1: इंडिया के बाद मुझे पढ़ाई के लिए हायर पढ़ाई के लिए नैनीताल आना था. मेरे लिए वहाँ पहुँचना और आसान हो गया क्योंकि बाबा महाराज कैंची में रहते थे और मैं नैनीताल से आता था, तो मेरे लिए कोई बहुत दुर्गम काम नहीं था. मैं कभी कभी पहुँच जाता था वहाँ. आज आप जितनी भीड़ देख रहे हैं इतनी भीड़ नहीं आती थी, लेकिन अच्छा वो माहौल बना हुआ था वहाँ का. बड़ा बाबा जी की महाराज जी के पास बहुत प्रसन्नतावर्धक समय रहता था. जो दिन भर करा, शाम को गाड़ी से फिर वापस नैनीताल आ गए.
2: मन्नत अपने मांगी अपने भैया
3: मेरी कल. मतलब जब मैं यहाँ पहली बार आई थी ना, तो मेरी लाइफ में चेंज हुआ था. सेकेंड टाइम आई थी तो मेरी शादी हो गई. लाइक वो जो मैंने प्रे किया था वही हुआ. और थर्ड टाइम वापस आई हूँ एक और नई विश के साथ.
4: दोस्तों ने बताया था कि उत्तराखंड में नीम करोली बाबा करके महाराज है, वो चमत्कारिक महाराज है. दिसंबर 2020 में मेरा राइट किडनी का ऑपरेशन हुआ था, जिस वजह से मेरी राइट किडनी समाप्त हो गई, खराब हो गई. वही प्रॉब्लम मेरी दूसरी किडनी में 4 साल बाद शुरू हुआ. मैंने बाबा जी से प्रार्थना की, दवाई चालू की, बाबा जी से प्रार्थना की कि बाबा जी अगर दूसरी किडनी में भी यही दिक्कत आती है, यही रोग आता है, तो मुझे मुश्किल, मेरा जीना मुश्किल हो जाता है. तो बाबा जी ने मेरी प्रार्थना सुनी. 15 दिनों में मेरी जो दिक्कत थी, वो मेरी दिक्कत बाबा जी ने संपूर्ण स्वस्थ करके दिक्कत मेरी दूर कर दी.
5: यही मानना था कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए. चल नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो वही बाबा ले अर्जी है कि चला दे, बुला दे. और क्या है,
6: जब यहाँ आए पहली बार में जो मन्नत किए थे वो पूरे होने लगी. फिर हर बार मतलब जैसे अपना एक फैमिली का मेंबर होता, मिलने के बिना नहीं रह सकते, सेम वैसे यहाँ आना स्टार्ट हो गए.

0: पहली बार
1: जब मैं पढ़ता था, जब मैं छोटा सा था तो हमारे स्कूल का ट्रूप आया था, तो हम छोटे बच्चों को लेके नहीं आए थे, पर जब से ही तमन्ना थी मैं बाबा के जाए।
2: अभी जो मूवी देखा उसके बाद में बाबा का दर्शन करने का मन करा, उसके बाद इच्छा कही इमीडिएटली लास्ट वीक मैं सब टिकट वगैरह बुक करके आज बाबा के दर्शन के लिए पहुंचा।
3: ये मेरे अंकल के थ्रू मुझे पता लगा था, उनको भी शायद रील से इंस्टाग्राम के थ्रू पता लगा था, जैसा कि फेसबुक के ऑनर सीईओ मार्क ज़करबर्ग के बारे में, तो बस वहीं से फिर हमने यहाँ पे आना चालू किया था।
4: बाबा के बारे में ऐसे पता लगा हमें कि यूट्यूब पे इंस्टा पे देखा, बाबा की महिमा सुनी, तो हम बहुत प्रभावित हुए।
5: Steve Jobs, who came here searching for Neem Karoli Baba, to Virat Kohli, the names associated with him span across generations as well as continents. Different people, different journeys, but the same strings pull each and every one of them to Kenya.

0: ठीक है बेटा, हम तो बहता पानी है, कहीं भी रम जाएंगे।
1: And now, the story has found another screen. Hanuman Ansh.
2: Swami ho tum, gaadho nata Baba ji.
1: A film inspired by the life and the stories that surround the spiritual journey of Neem Karoli Baba began quietly. Then, people began turning up. A film about a Baba who died more than 50 years ago.
3: मैंने हनुमान अंश मूवी मेरे परिवार के साथ देखी है। ऐसा ही लग रहा था कि साक्षात बाबा ही हमें दिखाई दे रहे हैं, और जो अनुभूति थी वो मैं शब्दों में नहीं कह सकता।
4: मूवी देखी थी लास्ट वीक, और मैं मानता नहीं हूँ भगवान में कि कुछ होता है ऐसा, बट मूवी देखी उसके बाद पढ़ा तो लगा कि हाँ कुछ तो होगा जो इतने लोग आते हैं। तो बस
5: अभी तो ये मूवी का क्रेज है तो इतनी भीड़, इतना क्राउड है। बाकी जब मूवी नहीं थी तब इतना कुछ क्राउड नहीं था। हमने अंदर बैठ के सत्संग किया था, सुंदरकांड पाठ किया था।
6: अभी जो मूवी देखा उसके बाद में बाबा का दर्शन करने का मन करा, उसके बाद इच्छा कही।
2: सेवक हम स्वामी हो तुम।
1: द मीडियम चेंज्ड, द स्टोरी केप्ट फाइंडिंग न्यू ऑडियंसेस। And with every new audience, more people found their way here.
7: तो जी इस टाइम से सितंबर टाइम चल रहा है, ये एक तरह से ऑफ सीजन माना जाता था। काफ़ी कम भीड़ आती थी, मतलब मुश्किल से 10,000 लोग मतलब दिन में आ जाते थे, लेकिन इस टाइम पे वो देखने को मिला मूवी के बाद से काफ़ी भीड़ हो रही है।
8: महाराज जी कम्बल ओढ़ रखते थे हमेशा, तो ऑफरिंग यहाँ से पहले से भी हम लोग, मतलब जैसे दिवाली वगैरह हो गया, कोई ओकेजन है वैसे हम लोग उस टाइम पे ब्लैंकेट्स वगैरह चढ़ाते हैं महाराज जी को, तो वही सारी चीज़ें नॉर्मली चलती हैं, तो पहले से ही हम लोग यहाँ पे ब्लैंकेट बेचते थे। और हाँ, दादी हमारी आज भी कहती है कि महाराज जी कहते थे कि विश लौट कर आएगा यहाँ पे, वो रियलिटी है। महाराज जी कह गए थे वो है सच में, वो चेंज हो चुका है, वो चेंज आ गया, पूरा विश लौट के कैची गया।
1: कैची हैज चेंज्ड, but the reason people come here perhaps hasn't.
9: अलग ही पीस मिल रहा है, अच्छी जगह है, और बाबा के दर्शन करके और अच्छा लगेगा, आपको आनंद प्राप्त होगा।
10: बहुत अच्छा और सुकून भरा लगता है, यहाँ पे शांति है।
6: जो लोगों ने बताया था उससे ऊपर यहाँ महसूस हुआ, बहुत ही पॉजिटिव वेव्स यहाँ मिलती है, मुझे बहुत ही अच्छा आनंद हुआ। जय सीताराम।
1: They came here looking for something. What they found is theirs to know.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द एनडीटीवी गोल्फ प्रोएम बिगिंस हियर। बिगर बोल्डर टीइंग ऑफ अक्रॉस इंडिया। The course of champions, the conversation of leaders, the NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am, tee off 3rd October, Kotub Golf Course, Delhi. Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, aur pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz. Voices that redraw boundaries.

0: For many girls in India today, menstrual health is still shrouded in stigma and silence. This lack of access to resources and information is affecting not just their confidence, but their participation in everyday life. Through Project Mahi, Herbalife is aiming to change just that by giving them access to areas and spaces where they can seek information, ask questions, and take care of their own health. Project Mahi works with adolescent girls across schools and Anganwadi centers, primarily supporting students from grades 8 to 10. The program combines access to menstrual hygiene products with age-appropriate health education, recognizing that lasting change requires both resources and knowledge.
1: प्रोजेक्ट माही से जुड़ने से पहले मुझे पीरियड के बारे में जानकारी थी मगर उतना भी ज़्यादा नहीं था बाद में जब आए सुरेंद्र शैलेंद्र सर तब उन्होंने हमें बताया कि पीरियड्स में हमारे अपना हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए हम लोग जो स्कूल नहीं जाते पीरियड्स में वो हम लोग को स्कूल जाना चाहिए वो ज़रूरी है हम लोग के लिए बहुत सी बातें हम लोग को उन्होंने बताई पहले हम लोग को इतना जानकारी नहीं थी
2: मम्मी बोलती थी कि पापा से मत बताना भैया से मत बताना पैड्स मांगना है या कपड़ा लेना है तो मुझसे बताना लेकिन जब हम लोग शैलेंद्र सर से मिले इस प्रोग्राम के थ्रू हमें बताया कि नहीं ये शर्माने की बात नहीं है ट्रस्टेड पर्सन है उसे किसी से भी बात कर सकते हैं बता सकते हैं कि हमें पैड्स की ज़रूरत है और हमें आपका साथ चाहिए
0: अटेंडेंस में कुछ फ़र्क देखा है जैसे पीरियड्स के टाइम पर भी आप अभी स्कूल आ सकते
2: तो हम लोग स्कूल एबसेंट करते थे नहीं जाते थे पीरियड्स में लेकिन प्रोग्राम होने के बाद पीरियड्स में खेलते भी हैं स्कूल भी जाते हैं क्लास एबसेंट नहीं करते हैं
0: अभी ये प्रोग्राम के थ्रू सेहत के बारे में आपको कितना जानकारी हुआ है और आप जो दूसरी लड़कियां हैं जो ये प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको क्या बताना चाहेंगे
1: पीरियड्स बिल्कुल नेचुरल है इससे शर्माने वाली कोई बात नहीं है मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो भी है वो सबको इसके बारे में शर्माने की ज़रूरत नहीं है अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो अपने पेरेंट्स या फिर टीचर्स या ट्रस्टेड पर्सन को बताना चाहिए उन्हें
2: पहले हम लोग तो दोस्त से भी नहीं बात करवाते थे ना फ्रेंड से ना दोस्त से या करीबी आदमी से कि ये हमें दर्द हो रहा है हमें इस चीज़ की ज़रूरत है हमें कितने टाइम पैड बनना चाहिए ये सर ने बताया तो हम खुल के यहाँ की वार्डन और अपने पेरेंट्स और अपने टीचर और अपने भाई से भी बात कर पाते हैं अगर हमें ज़रूरत रहती है पैड्स की तो नहीं दे भी पाते हैं और मैं दूसरे लड़के को संदेश देना चाहूँगी कि वो भी ना शर्माए अपनी खामोशी को तोड़े और जब भी ज़रूरत पड़े तो अपने ट्रस्टेड पर्सन से सलाह ले
0: Change happens when what was once a difficult topic now becomes a point of conversation. Through Project Mahi and through education and awareness, these girls are able to break the silence and stigma around menstrual health, make better informed choices and take charge of their own health.
3: Project Mahi chalne ke pehle ladkiyon mein jhijhak thi, wo bol nahi pati thi. Yahan tak ki school mein bhi nahi bolti thi aur ghar mein bhi nahi batati thi. कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुआ है पेट दर्द कर रहा है या फिर किसी तरह का कोई उनको इश्यू पैदा हो रहा है लेकिन अब प्रोजेक्ट माही चलने के बाद लड़कियां बेझिझक होकर के बोलती हैं कि मुझे पीरियड आया है मुझे पैड चाहिए मुझे पेट में दर्द हो रहा है और पहले की अपेक्षा अब वो स्वच्छता पे ध्यान देती हैं पहले लड़कियों को अलग रखा जाता था किचन में नहीं जाने दिया जाता था अलग से उनका बेड की व्यवस्था रहती थी कपड़े भी अलग रहते थे लेकिन अब वो बात नहीं है वो हर चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी में भाग लेती हैं
4: पहले लड़कियों में देखा गया था कि जैसे पीरियड है तो वो स्कूल नहीं जाती थी तो हम पूछते थे

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: यू वॉच अस व्यूअर यू ट्रस्ट अस एंड नाउ योर वोट कैन स्पीक फॉर व्हाट वी मीन टू यू वोट फॉर एनडीटीवी एट द ITA अवार्ड्स 2026 यू हैव गॉट दैट पावर Your support has always been an important part of NDTV's journey. And at the ITA Awards 2026, we are asking for your vote. Vote for NDTV and show your support for the journalism that you trust, the journalism that matters. It will just take a few moments and every vote means a great deal to us. So do vote, share the link and cheer for NDTV.
0: 26th Indian Television Academy Awards. Online voting now open. Log on to ita2026.indiantelevisionacademy.com/ndtv. Vote for the channel you trust. NDTV. When it really matters. Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli. Swadisht, sehatmand, har roz.
2: You watch us, you trust us. Now your vote can speak for what we mean to you. Your support.
3: Sport has the ability to inspire, but for several athletes, the journey to the arena begins well before they even enter it. For them, it's all about smashing stereotypes, breaking barriers, and achieving what's considered virtually impossible. Today, I'm in conversation with a few such athletes and the support system that enables them to achieve their very best on a global scale. For an athlete, reaching the highest level is never about one moment. It is built through countless hours of preparation, recovery, discipline, and support. For para-athletes, that support can be particularly important, creating an ecosystem that allows talent to develop and compete at the highest level. Every athlete has a story to tell. Some are stories of resilience, others of sacrifice. But what really unites all of them is the belief that limits are meant to be challenged. Let's meet some of these remarkable athletes who are being strengthened through the Para Champions program.
4: ये जो आपका जर्नी है पैरा स्पोर्ट्स में आप उसके बारे में क्या बता सकते हैं
5: मैं कह सकता हूँ कि जो जर्नी है वो एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ी 2014 में मैं फर्स्ट टाइम एशियन गेम्स में 3 मेडल मिले 2016 पैरालंपिक खेलने का अवसर मिला और मैं एक फर्स्ट इंडियन ब्लाइंड एथलीट बना जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया हो
4: ये जो प्रोग्राम है जो आप कर रहे हैं उससे आपको क्या मदद मिली है एंड हाउ इज इट रियली बेनिफिटेड यू
5: देखिए जिस प्रोग्राम के साथ मैं जुड़ा हूँ गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन इसमें पैरा चैंपियन प्रोग्राम है जिसके नाम में छुपा है कि जो पैरा एथलीट्स को चैंपियन बनाने का है 2014-15 से इस प्रोग्राम के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और बात करूँ जैसे कि अभी ट्रेनिंग करने में एक सिर्फ हमारा डेडिकेशन या हमारा हार्डवर्क की आवश्यकता नहीं रहती हमें पूरा टीम वर्क उसमें हर तरीके का फाइनेंशियल सपोर्ट स्पोर्ट्स साइंस सपोर्ट और जितने भी हमारे ट्रेवल्स हैं उनका अकोमोडेशन वो सारी चीज़ देखने के लिए इस पैरा चैंपियन प्रोग्राम ने ही हमें बहुत ज़्यादा हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में भूमिका अदा की है ये प्रोग्राम जब तक बढ़ते रहेंगे तो एथलीट्स अपने गोल्स को इसी तरह पूरा करते रहेंगे

0: का, उसके थ्रू और उसके वजह से क्या क्या चेंजेस देख रहे हैं?
1: एक्चुअली ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹರ್ಬಲ್ ಲೈಫ್ ಸೋ ಆಮೇಲೆ ಗೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೂರ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ತುಂಬ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಆ ಥರ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಹರ್ಬಲ್ ಲೈಫು ಆಮೇಲೆ ಗೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಇದರಿಂದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
2: 8-10 साल से काम कर रहे हैं हम लोग साथ में पैरा के साथ में, तो हर्बल लाइफ या गो स्पोर्ट्स रहने दो तो बहुत सपोर्ट मिला है हमारे को, क्योंकि गाइडनर के तौर पर अगर देखें तो कुछ लोगों को समझता है गाइडनर जैसे कि सब ने बताया कि स्कॉट्स का जैसा रहता है, लेकिन वैसा नहीं है. हम लोग एथलीट को क्या मेहनत कराते हैं गाइडनर को उससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है. अगर एथलीट थकता है तो गाइडनर को साथ में भागता है, अगर गाइडनर थक गया तो रेस ही उधर ही आपको पूरा चला जाता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गाइड रनर का, और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा हर्बल लाइफ को और अपने गो स्पोर्ट्स को और पैरा चैंपियंस प्रोग्राम को, क्योंकि उनसे हमारे को सपोर्ट बहुत मिलता है और हम आशा करते हैं कि आगे भी ऐसी तरह सपोर्ट करते हैं हमारे.
3: फॉर दीज एथलीट्स सक्सेस इज इन मेजर्ड ओनली बाय मेडल्स और पोडियम फिनिशेस, इट इज मेजर्ड बाय कॉन्फिडेंस रिस्टोर्ड, बैरियर्स चैलेंज्ड एंड ड्रीम्स दैट वंस सीम डिस्टेंट बिकमिंग पॉसिबल. And when one athlete's journey inspires another, the impact travels far beyond the sporting arena.
0: For these athletes, success isn't measured just by the number of medals or podium finishes. Instead, success for them is measured in the confidence which is being restored, in the dreams which are being achieved, and in the fact that now the potential available to them is limitless. And that perhaps is the true measure of success. A future where every individual is given the opportunity to achieve their full potential.
4: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
5: Hello and welcome to watching Prime 5 with me, Marisha Sager. What's happening?
4: The show that sets the prime time agenda.
5: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
4: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5 weekdays at 5 p.m. only on NDTV, when it really matters.
6: A healthier India doesn't happen in a day.
7: It starts with the health choices that we make every day.
8: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे
9: और हर हाथ में हो बेहतर सेहत का अधिकार.
10: Because बनेगा स्वस्थ इंडिया is just not about living longer.
11: It's about living healthier, feeling alive and making every day count.
12: One informed choice और एक healthier action.
13: Giving better health in more hands every day.

0: Defence Minister Rajnath Singh draws the line on India's strategic autonomy, says India will always put its national interest first. Rajnath Singh sends out a strong message for Pakistan, calls terrorism a strategic asset of India's neighbour, warns that India will strike Pakistan if it pushes terrorists.
1: हम चाहते हैं कि भारत केवल टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट न करे. भारत ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि भारत टेक्नोलॉजी को डिफाइन करे, और यही वह अप्रोच है जो भारत को स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की ओर ले जा रही है.
0: आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ स्पीक्स फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिवली एट द एनडीटीवी डिफेंस समिट. जनरल सेठ मेक्स अ रिसाउंडिंग केस फॉर लैंड बैटल अमिडस्ट एन एरा ऑफ टेक ट्रांसफॉर्मेशन, डिक्लेयर्स लैंड विक्ट्री इज द ओनली इनडिस्प्यूटेबल मार्कर ऑफ वॉर विक्ट्री. Political showdown over CEC refuses to die down. NDA chief ministers, including Yogi and Hemanta, up the ante against the opposition leaders' charges. This after the Election Commission defended SIR process and detailed timeline covering Bihar, Bengal and 30 other states and union territories. After backlash, TVK government revokes controversial government order which exempted public law and order from RTI Act. This after DMK, AIADMK slammed the move, and ally Congress said that the RTI must be expanded and not restricted. Punjab's lovely professional university students vandalized campus, blocked the highway over alleged rape case on the campus. University denies the charge. Cops file an FIR against unknown people. Anahant clinches silver at Asian Games, becoming the first Indian woman to win silver in singles. Medal momentum grows for India. India's medal tally now stands at 4 gold, 14 silver and 14 bronze. Ladies and gentlemen, India's defence landscape is undergoing a fundamental transformation. As the nature of warfare changes, so does India's approach to national security. At the NDTV Defence Summit, Defence Minister Rajnath Singh spoke exclusively about new challenges facing India, from multi-domain and technology-driven warfare to AI, quantum technology and even the next-generation capabilities. Rajnath Singh also outlined the government's push for a future-ready defence ecosystem, deeper Atmanirbharta and a stronger domestic manufacturing base. But alongside that push for military strength, Rajnath Singh underlined India's stated commitment to peace. He said that India does not want a war. It does not seek to encroach on any territory of any country and believes in dialogue, while drawing a line at terrorism and saying that there can be no compromise on national interest or even the strategic autonomy.
1: साथियों, मैं एक बहुत स्पष्ट बात आप सबके सामने रखना चाहूंगा. भारत शांति में विश्वास रखता है. भारत कभी भी युद्ध नहीं चाहता है. भारत किसी भी दुनिया के किसी भी देश की जमीन पर कब्जा भी नहीं करना चाहता. भारत किसी को थ्रेट यानी धमकाना भी नहीं चाहता. लेकिन शांति और कमजोरी में अंतर होता है, यह सारी दुनिया को समझना चाहिए. भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा. भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है. अभी यस्यो की बैठक में प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है. जब तक हमारा पड़ोसी देश आतंकवाद की स्टेट पॉलिसी पर कायम रहेगा, भारत की आतंकवाद के खिलाफ हर तरह के स्ट्राइक के लिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं. यह हम पड़ोसी को भी बतलाना चाहते हैं, दुनिया को भी बतलाना चाहते हैं. भारत कोऑपरेशन चाहता है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट की कीमत पर नहीं. भारत ग्लोबल स्टेबिलिटी चाहता है, लेकिन अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की कीमत पर नहीं. हमारी पॉलिसी बहुत ही स्पष्ट है. भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन अपनी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का समझौता भारत नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि भारत केवल टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट न करे, भारत ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि भारत टेक्नोलॉजी को डिफाइन करे। भारत केवल दूसरे देशों की मिलिट्री टेक्नोलॉजी का उपयोग न करे, भारत अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी बनाए। साथियों, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देने के लिए हमारी फिलॉसफी बहुत ही सिंपल है। जो भारत में बन सकता है उसे बाहर से हम क्यों खरीदें, जो भारत में बन सकता है उसे हम बाहर से क्यों खरीदें, और जो अभी नहीं बन सकता है वह भारत में क्यों नहीं बन सकता है, इस पर काम करें। मैं समझता हूं इसे ही हम आत्मनिर्भरता कहते हैं। यह आत्मनिर्भरता एक स्क्रू से लेकर सॉफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स तक है, एक कंपोनेंट से लेकर कंप्लीट वेपन सिस्टम तक है, और यही वह अप्रोच है जो भारत को स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की ओर ले जा रही है।
0: Well, Army Chief General Dheeraj Seth spoke first and exclusively at the NDTV Defence Summit, and this was his first public interaction since being appointed the Chief of Army Staff. And General Seth's message was unequivocal, and it was said that victory remains the only indisputable marker of war victory, because territory can ultimately only be occupied, secured and defended by the soldiers on ground. General Dheeraj Seth said that technology may be shortening the individual battles, but it is not necessarily shortening the wars. And in an era of drones, artificial intelligence and information warfare, he made a very powerful case for the enduring importance of land battle.
2: Our Atmanirbharta must be always in a dynamic mode. It must continuously adapt and evolve. In a sense, our capability development has to be capable. Through all this clutter, one reality that does not change: land. Land will always be the one and only tangible and indisputable marker of success. Victory was, is, and will always be measured in territorial terms. And that territory will be occupied, secured, and defended only by the soldier. There is no substitute to self-reliance. And when crisis becomes prolonged, being Atmanirbhar will be the winning factor which will make the difference between the victor and the vanquished. Atmanirbharta therefore must be about ensuring that we have the capability to endure without being constrained by what others can or cannot provide. And that gives us a good reason to take a hard look at the very pathways of our indigenous capability development. We heard the Raksha Mantri this morning, and I like to again quote him, and wherein he states that self-reliance in defense is not merely a matter of production or economics. It is fundamentally about strategic autonomy and sovereignty.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: अरदास हुई तो विकासपुरी थाने के एसएचओ यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी नहीं पकड़ा, उनको भगाने में मदद की उन्होंने। पर जब तक मंत्री परवेश वर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनके ऊपर एफआईआर नहीं की जाती, हम यहाँ से नहीं हटेंगे।
1: अगला अब कदम क्या है आप लोग, ये क्या
0: हम मांग करते हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कि इस दबाव से बाहर आओ, और दबाव से बाहर आके जो क्रिमिनल के ऊपर कार्रवाई होती है वो कार्रवाई मंत्री परवेश वर्मा के ऊपर होनी चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये कहना चाहते हैं कि ये चरित्र है देश के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राजधानी दिल्ली के मंत्री का, जो आप ही की पार्टी से है, इस पर आप क्या कार्रवाई करते हो बताओ आप।
2: All right, there was a live reaction that was coming in. Aam Aadmi Party there demanding the arrest of the PWD minister. Kanika, my colleague, is joining me on the broadcast to share more details. Kanika, talk to us about how did this brawl ultimately start that led to the confrontation which then turned physical?
3: देखिए बिल्कुल, दिल्ली के पीडब्ल्यू मिनिस्टर हैं परवेश वर्मा, जब वो तिलक नगर इलाके में पहुंचे हुए थे निरीक्षण करने के लिए, तो उस वक्त जो है वहाँ पे तमाम आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो वहाँ पहुंचे हुए थे, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो रिलीज़ किया है जिसमें उनका ये क्लेम है कि परवेश वर्मा ने जो है एक आम आदमी पार्टी के वर्कर्स को चांटा मारा है। ये आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी का है, और आम आदमी पार्टी की ओर से ये वीडियो जो है वो रिलीज़ किया गया है जिसमें उनका कहना है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी खुलासे कर रही थी सड़क को लेकर, इसके बाद जो है परवेश वर्मा वहाँ पर पहुँचे हुए थे और नाराज़ हुए, और उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी के एक वर्कर को जो है थप्पड़ मारा। अब इस पूरे मामले के बाद जो है आम आदमी पार्टी लगातार यही बोल रही है कि परवेश वर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। खुद अरविंद केजरीवाल की ओर से ट्वीट आया है जिसपे वो कह रहे हैं कि परवेश वर्मा की गिरफ्तारी जो है वो की जाए और उस पर एक्शन हो।
2: जी कनिका, ऑल्सो हमें ये बताइए कि क्या बीजेपी ने इस चीज़ पे रिएक्ट किया है, क्या रेखा गुप्ता ने इस चीज़ को संज्ञान में लिया है, इस इंसिडेंट को लिया है, और परवेश वर्मा का क्या रिएक्शन है आफ्टर आम आदमी पार्टी ने जो ये वीडियो निकाली है उसकी?
3: देखिए बिल्कुल, इस पूरे मामले के बाद अभी आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार आरोप तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कोई रिएक्शन या कोई बयान जो है वो नहीं आया है। लेकिन इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो परवेश वर्मा के घर पे है, मैं दिखा सकती हूँ तस्वीरें आपको। ये परवेश वर्मा का जो है सरकारी आवास है, यहाँ पर परवेश वर्मा जो है अंदर मौजूद है, और बिल्कुल हम उनसे कोशिश करेंगे बात करने की कि आखिरकार ये जो पूरा मामला हुआ है उसके बाद उनका क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर। लेकिन फिलहाल इस पूरे कॉन्ट्रोवर्सी के बाद आम आदमी पार्टी जो है वो परवेश वर्मा पे एक बड़ा एलिगेशन लगा रही है कि उन्होंने किस तरह से आम आदमी पार्टी के वर्कर को थप्पड़ मारा, और उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि परवेश वर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
2: जी कनिका, इसके बाद क्या होने वाला है एज फार एज ये दिस केस इज कंसर्न? क्या आम आदमी पार्टी कोई लीगल एक्शन मल कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जैसे कह रही है वीडियो में कि उनके वर्कर को थप्पड़ मारा गया है, वो भी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के तरफ से, तो क्या आम आदमी पार्टी अब इस चीज़ में लीगली कुछ करने वाली है? क्या FIR फाइल करेगी, क्या वो पुलिस की तरफ जाएंगी, क्या अपडेट है?
3: देखिए फिलहाल जो है आम आदमी पार्टी के तमाम जो सूत्रों से हमारी बातचीत हुई है उसमें ये कहना है कि कल अरविंद केजरीवाल जो है वो खुद इस इलाके में जाएंगे। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले में ट्वीट करके जानकारी दी है कि कल वो इसी इलाके में जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है वहां पे जाएंगे, और इसके बाद जो है आम आदमी पार्टी
2: फिलहाल जो है आई रिक्वेस्ट यू स्टे विद मी बिकॉज आई एम बीइंग जॉइंड बाय कांग्रेस स्पोक्सपर्सन अभिषेक। सर, हाउ डू यू व्यू दिस इंसिडेंट दैट्स जस्ट कम टू लाइट? आम आदमी पार्टी हैज ट्वीटेड अ वीडियो, द पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर क्लियरली सीन स्लैपिंग द इंडिविजुअल देयर।
4: See, I'm not surprised at all. Since the time the Bharatiya Janata Party has the blessing of the corrupt election commissioner of India, whether building falls in Satyaniketan, whether there are girls being raped in Delhi, or the minister himself is slapping the public because they know they have a protection of a person called Mr. Gyaneshwar Kumar. If the same election commission is not corrupt, you will not see any of these ministers acting with so much of, arrogance. It shows what Amit Shah has been saying in the parliament that hum to raj karenge kyunki hamara paas taakat hai. The taakat is the chief and the corrupt election commissioner of India. The day you correct the election commissioner of India, none of them will do any of these things.
2: All right, thank you very much Abhishek Dutt for sharing your views on that story. It remains to be seen on how the Aam Aadmi Party takes the story forward, but for now it's time for us to sip now a very quick commercial break. Don't go anywhere. News and update continue here on NDTV.

0: खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला।
2: A healthier India doesn't happen in a day.
3: It starts with the health choices that we make every day.
4: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे और हर हाथ में हो बेहतर सेहत का अधिकार.
2: Because बनेगा स्वस्थ इंडिया is just not about living longer.
5: It's about living healthier, feeling alive and making every day count.
4: One informed choice और एक healthier action.
2: Giving better health in more hands. Every day.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द एनडीटीवी गोल्फ प्रो एम बिगिंस हियर। बिगर बोल्डर टीइंग ऑफ अक्रॉस इंडिया। द कोर्स ऑफ चैंपियंस, द कॉन्वर्सेशन ऑफ लीडर्स। The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Tee-off, 3rd October, Kutub Golf Course, Delhi.

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: You watch us, you trust us. Now your vote can speak for what we mean to you. Your support has always been an important part.

0: A political row has escalated in Delhi after a video appeared to show PWD Minister Parvesh Verma slapping an AAP worker during a road inspection tank in Tilaknagar. Aam Aadmi Party Chief Arvind Kejriwal has demanded the minister's arrest and said he will visit the spot tomorrow. Verma has defended his actions, claiming that the video does not show the full truth. He alleges that the Aam Aadmi Party workers abused him first, while accusing AAP leader Jarnail Singh of seeking commission over the road work. Verma has also alleged that Jarnail Singh's aides abused his family and claimed he reached in the nick of the time and that he reacted only in the heat of the moment. The Aam Aadmi Party leader has filed a complaint and demanded disciplinary action, while AAP leaders have demanded an apology from the minister. The row has now widened into a political confrontation, with the AAP demanding action against Verma, while the minister has hit back with allegations of commission demands and abuse.
1: दिल्ली के तिलक नगर में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने एक सड़क बनाई। सड़क की क्वालिटी इतनी गंदी थी कि हाथों से वो सड़क उखड़ रही थी। जब वहां पे लोकल लोगों ने मंत्री जी को वो सड़क दिखाई तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने वहां खड़े हुए एक लड़के को, जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था, खींच के थप्पड़ मारा। मोदी जी ने कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जो कि आम आदमी को इंसान नहीं समझते। मैं कल इस सड़क का मुआयना करने खुद जाऊंगा।
2: हमारे जो वहां के कार्यकर्ता थे, मैंने उनको नहीं बुलाया। जब वहां पे जर्नैल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए, और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा, मैंने भी वही किया। मैं आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूं कि आप जो काम नहीं कर पाए, आज वो हमारी सरकार कर रही है, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है।
3: ये हम उन्हें बस आईना दिखा रहे थे कितना घोटाला हुआ है। उन्हें बता रहे थे कि ये 25 करोड़ के इस रोड का टेंडर था, इसमें आई थिंक 2 करोड़ भी नहीं लगे होंगे। जो हमने खुद दिखाया कि कारपेट की तरह रोड उखड़ रही थी, ये चीज़ उन्हें बताई कि घोटाले शायद से उन्होंने ही करा है, कि PWD विभाग उनका है। वो बात की जब उनके सामने एक ही घोटाला, उनके घोटाले के, वो हमने उनके सामने करा, वो चीज़ झेल नहीं पाए, तो उसी समय उन्होंने ये चपेड़ मारी मुझे। मेरे हाथ में फ़ोन था, मेरा वो फ़ोन फेंका, और साथ के साथ जो उनके साथ साथी थे, गुंडे थे जो भाजपा के, उन्होंने लाते घूसे चलाई हैं, उन्होंने जान से मारने तक की धमकी दी है मुझे। ये और ये बोलते हैं जेंजिस के साथ हैं, हम ये साथ हैं, चपेड़े मार रहे हैं।
4: जब हमारे विधायक ने और वहां के लोकल लोगों ने हाथ से तारकोल की रोड को तोड़ के दिखा दिया कि ये रोड निहायत ही घटिया क्वालिटी की बनी है, तो प्रवेश वर्मा के पास कोई जवाब नहीं था। वो लोग जर्नैल सिंह को जवाब नहीं दे पाए, मगर उसके बजाय जो लड़का, एक युवा वीडियो बना रहा था, प्रवेश वर्मा ने उसको थप्पड़ मार दिया। आप सोचिए। और उसके बाद ये कायर प्रवेश वर्मा वहां रुका नहीं, इतना बहादुर नहीं है ये आदमी, पुलिस और सिक्योरिटी के पीछे छिप के ये आदमी कार से भाग गया।
3: ये सड़क का टूटा हुआ टुकड़ा देखकर मंत्री जी बौखला गए, क्योंकि कैमरे हमारे भी चल रहे थे पर इस समय भाजपा के बंद हो गए थे। बौखलाहट में मेरा जो साथी कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था, मंत्री जी ने उसका फ़ोन खींचा, जमीन पे मारा, उसके थप्पड़ मारा गुंडों की तरह, और उसको जान से मारने की धमकी दी, लाते मारी, और चोरों की तरह यहाँ से गाड़ी में बैठ के फरार हो गए। पहली कार्रवाई तो PWD के इंजीनियर्स के ऊपर, जो मंत्री जी को करनी चाहिए थी, दूसरी कार्रवाई मंत्री जी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने सरेआम क्राइम किया है, थप्पड़ मारा, जान से मारने की धमकी दी, उस पर हमला किया, उसका फ़ोन तोड़ा, तो दूसरी कार्रवाई मंत्री जी के ऊपर। अगर इस देश का कानून आम आदमी और एक मंत्री के लिए एक समान है, तो तुरंत मंत्री प्रवेश वर्मा के ऊपर FIR करके उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
5: देखिए, प्रवेश वर्मा कहीं पर गए, वहां पर सामने से आम आदमी पार्टी के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने बदतमीजी करी, उनके परिवारजनों को गालियां निकाली, तो उसको देखकर मुझे लगता है प्रवोक हो गए वो, और संयम बरतना चाहिए। गाली निकालने से पहले 10 बार आदमी को सोचना चाहिए, खास करके परिवारजनों को गाली नहीं निकालनी चाहिए।
0: All right, my colleague Ishika is joining us on the broadcast, giving us more details on that story. Ishika, clearly two sides of the story. Parvesh Sharma has also put out a video. We also have a video and a soundbite that came from Janelle Singh. But is there any police case that has been filed? Is there any legal action that has been taken from the side of the Aam Aadmi Party?
6: Well, Anusha, as you rightly said, that in this entire controversy, there have been allegations and counter-allegations. And now, in fact, both the sides have gone on to say that they will be filing a police complaint. Now, the Delhi minister, Parvesh Sharma, had said that, in fact, the Aam Aadmi Party MLA, Janelle Singh, was seeking, in fact, commission from the PWD engineer. And the PWD engineer has now gone on to file a police complaint in this particular case. Now, he has also reacted to this entire controversy, and with the Aam Aadmi Party now, in fact, demanding his resignation, he has gone on to say that, in fact, he was provoked by the Aam Aadmi Party karyakarta that was there and has alleged that he was allegedly abusing his family. So, you know, we have already heard how, in fact, the Aam Aadmi Party Supremo, Arvind Kejriwal, has reacted over this. And he has now gone on to say that he himself will be, you know, going to Tilak Nagar tomorrow. So remains to be seen how the situation now pans out tomorrow. Over to you.
0: Thank you, Ishika, for putting all of that into perspective. We'll, of course, keep coming back to you for more on that story. A scuffle broke out at Kolkata's Satyajit Ray Film and Television Institute over a program organized by the Akhil Bharatiya Grahak Panchayat. Students protested the presence of an outside organization on campus, while organizers alleged that students disrupted the event, tore posters and banners. Students meanwhile alleged that they were assaulted and subjected to labels including Naxals and Jihadis. The organizers have rejected the allegations and put forward counterclaims. Police was deployed at the campus as the tensions continued. All right, let's just try and cut across to my colleague Hrithik Mondal, who's joining us on the broadcast to give us more perspective. Hrithik, just a factual account of what you know so far. What is it that you have found out in your reportage? What exactly happened?
7: Well, what we're given to understand, clashes broke out between students and RSS-backed wing supporters this evening, and that led to violent clashes, and several students have been injured in these clashes. What we are precisely being told that this Akhil Bharatiya Grahak Panchayat, they were scheduled to organize their state-level meeting at a hall inside the SRFTI Institute, which comes as one of the Kolkata's, you know, prestigious academic institute. And following that, what we the supporter or the organizers, they have alleged that some student reach out to that hall and they started shouting slogans, creating ruckus inside the hall. That led a scuffle between two groups, and that went violent when both the groups were attacking each other, and hurriedly additional forces were rushed to the spot. Then somehow, you know, the supporters of this RSS-backed wing, they were pushed out of the campuses. And we are also given to understand several of the supporters were trapped inside the institute while students were protesting at the doorstep of the institute. And then that led additional forces to deploy and somehow managed to bring those trapped supporters of RSS to from out.

0: From the institute, but situation remain unchanged. What we know that additional forces continue to deploy at the doorstep, and both the groups are raising slogans against each other. But it remains to see how things comes in that way, because the students are accusing that the authority, how they get the permission of a political wing to organize such event inside this prestigious institute. Back to you.
1: All right, Ritik, as you get us all those details, please stay with us on the broadcast. We'll of course keep coming back to you for more on that story. Let's now talk about another important story. What happened at the Lovely Professional University? Now, Lovely Professional University Registrar Dr. Monica Gulati has released a video addressing rumors circulating on social media about the alleged incident at the university's girls' hostel. In a separate video, three students staying in room number 504 said that no rape or such incident took place inside their room and requested the police and other students not to repeatedly visit or question them. The students said they would inform their parents if any such incident occurred. Dr. Gulati described the claims as fabricated rumors, alleged that certain vested interests and antisocial elements were spreading the claims in an attempt to defame the university.
2: डॉक्टर मोनिका गुलाटी, रजिस्ट्रार लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, आपसे बात करना चाहती हूँ उस इंसिडेंस के बारे में जो कल से मीडिया और सोशल मीडिया पे चल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ जो GH3 के रूम नंबर 504 में रहने वाली लड़कियों ने हमें बताया।
3: हम लोग रूम नंबर 504 के स्टूडेंट्स हैं और हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम यहाँ पिछले 2 महीने से रह रहे हैं। प्लीज पुलिस और स्टूडेंट्स हमें आके तंग ना करें, हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारा रूम इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है।
4: हम लोग आज बहुत ज्यादा परेशान हुए, और अगर हमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम अपने पेरेंट्स को प्लीज इन्वॉल्व करेंगे, हम अब लोग हमें परेशान मत करेंगे।
3: और पुलिस भी बार बार हमारे रूम पे ना आए, नहीं तो हम अपने पेरेंट्स को बुला लेंगे।
2: इस सबसे यही निष्कर्ष निकलता है कि इस सब के पीछे असामाजिक तत्वों का और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोगों का हाथ है। ये झूठी और मनगढ़ंत अफवाहों से यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की साजिश है। धन्यवाद।
1: Gurpreet Singh Shinna is joining us on the broadcast to give us more details on that story. Gurpreet, just for the benefit of our viewers, give us a sense of how this whole controversy unfolded and what this video really clarifies.
5: Well, it has been seen multiple times. University authorities has made it very clear that these are the rumors. But on the other side, I'll request my video to show the students are still holding protest, and it is also learned a special investigation team has been formed by the police after registering an FIR against unknown person. After that, five students had gone inside the university along with the police officer so that proper investigation could be taken place. There was a detailed talk between the student leaders and the police officer along with the university authority, and a few minutes back all the leaders along with the police officer, they had reached here. They addressed the students here. They say that nothing has been found so far, but these students, they say, we want justice because they feel the university authorities did not pursue any investigation when they learned one girl who was staying in hostel number 3, she was being raped. So still they are leveling such allegation against the management, and now they want that university authorities and top management people, they should come and give them assurance. So let's see that how the things will be unfolding, because one side it has been seen FIR has been registered by the police, a special investigation team has been made, and multiple times it has been seen a university authority had given clarification saying that there were rumors about such incident, but this incident has not taken place on the campus, and now they want the police should also investigate this case from all the angles. Back to studio.
1: All right. Thank you. Thank you, Gurpreet, for putting all of that into perspective. So let's just tell you in detail about what this entire matter was about. Tension had gripped the LPU campus in Jalandhar after rumours of an alleged rape incident triggered student protests. Students had blocked the Jalandhar-Phagwara highway and protests were reported on campus with visuals also showing vandalism. However, the university administration has denied the claims. We just told you about that video that has come out saying that the rumours circulating on social media are false and misleading. LPU has assured that all students are safe and secure on the campus and has urged students to ignore the rumours. The university has also appealed to the students to avoid unrest and provocative activities and maintain a calm and orderly campus environment. Police have registered an FIR in connection with the incident against unknown person.
6: जालंधर के मशहूर एलपीयू यूनिवर्सिटी में कल देर रात जिस तरीके से हंगामा हुआ उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। यूनिवर्सिटी के अंदर बताया जा रहा है कि लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है और जिसके बाद वहां पर यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर जिस तरीके से विद्यार्थियों द्वारा तोड़फोड़ की गई और प्रदर्शन किया गया उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई। इस समय हम जालंधर के एलपीयू यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हैं। आप यूनिवर्सिटी के हालात ज़रूर देखें। ये एलपीयू यूनिवर्सिटी के बाहर के दृश्य है। इस साइड से आप जब तस्वीरें देखेंगे तो विद्यार्थी जो हैं वो बैठे हुए हैं जिनके द्वारा क्योंकि रात से ही इसी तरीके से माहौल यहाँ पर जालंधर के एलपीयू यूनिवर्सिटी के बाहर बना हुआ है। ये आप विद्यार्थियों के हाथों में ज़रूर ये इस तरीके से बैनर पकड़े हुए देख रहे होंगे कि वी वॉन्ट जस्टिस और उसके अलावा ये सब विद्यार्थी जो है जिनके द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि विद्यार्थी कुछ कह रहे हैं कि आराम से बैठो हम यहाँ पर प्रदर्शन आराम से करेंगे कुछ भी
5: डिमांड है क्योंकि FIR होगी। अब पुलिस कह रही है हम एक्शन लेंगे। अब क्या डिमांड है क्यों प्रोटेस्ट वापस नहीं लिया जा रहा?
7: सर पहली जो बेयर मिनिमम डिमांड थी वो इनने फुलफिल कर दी है। वो भी इतना टाइम जागे पर कोई नहीं FIR इनने रजिस्टर कर लिया है। अब जो बाकी डिमांड्स हैं तो फर्स्टली तो सबसे पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन होती है किसी भी पुलिस को या प्रशासन को इन केसों में करनी चाहिए तो वो तो पहले सबसे पहले वो इनको करानी चाहिए जिसके अंदर लड़की का नाम पता उनके माँ बाप कौन है उनके माँ बाप को इन्फॉर्मेशन भेजें और बेसिक रिपोर्ट उसके साथ क्या गलत हुआ है और कैसे हुआ है ये सब चीज़ एक रिपोर्ट में उनको बना के देनी पड़ेगी। एक तो ये कंडीशन है और दूसरा जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के अंदर ये सब हुआ है तो उसके अकाउंटेबल दो प्रो चांसलर हैं जो मित्तल मैम है रश्मि मित्तल मैम और मित्तल सर हैं तो उनको वो अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी।
8: हम गर्ल्स हॉस्टल से हैं बेसिकली। ये मैसेज कुछ दिन पहले हमारे फ़ोन्स पे आई थी हमारे जो अनऑफिशियल ग्रुप्स हैं उस पे आई थी। सबने कहा ये फेक है। वार्डन्स हमारे हॉस्टल के गर्ल्स हॉस्टल एज अ हॉस्टलर मैं बता सकती हूँ वो टॉक्सिक है वो नहीं सुनते हमारी बातें। फिर ये हुआ कि उस लड़की ने रेप किया। जब हमने प्रोटेस्ट करना शुरू किया था कल रात को 12 बजे के करीब में स्टार्ट किया जब हमने वार्डन सामने आके वीडियो बना के कहते हैं आप वापस चले जाओ नहीं तो आपकी वीडियो बना के हम UMC लगा देंगे आपके ऊपर। हमें इस चीज़ की धमकी दी गई थी। हमें इसलिए भगाया गया था गेट बंद कर दिया। हमें बहुत सारी लड़कियों को GH2 के अंदर हॉस्टल के अंदर बंद कर दिया। हमें निकलने नहीं दिया जा रहा था।
9: हमने अपनी रेंज के सारे SSPs और मैं खुद यहाँ पे हमने मोबिलाइज की फोर्स पर यहाँ पे आके इनकी ये बेसिकली डिमांड थी कि 3 दिन पहले एक लड़की का रेप हुआ है और वो घर चली गई है G3 हॉस्टल की रहने वाली है उस पर कार्रवाई नहीं हुई और वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास इन्होंने स्टेटमेंट दे दी है। हमने पर्चा दर्ज कर लिया मतलब FIR दर्ज हो रही है। जल्दी FIR की कॉपी हमारे पास आ जाएगी। FIR टेक्निकली इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे जो फोरेंसिक एनालिसिस होगा जो CCTV एनालिसिस उसका करेंगे फोन एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको साथ लेके तफ्तीश करेंगे।
10: देखो सवेर का कोई इन्हों का क्वेश्चन सीगा भी साड़ी FIR लॉन्च होनी चाहिए है। जो भी स्टेटमेंट सी इन्हों की अननोन लड़की है अननोन अक्यूज्ड है वो अगेंस्ट जी FIR दर्ज हो चुकी है और नाल इन्हों का क्वेश्चन सगा भी साड़ी जेडे स्टूडेंट है उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया जाए वो नाल चले गए ने। साड़ियाँ टैक्निकल टीम साड़ी SIT के मैंबर सारे वो इतने प्रेजेंट ने तो इन्वेस्टिगेशन जी थरोली की जा रही डीपली। लॉ एंड ऑर्डर इस वल है जो मॉब चाहते हैं इन्होंने आए थे तो इमीजिएट मेरे ध्यान च आया तो सारी फोर्स लेकर इतने आ गए हैं तो इन्होंने पीसफुली प्रोटेस्ट करने लिए इन्होंने रिक्वेस्ट की और ठीक है सिचुएशन इस टाइम।
1: Well, all the details of that story and much more up on our website, ntv.com. With that, it's a wrap on this edition. Thank you so much.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे. The next chapter of the NDTV Golf Pro-Am begins here. Bigger, bolder, teeing off across India. The course of champions. The conversation of leaders. The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Tee off, 3rd October, Kutub Golf Course, Delhi. मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज.
1: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग चार लोगों के पास है.
2: कुछ इससे भी अनोखा
1: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला.
3: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
4: Hello and welcome to watching Prime Time with me, Rachel Sager. What's that to me? How to?
3: The show that sets the prime time agenda.
4: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
5: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, weekdays at 5 p.m. only on NDTV, when it really matters.
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद यह तो है इसकी खास बात.
7: वाओ मामा क्या स्वाद है.
6: अरे मेरे राजा
8: का राजा आर प्योर मसाला.
9: A healthier India doesn't happen in a day.
10: It starts with the health choices that we make every day.
11: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे और हर हाथ में हो बेहतर सेहत का अधिकार.
9: Because banega swasth India is just not about living longer.
12: It's about living healthier, feeling alive and making every day count.
11: One informed choice aur ek healthier action.
9: Giving better health in more hands every day.

0: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2026 to decode the shifts, redraw possibilities. NDTV World Summit 2026, a world between orders. 22nd and 23rd October, New Delhi.
1: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
2: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
3: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
4: You watch us, you trust us. Now your vote can speak for what we mean to you. Your support has always been an important part of NDTV's journey, and at the ITA Awards 2026, we are asking for your vote. Vote for NDTV and show your support for the journalism you trust. It will just take a few moments, and every vote means a great deal to us. So do vote, share the links, and cheer for NDTV.
0: 26th Indian Television Academy Awards. Online voting now open. Log on to ita2026.indiantelevisionacademy.com/NDTV. Vote for the channel you trust. NDTV, when it really matters.
5: The 20th Asian Games are officially underway in Aichi, Nagoya in Japan. For the next 16 days, this is where India's sporting dreams will play out.
6: We are in the happy hunting ground with the athlete I am sitting with right now, PV Sindhu.
7: 32 years and no medal. Can India's weightlifting contingent give us the debut?
8: Ladies and gentlemen, welcome to a day of defining conversations on the future of warfare and the future of security. Welcome to the NDTV Defence Summit 2026, India's new defence edge. Can we please start with a huge round of applause? It's going to be an exciting and engaging day ahead.
9: So today, we hope you will be informed. We know you will be challenged, and yes, I personally hope you will occasionally be provoked as well, because these cannot be comfortable conversations. The world changing before our eyes is not a comfortable world. From how our startups are injecting fresh battle blood into our border policy, to how the land battle never really goes away in our country our size, from the dilemma over air power capabilities to the secret sauce of intelligent code that will guide India's future offensive swarm systems. Our commitment at NDTV is to create conversations that travel well beyond the stage that I'm standing on. Conversations that reach policymakers, industry, and our armed forces. Conversations that lead ultimately to decisions by those who can make them. Thank you for joining us. Sit back, take a deep breath, and welcome to the NDTV Defence Summit 2026, India's new defense edge. Jai Hind, and thank you. And may I now invite the Honorable Defense Minister of India, Shri Rajnath Singh Ji, to deliver his keynote address.
10: District Defense Conclave mein aapne mujhe aamantrit kiya, main aap sabke beech hazir hoon. और वैसे 2024 में भी जब एनडीटीवी ने यह कॉन्क्लेव किया था तो उस कॉन्क्लेव में भी मैंने शिरकत की थी और देश की सुरक्षा से संबंधित कई विषयों पर चर्चा भी हुई थी और आप जानते हैं कि इस समय जो यह कॉन्क्लेव हो रहा है तो ऐसे समय में हो रहा है जब ग्लोबल सिनेरियो में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है और वारफेयर के तौर तरीके भी बदल रहे हैं क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज का भी जितनी तेजी के साथ इजाद हो रहा है, ऐसे में इस तरह के आयोजन की जरूरत मैं समझता हूं कि और अधिक बढ़ जाती है, जिससे कि नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस से जुड़े विषयों पर गंभीर और व्यापक संवाद हो सके। होता यह है कि संवाद होता है, डिस्कशन जब होते हैं तो नई आइडियाज भी मिलती हैं, और यदि कोई प्रॉब्लम रहती है तो कभी कभी उन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालने में भी काफ़ी मदद मिलती है। मुझे बताया गया है कि इस कॉन्क्लेव का यही उद्देश्य है कि डिफेंस एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री लीडर्स, इनोवेटर्स और बाकी सभी स्टेक होल्डर्स एक जगह आ सकें और इस महत्वपूर्ण विषय पर वह विचार विमर्श कर सकें। इस आयोजन के लिए मैं एनडीटीवी की पूरी टीम को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, और मैं आशा करता हूं कि यहां हुए डिस्कशंस डिफेंस सेक्टर से जुड़े जो विमर्श हैं उनको और इनरिच करेगी, उनको समृद्ध करेगी। साथियों, पिछले 12 वर्षों में हमारे डिफेंस सेक्टर की न केवल क्षमता बढ़ी है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर हमारे अप्रोच में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब हमारा ध्यान केवल वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज हम आत्मनिर्भर और फ्यूचर ओरिएंटेड डिफेंस इकोसिस्टम बनाने की दिशा में भी तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, और पिछले 12 वर्षों में भारत के डिफेंस सेक्टर में ग्राउंड ब्रेकिंग इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए हैं, यह मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, और इससे हमारी डिफेंस प्रिपेयरनेस को काफी ताकत मिली है और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को भी एक नई गति मिली है, और नेशनल सिक्योरिटी भी हमारी और अधिक मजबूत हुई है। आज हम फिफ्थ जनरेशन वारफेयर के दौर में हैं, जहां लैंड, वाटर, एयर के साथ साथ साइबर स्पेस और ह्यूमन माइंड भी युद्ध के नए क्षेत्र बन चुके हैं। आज सप्लाई चेन्स भी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का एक नया ग्राउंड बन चुका है। ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम और हाइपरसोनिक जैसी नई टेक्नोलॉजीज पूरे डिफेंस सेक्टर का स्वरूप बदल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
2: A healthier India doesn't happen in a day.
3: It starts with the health choices that we make every day.
4: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे और हर हाथ में हो बेहतर सेहत का अधिकार।
2: Because बनेगा स्वस्थ इंडिया is just not about living longer.
5: It's about living healthier, feeling alive and making every day count.
4: One informed choice और एक healthier action.
2: Giving better health in more hands every day.

0: Welcome back. We continue to keep our focus on what happened in Phagwara, Punjab, near Jalandhar at the Lovely Professional University. National Highway was blocked, multiple police vehicles torched, violence and arson was reported. My colleague Gurpreet sends us this ground report. Let's have a look.
1: स्टूडेंट के द्वारा पत्थरबाजी की जा रही थी, हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरें कैसे ये गाड़ी तोड़ी गई, पूरे शीशे टूटे हुए हैं। यहाँ पे सारी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये पुलिस का व्हीकल है जिस पे अटैक किया गया स्टूडेंट्स द्वारा। जो पुलिस के आला अधिकारी है वो भी पहुँचे हुए हैं। ये देखिए दूसरी गाड़ी जो टूटी है, क्योंकि पुलिस ने वहाँ पे उनको लेके वहाँ पे एक्शन करने की कोशिश की और जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने पत्थरबाजी वहाँ पे स्टार्ट कर दी। और पत्थरबाजी करने के बाद पुलिस भी आगे आई और इस वक्त ये सारी की सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने लगातार वहाँ पे स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी पत्थर, और ये हम भी तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये पत्थर पड़ा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन साथियों का पत्थर दिखाया जाए यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखिए पूरी गाड़ी तोड़ी गई है। ये देखिए ये DIG की गाड़ी है जिसपे अटैक किया गया है, और जो लगातार यहाँ पे पत्थरबाजी उनके द्वारा की जा रही है। चलिए हम और भी गाड़ियाँ दिखाते हैं। ये भी गाड़ी है जिसमें और ये जो SSP की गाड़ी है उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया, और यहाँ पे पत्थर चलाए गए और पत्थर अभी भी आगे पड़ा हुआ है, और ये पिछला जो विंडो है बिल्कुल तोड़ी गई है। तो ये देखिए ये तस्वीरें यहाँ पे ये पूरा शीशा तोड़ा गया है, क्योंकि वहाँ पे लाठियाँ मारी गई, वहाँ से पत्थर मारे गए, क्योंकि पुलिस ने जब इनको बोला कि हाईवे छोड़ दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी ये लगातार पत्थरबाजी यहाँ पे की गई।
0: Alright, that report and much more will be up on our website ndtv.com, but this is the big story that we continue to track here. It's a wrap on this edition. Thank you so much for watching.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: सुबह।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा, सबका राजा आटा मसाला।
2: A healthier India doesn't happen in a day.
3: It starts with the health choices that we make every day.
4: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे और हर हाथ में हो बेहतर सेहत का अधिकार.
2: Because बनेगा स्वस्थ इंडिया is just not about living longer.
5: It's about living healthier, feeling alive and making every day count.
4: One informed choice और एक healthier action.
2: Giving better health in more hands. Every day.

0: The dean has also said the university strongly suspects a conspiracy behind the escalation amid the claims and counterclaims surrounding this entire incident and violence.
1: स्टूडेंट के द्वारा पत्थरबाजी की जा रही थी, हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरें कैसे ये गाड़ी तोड़ी गई, पूरे शीशे टूटे हुए हैं। यहाँ पे सारी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये पुलिस का व्हीकल है जिस पे अटैक किया गया स्टूडेंट्स द्वारा, जो पुलिस के आला अधिकारी है वो भी पहुँचे हुए हैं। ये देखिए दूसरी गाड़ी जो टूटी है, क्योंकि पुलिस ने वहाँ पे उनको लेके वहाँ पे एक्शन करने की कोशिश की और जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने पत्थरबाजी वहाँ पे स्टार्ट कर दी, और पत्थरबाजी करने के बाद पुलिस भी आगे आई। और इस वक्त ये सारी की सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने लगातार वहाँ पे स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी पत्थर, और ये हम भी तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये पत्थर पड़ा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन साथियों का पत्थर दिखाया जाए यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखिए पूरी गाड़ी तोड़ी गई है। ये देखिए ये DIG की गाड़ी है जिसपे अटैक किया गया है, और जो लगातार यहाँ पे पत्थरबाजी उनके द्वारा की जा रही है। चलिए हम और भी गाड़ियाँ दिखाते हैं। ये भी गाड़ी है जिसमें और ये जो SSP की गाड़ी है उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया, और यहाँ पे पत्थर चलाए गए और पत्थर अभी भी आगे पड़ा हुआ है, और ये पिछला जो विंडो है बिल्कुल तोड़ी गई है। तो ये देखिए ये तस्वीरें यहाँ पे ये पूरा शीशा तोड़ा गया है, क्योंकि वहाँ पे लाठियाँ मारी गई, वहाँ से पत्थर मारे गए, क्योंकि पुलिस ने जब इनको बोला कि हाईवे छोड़ दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी ये लगातार पत्थरबाजी यहाँ पे की गई। Right now we are reporting from lovely professional university where we have seen the students, they were holding protest since morning, and right now the police was trying to use mild lathi charge to disperse all the protesters, but all the protesters they started stone pelting, and the police forced to go back, and a lot of police officials they got injured. We are showing all these pictures at this point of time. Now it has been seen that the vehicle have also been burnt by these protesters, so we are showing all these pictures at this point of time. Multiple vehicles had been damaged because of stone pelting, and when they were taking initiatives to disperse all these protesters, they started stone pelting at the force. So I'll request my visitor to just keep on showing all these visuals, because these visuals are very important to show at this point of time. So this vehicle which has been put on fire by these protesters, so we are showing all these pictures at this point of time, that how this violence has taken place in front of a lovely professional university, where the force was forced to go back, step back, because a lot of stone pelting started the moment police have taken taken action against these protesters.
2: Because students ne hamare ko jo ye matter hai jab hamare sangyan mein laye, तो हमने कहा कि नहीं, इसको सीरियसली देखा जाना चाहिए। लेकिन हम जितना इसको देखते गए, हमें यही आइडिया हुआ है कि ये सारा र्यूमर रेज है, और स्टूडेंट्स ने जब जब जैसे जैसे मांग की हमने वैसे वैसे पूरी की। वो CCTV फुटेज देखना चाहते थे कुछ दिनों की, उन्हें वो दिखाई गई स्टूडेंट कमेटी बना के। उनको बार बार आश्वासन दिया गया कि हम हर तरह का एक्शन लेने के लिए तैयार हैं।
3: मैं डॉक्टर मोनिका गुलाटी, रजिस्ट्रार लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, आपसे बात करना चाहती हूँ उस इंसिडेंस के बारे में जो कल से मीडिया और सोशल मीडिया पे चल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ जो GH3 के रूम नंबर 504 में रहने वाली लड़कियों ने हमें बताया।
4: सो हम लोग रूम नंबर 504 के स्टूडेंट्स हैं, और हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम यहाँ पिछले 2 महीने से रह रहे हैं। प्लीज पुलिस और स्टूडेंट्स हमें आके तंग ना करें। हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारा रूम इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है।
5: हम लोग आज बहुत ज्यादा परेशान हुए, और अगर हमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम अपने पेरेंट्स को प्लीज इन्वॉल्व करेंगे। आप अब लोग हमें परेशान मत करेंगे।
4: और पुलिस भी बार बार हमारे रूम पे ना आए, नहीं तो हम अपने पेरेंट्स को बुला लेंगे।
3: इस सब से यही निष्कर्ष निकलता है कि इस सब के पीछे असामाजिक तत्वों का और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोगों का हाथ है। ये झूठी और मनगढ़ंत अफवाहों से यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की साजिश है। धन्यवाद।
0: Slipping into a very short break, news and updates will continue on the other side. Stay tuned, stay with us.
6: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
7: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Marisha Sehgal. What's happening?
6: The show that sets the prime time agenda.
7: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
6: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, weekdays at 5 p.m. only on NDTV, when it really matters.
8: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
9: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा,
10: राजा प्योर मसाला।
11: A healthier India doesn't happen in a day.
12: It starts with the health choices that we make every day.
13: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे और हर हाथ में हो बेहतर सेहत का अधिकार।
11: Because बनेगा स्वस्थ इंडिया is just not about living longer.
14: It's about living healthier, feeling alive and making every day count.
15: One informed choice और एक healthier action.
11: Giving better health in more hands. Every day.

0: The ideas, the issues, the questions that matter. NDTV Yuva, Young Voices, Bold Dialogues. 28th September 2026.
1: Launch control, 0 to 100.
2: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
3: This car makes no sense, yet it makes every sense.
2: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi. Your friend said, yeah, Lily. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
4: By noon, the world has changed. The headlines tell you what happened. Breaking Ground tells you why. We break down the story. We demand answers.
5: There is a deathly silence around this makeshift mass burial ground here in Bharatpur district in Nepal.
6: I want you to reach out to the Maharashtra Chief Minister today through our channel and tell them what you've been through as a father.
7: Marne ke bada kya hoga?
6: As a journalist, I can say you're not alone.
4: So you can focus on what really matters. Watch Breaking Ground with me, Vedika Sood. Weekdays 12.
8: Hello and welcome. Thanks for joining us here on NDTV on the show where we talk pure politics. I'm Padmaja Joshi and today saying politics Zindabad with us. Our senior journalist with us here in the studio is Vinod Agnihotriji. We have managing editor of NDTV, Akhilesh Sharma, joining us, consulting editor Bhupen Chaube and senior journalist Sameer Chaugankar. And first up today on public demand, we are going to talk about Uttar Pradesh. That's right. Is there trouble in paradise? Are UP ke ladke now UP ke ladake? Honestly, things aren't that dramatic yet. But there is definitely trouble in paradise, and that is quite apparent from not one or two, but plenty of straws in the wind. In the last 1 week, what had been rumblings below the surface has now become a barely veiled tug of war for seats. Both sides still say that an alliance will happen. But the politeness is now running thin. Especially with Saharanpur MP Imran Masood using increasingly sharp language. He even set an October deadline for Akhilesh Yadav to come to an understanding. Interestingly, this week, the SP's Muslim face, Ikra Hassan, seemed to have been fielded to answer Masood.
9: Masood ne galat kya kaha hai?
10: Unhone bola ki seat sharing.
9: Unhone sahi kaha na ki timely jo baat honi hai timely hoke nimat jaye. ताकि जिनको हम टिकट दें वो लोग अपना तैयारी का टाइम उन्हें मिले जब जब चुनाव का गठबंधन चुनाव से एकदम पहले होता है उसके बाद जो जिनको टिकट मिलता है वो बेचारे मेहनत नहीं कर पाते।
11: अब छोड़िए कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि उनके नेताओं को क्या बयान देना है क्या नहीं।
12: मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति ऐसा है जो भाजपा को हरा सकता है तो वो सिर्फ अखिलेश यादव जी है। कांग्रेस अपने दम पर कुछ कर नहीं पाएगी। गठबंधन रहा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं रहा तो ये उनके लिए नुकसान है, हमारे लिए नहीं।
13: ये कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, टीएमसी के लोग भी बहुत कह रहे थे। हश्र देख लीजिए बंगाल में क्या हुआ। साथ मिलकर चलिए, सुकून में रहेंगे।
14: गठबंधन जो होगा, अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी ने अधिकृत कर रखा है, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये लोग बात करेंगे। मेरा आग्रह है कि तमाम छोटे भैये जिनको पार्टी ने अधिकृत तो किया नहीं है, ऐसी भाषा बोलते रहते हैं जो उनकी मर्यादा से बाहर है। अपनी हैसियत उन्हें पहचाननी चाहिए और कोई बात ऐसी नहीं बोलनी चाहिए जिससे गठबंधन की सेहत को हानि हो।
8: सभी जी, छोटे भैये कौन है ये जिनको ये रेफर कर रहे हैं?
15: निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिस तरीके से लगातार बयानबाजी इकरा हसन बोल रही है, जिस तरह से इमरान मसूद लगातार बयान दे रहे हैं गठबंधन को लेकर, इमरान मसूद की अपनी समस्या है पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर, उनका अपना इश्यू है कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी जिस तरीके से हार मजबूत स्थिति में है, तो मुझे लग रहा है कि इमरान मसूद का कहना अपनी जगह ठीक है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अंदर भी बातचीत शुरू नहीं हुई इन चीज़ों को लेकर। और तय तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव आखिरी
8: अलायंस होगा कि नहीं होगा?
15: नहीं, 100% होगा, गठबंधन होना तय है। और अखिलेश यादव ने भी रायबरेली से जो यात्रा बस यात्रा शुरू की, संदेश देने की कोशिश तो राहुल गांधी को की है कि आप भले ही रायबरेली के सांसद हो, रायबरेली में भी हमारा मजबूत गढ़ रहा है। 2022 का चुनाव देखेंगे तो समाजवादी पार्टी बहुत स्ट्रांग थी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक या दो विधानसभा जीती थी, बाकी सारी समाजवादी पार्टी वहां से जीती थी। और समाजवादी पार्टी ये भी संदेश अखिलेश यादव देने की कोशिश करेंगे कि उचार से उनके जो मनोज पांडे थे, जो बहुत भरोसेमंद थे अखिलेश यादव के, ब्राह्मण चेहरा थे, जिस समय वो राज्यसभा चुनाव के समय क्रॉस वोटिंग किए चले गए, अब कैबिनेट मंत्री बन गए, तो अखिलेश यादव बताएंगे कि भाई आप भले ब्राह्मण चेहरा बने हो, कैबिनेट मंत्री बन गए हो, उचार से समाजवादी पार्टी का आप चुनाव जीते थे, तो वो सीट वापस मैं लेने वाला हूँ, तो संदेश उनको भी देने की अखिलेश यादव ने कोशिश की होगी। अजय राय का बयान आया कि भाई अगर अखिलेश यादव रायबरेली से चुनाव प्रचार शुरू कर सकते तो हम कन्नौज जा सकते हैं, हम इटावा जा सकते हैं, हम मैनपुरी जा सकते हैं। अब अजय राय तो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, भूमिहार के बड़े नेता है, वाराणसी से प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ सके, उत्तर प्रदेश की राजनीति और कांग्रेस की स्थिति तो उनको मालूम होगी, लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में इटावा मैनपुरी में जो कांग्रेस के कार्यालय होते थे वो बंद हो गए, वहाँ के नेता जो कर्मचारी थे उनको आपने 1.5 साल सैलरी नहीं दी, तो उन लोगों ने उसे ठेके पर लीज पर ऑफिस दे दिए और वहाँ दूसरे ऑफिस चल रहे जो कांग्रेस के कार्यालय थे। तो कम से कम अजय राय इस बात को ध्यान तो रखे कि आज इटावा मैनपुरी और कन्नौज में कांग्रेस कार्यालय एक दुकान के रूप में कन्वर्ट होगा, उससे जो पैसा आ रहा है उससे स्टाफ की तनख्वाह दी जा रही है।
8: ठीक है, क्योंकि अजय राय की बात हुई है, लेट्स क्विकली एक्चुअली प्ले आउट बिकॉज आई थिंक दीज टू स्टोरीज आर कनेक्टेड, देन वी विल कम बैक टू टॉकिंग अबाउट व्हाट इमरान मसूद्स रियल मोटिवेशंस आर। यस, इट्स अ फैक्ट दैट इन दिस टग ऑफ वॉर दिस पीडीए यात्रा हैज बीन किक्ड ऑफ बाय अखिलेश यादव फ्रॉम व्हाट इज कंसिडर्ड द बैस्टियन ऑफ द गांधी फैमिली एंड इन फैक्ट द सीट ऑफ राहुल गांधी, Raebareli. What did Ajay Rai, the state Congress president, had to say about that? Listen in.
7: देखिए, चुनाव का समय है और कोई व्यक्ति कहीं जा सकता है, अखिलेश जी Raebareli अमेठी जा सकते हैं, हम सब लोग कन्नौज भी जा सकते हैं, हम इटावा जा सकते हैं, सफेद जा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। पर निश्चित तौर से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज पूरा देश का राहुल जी की तरफ देख रहा है।
16: इस बार जनता के वोट का बुलडोजर इनके ऊपर चलने वाला है, ये वोट का बुलडोजर इन्हें हमेशा हमेशा के लिए डिमोलिश कर देगा, न केवल हराएगा बल्कि ऐसी नकारात्मक राजनीति करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए मिटाने का काम करेंगे।
8: सो अखिलेश यादव मे हैव स्टार्टेड हिज पीडीए यात्रा, बट फॉर नाउ गोइंग बाय दी स्टेटमेंट्स देयर इज नो पीडीए एज इन पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन एटलीस्ट बिटवीन दीज टू यूपी के लड़के। इमरान मसूद की प्रॉब्लम क्या है?
17: इमरान मसूद की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमरान मसूद ने मुझे इंटरव्यू में कहा था कि मेरी नेता प्रियंका गांधी है, तो मैंने कहा राहुल गांधी? वो बोले प्रियंका गांधी की नेता और पार्टी की नेता है। तो आप समझ लीजिए इमरान मसूद कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं और इकरा हसन भी अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं। ये सब जो है दोनों पार्टियों के बीच मसल फ्लेक्सिंग है, जो सीटों को लेकर के एक दूसरे पर प्रेशर डालना है। और वेस्टर्न यूपी में चूंकि कांग्रेस ज़्यादा सीटें चाहती है, इसलिए बयान इमरान मसूद ने दिया है, वो वेस्टर्न यूपी के हैं। अगर कांग्रेस को ईस्टर्न यूपी में सीट लेनी, ज़्यादा सीटें लेनी होती, वहाँ वो उसकी कोई हैसियत नहीं है उस तरह से। वेस्ट में फिर भी कांग्रेस कुछ सीटों पर अच्छा लड़ सकती है
8: और दोनों की बगल बगल की सीटें भी हैं, सहारनपुर और कहरा।
17: वो तो उनका पारिवारिक दोनों का पुराना वर्चस्व लड़ाई है,
8: इकरा हसन और इमरान मसूद।
17: वो रशीद मसूद साहब के भतीजे हैं और ये अख्तर हसन साहब की पोती हैं और मुनव्वर हसन की बेटी हैं। तो वो कहराना और सहारनपुर के बीच पुराना मतलब जो है आपस में वो है, और दोनों ही जो है मुस्लिम गुजर हैं,
8: करेक्ट,
17: गुजर फैमिली से हैं। तो ये तो हिंदू मुस्लिम अभी हुआ है, वरना तो वहाँ तो जो गुजर और जाट हैं अगर हिंदू हैं मुस्लिम हैं उनके अंदर
8: उक्का पानी चलेगा। बेसिकली फाइट ये भी है ना, दैट दीस मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स इन उत्तर प्रदेश स्पेशली इन वेस्टर्न यूपी, हु विल गेट अ लायंस शेयर ऑफ दीस सीट्स, अल्टीमेटली दिस इज व्हाट इट बॉइल्स डाउन टू।
18: या आई मीन देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट दैट, दैट वेदर इट्स द समाजवादी पार्टी और इट्स द कांग्रेस, बोथ ऑफ देम वुड ऑब्वियसली बी मेकिंग अ स्ट्रांग पिच फॉर गार्निंग द मैक्सिमम सीट्स। आई थिंक द स्टोरी एज विनोद जी वाज ओब्लिकली हिंटिंग टुवर्ड्स, the one of the reasons why Imran Masood is making the kind of statements which he is making very clearly, because it's like an experiment. You know, in Congress a lot of what is unsaid has to be looked at very closely, and who's saying what has to be looked at closely. So there is a camp Priyanka, there is a camp Rahul. I'm not saying they're working at loggerheads with each other, but the vision for both the brother and sister for what needs to be done in UP is very different. I can also tell you that Dimple Yadav and Priyanka Gandhi also have a very good relationship with each other. I can also tell you that both of them keep in touch with each other, often discussing about, you know, families and political realities and whatnot. It doesn't necessarily mean that what Dimple thinks should happen with the Samajwadi Party in UP or what Priyanka thinks should happen with the Congress Party in UP is necessarily going to shape up. Imran Masood is firing all these shots just to test how does the Samajwadi Party respond. Rahul Gandhi ne kuch nahi bola, right? Rajinder Pal Gautam, well, I mean, you know, he's a new person, he's just been appointed, he has to exert his pressure, he has to show that, you know, he also is in the ring, so to say. Ultimately the alliance will happen, ultimately the Congress is not going to be given this 150 and 200 seats which is being spoken about. No way. The Congress may get anywhere between 40 to 50 seats max. Yeah. Akhilesh certainly believes that he's got the win. Binith is safe this time. Look at the crowds which are coming. Mm. And he feels that if he can just manage all these contradictions and egos of the alliance partners, so to say, then he believes that he has a good strong chance.
8: So I want to show you the PDA bus, because it had the familiar colors of red and green. But now that new blue that has been introduced by the Samajwadi Party, jahan PDA, the PDA was very prominently displayed. Can we please play those visuals? The bus, the front of the bus, as you can see it, has got a fair smattering of blue as well. What do you make of this? Akhileshji, which is the bigger party in this entire equation? The combination of PDA of Akhilesh Yadav or the very strong Muslim support that the Congress seems to be getting?
19: Well, they have to work together. This is very clear. But what surprises me is that why doesn't Akhilesh Yadav begin his yatra from Gorakhpur? Why he started from Rae Bareli, which is supposed to be so-called Congress stronghold? So-called because it is very clear that it is not anymore a Gandhi bastion, Rae Bareli or being Amethi. So this is the message Akhilesh Yadav is trying to send to the Gandhi family, that this is where you get my support and that's why you keep winning this seat.
8: And that's what Ikra Hasan said, ki bhai wo hamare boote pe jeet
19: exactly.
8: Not the other way around.
19: Yeah, exactly. So this is the message for the Congress party, as I started by saying that why doesn't he begin the yatra from Gorakhpur, which is the hometown of Chief Minister Yogi Adityanath. His fight is with the BJP, his fight is with the Yogi Adityanath, not with the Congress, not with the Rahul Gandhi or Priyanka Gandhi. So this is...
8: So you're saying he's trying to flex muscle with the Congress?
19: See, the message is very clear. The Congress is not in a position to bargain. Even if Congress gets, say, 100 seats, where does it going to get the candidates from? Does the Congress party have that kind of candidates in Uttar Pradesh? It doesn't. I do not think that they have so many.
8: And apparently
19: leaders.
8: That is where it's stuck. Jahan pe Congress ne, Congress ko bola hai Samajwadi party ne ki aap jitao candidate to bataiye. Aapne jab pichli baar akele lada tha, to aap kitni seat jeet paaye the, including when Priyanka Gandhi was General Secretary?
19: Yes.
15: समाजवादी पार्टी आखिरी में क्या करेगा? राहुल गांधी नहीं मानेंगे तो कहेंगे कि ठीक है आपको 15 सीट ज्यादा देते हैं लेकिन कैंडिडेट हमारे उसके उपेंगे, सिंबल भले ही आपका होगा आप कैंडिडेट हमारे ले लीजिए. तो कांग्रेस के पास आज उम्मीदवार नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ने के लिए, भले ही आप लोकसभा सीटें 6 जीत चुके हैं उस बार, समाजवादी पार्टी के सपोर्ट के कारण आपने 6 लोकसभा सीटें जीती है और आपकी विधानसभा में क्या उपस्थिति है. तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को जमीनी वास्तविकता को समझना होगा. अगर वो सोचते हैं कि 120-125 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आप सीधा सीधा मैदान खुला छोड़ोगे, कांग्रेस की स्थिति नहीं जीतने की. ये बात सही है अखिलेश यादव का कि भाई 37 सीटें जीतने के अलावा हर जिले में 75 जिले में समाजवादी पार्टी का ग्राउंड है. तो समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी

0: और इस बार अखिलेश यादव कोई रिस्क नहीं लेंगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जाके ये 50-75 सीटों के बीच में सेटलमेंट होगा। इसके ऊपर ज्यादा सीटें अखिलेश किसी भी स्थिति में कांग्रेस को
1: जो पीड़ित वो पीडीए ऑन अ ब्लू डिस्ट्रिक्ट। इनफैक्ट हम लोग कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, यू नो व्हेन देयर इज अ फाइट एवरीवन स्टार्ट्स रीडिंग इनटू एवरी सिग्नल। सम पीपल वर सेइंग कि देखिए जैसे ही अखिलेश यादव ने बोला कि पी इज फॉर पंडित, अचानक राहुल गांधी केम विद मनुस्मृति। सो वॉज दैट इंटेंडेड कि भाई अगर पंडित को वू करने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, देन सडनली दिस होल मनुस्मृति एंगल कम्स इन।
2: नहीं, मुझे नहीं लगता राहुल गांधी ने कोई अखिलेश यादव को देकर मनुस्मृति एंगल दिया होगा। राहुल गांधी का एक दलित एजेंडा है, ही इज वर्किंग ऑन अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स, और इस वक्त अम्बेडकराइट जो पॉलिटिक्स है राहुल गांधी उसके प्रभाव में है। राजेंद्र पाल गौतम पुराने अम्बेडकराइट हैं,
1: अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स तो अखिलेश यादव भी कर रहे हैं।
2: अखिलेश यादव की अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स, राहुल गांधी की अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स में फर्क है। अखिलेश यादव चूंकि उनका बेस है लोयाइट पॉलिटिक्स का, और जो समाजवादी पार्टी का जो बैकग्राउंड है, जो हिस्ट्री है, उसमें दलितों का मूवमेंट समाजवादी पार्टी की तरफ बड़ा मुश्किल से होता है, उसकी हिस्ट्री है और वो उसके सोशल और इकोनॉमिक रीजंस हैं गाँव में। कांग्रेस इस कोशिश में है कि जैसे उसने जो संविधान का नैरेटिव बनाया था लोकसभा इलेक्शन में, और जिसकी वजह से महाराष्ट्र और यूपी में खास करके और राजस्थान में, इन राज्यों में दलित मूवमेंट उसकी तरफ हुआ और उसका फायदा समाजवादी पार्टी को भी यूपी में मिला। देखिए ये बात सही है कि कांग्रेस के जो 6 जीते हैं वो सपा के सहयोग से जीते हैं, लेकिन सपा के भी 37 जीते हैं वो कांग्रेस के सपोर्ट से जीते हैं।
3: बट मैं आई जस्ट आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट
2: पॉइंट।
3: लेट मी
2: बिकॉज कई सीटें ऐसी थी सेंट्रल यूपी और वेस्टर्न यूपी में जो कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी ने जीती बिकॉज ऑफ जो दलित वोट का जो नॉन जाट और दलित वोट जो मूवमेंट हुआ
1: कांग्रेस की वजह से
2: इंडिया ब्लॉक बिकॉज ऑफ कांग्रेस।
1: ओके,
2: तो ये कांग्रेस की स्ट्रेंथ यूपी में इस वक्त है। उसके पास कैंडिडेट नहीं है आई एग्री, उसके पास कैडर नहीं है आई एग्री, लेकिन एक सेंटिमेंट जो है अमंग दलित कांग्रेस के लिए जो बना, इसीलिए हल्द्वानी का इशू उन्होंने बहुत उठाया, तो वो कांग्रेस उसको जो है उस बेस पे चाहती है कि उसको कम से कम 100 सीटें मिले।
1: तो दलित वोट का मैग्नेट अभी कांग्रेस है।
3: देयर इज अ व्यू विद इन द कांग्रेस पार्टी एंड राहुल गांधी सीम्स टू फ्रॉम व्हाट आई गैदर पीपल क्लोज टू हिम सीम टू बी सजेस्टिंग दैट राहुल गांधी इज कन्विंस्ड दैट दिस टाइम अराउंड इन यूपी द मेन फोकस इज गोइंग टू बी ऑन वेयर द अपर कास्ट द ब्राह्मण वोट इज रियली गोइंग टू गो। देयर इज अ फीलिंग विद इन द कांग्रेस पार्टी दैट द अपर कास्ट द ब्राह्मण्स आर नॉट टू एंथ्यूज्ड विद विद योगी आदित्यनाथ। There is an entire ad campaign which I understand is going to be launched sometime around Diwali. We've seen one ad campaign which is around all these, you know, AI films, and we've all been laughing at what kind of election campaigning is this, where Yogi Adityanath, a monk, you know, a monk, a sadhu, is seen smoking a cigar, as Ajay said, and Akhilesh Yadav appears as Amitabh Bachchan. There is a part two of this. BJP is also hit back where they're showing
1: what Akhilesh. Is in that part two?
3: So in part two, I understand that there is going to be references to caste, how the upper caste is being completely marginalized in Yogi Adityanath's regime. Rahul Gandhi's view is this, that if by, let's say, waving the constitution red book, if he can make a dent at the Dalit vote base, if he can attract a bigger chunk of the Brahmin vote towards itself, towards the Congress party, he believes that the Congress party can maybe look for some disproportionate gains.
1: But and
3: as all the other friends are saying, the problem before the Congress party is that Rahul Gandhi can think and strategize and do all the data crunching. Where are the candidates? Where is the ground level organization?
1: But when it comes to outreach, at least to the upper caste, to the Brahmins, even Akhilesh Yadav, and look at the posters. And a huge poster war around this entire PDA Yatra. Akhilesh Yadav shown as Lord Krishna. Then in one place, he was seen unke haath mein gada pakda di. Then he was seen seeking the blessings of Lord Hanuman as well, and then for good measure to wahan par bhagwan aur bulldozer dono aa gaye, bulldozer se unko mala pehnai ja rahi thi aur gada bhi hai.
4: Kisi ne to ye bol diya ki jo bus hai na jiska rang aap bol rahe ki lal rang hai, wo lal nahi hai, wo isi angle se aap dekhoge to wo saffron bhi dikhta hai.
1: To kehte hai na, beauty is in the eyes of the beholder, maybe even bhagwan is in the eyes of the beholder.
2: Abhi ye Rajasthan ka jo chunav parna,
1: wo dekhiye, wo unko crane se mala pehnai ja rahi hai. Interestingly, a few days back when Nitin Nabin had entered UP through Western Uttar Pradesh through Meerut, there were these bulldozers and a lot of people had like got paroxysms of, you know, outrage saying that bulldozer se Nitin Nabin ko hai, dekhiye yahan par phool varsha ki ja rahi hai. Ab bulldozers have been deployed for Akhilesh Yadav as well.
0: Abhi Rajasthan ke jo vidhansabha Rajasthan ke nikay chunav ka bhi jo parinam aaya, iske baad Ashok Gehlot ne Rahul Gandhi ko phone kiya aur Ashok Gehlot ne Rahul Gandhi ko bataya hai ki is baar Rajasthan ke chunav mein अपर कास्ट ने कांग्रेस को बहुत वोट किया है, जो सिर्फ 1% का जो वोट फर्क रहा है, मतलब 90,000 वोट का 98,000 वोट का फर्क रहा है, और उसमें सवर्ण भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, और हमें जो उम्मीद थी उससे ज़्यादा सवर्णों का वोट हमें नगर निगम के चुनाव में मिला है। तो अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को सलाह दी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप प्रदेश अध्यक्ष किसी ब्राह्मण को या अपर कास्ट के आदमी को बनाइए, किसी ब्राह्मण को बनाइए, उत्तर प्रदेश में इसका हमको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से
2: सेंटीमेंट अजय राय तो अपर कास्ट ही है भाई।
0: कौन
2: अजय राय?
0: मिश्रा है इस तरीके से, अजय राय को तो वैसे भी जाना है, मतलब तो भूमि आ रही
1: है, माता प्रसाद पांडे को बनाया तो है,
2: वो तो समाजवादी पार्टी
1: है, कांग्रेस में बनाया, कांग्रेस
3: के, कांग्रेस के राय ट्राई बहुत लंबे समय से हो चुके हैं,
0: और इसीलिए अनुराधा मिश्रा जो शायद उनकी बेटी है, जो राज्यसभा सांसद है, उनकी जो बेटी है
1: प्रमोद तिवारी, अनुराधा तिवारी,
2: आराधना मिश्रा,
1: आराधना मिश्रा,
2: मोना, मोना उनको निकनेम है, शी इज कॉल्ड मोना मिश्रा,
0: उसके नाम पर भी विचार किया जा रहा है कि उसको प्रदेश अध्यक्ष
2: की महिला है, और
0: बेसिकली कांग्रेस का संदेश है कि अब अपर कास्ट से फोकस कीजिए, वो इस बार आपको वोट करने के लिए जा रहा है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की कोशिश होगी कि इस बार किसी अपर कास्ट को देखे, और समाजवादी पार्टी भी कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से यूजीसी को लेकर अपर कास्ट थोड़ा नाराज है, तो क्यों ना मतलब पीछे वो पिछड़ के जाके पीछे पंडित करके अब तमाम जिस तरीके से वो हिंदू वोटर्स के लिए कर रहे हैं कि हनुमान की पूजा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तो अखिलेश यादव की भी कोशिश है कि ब्राह्मणों का वोट, अपर कास्ट का वोट कुछ परसेंट तोड़ा जाए भारतीय जनता
1: पार्टी।
2: राजपाल गौतम है ना इंचार्ज, वो भी चाहते हैं अजय राय को रिप्लेस करके मोना तिवारी जो है यानी आराधना मिश्रा को बनाया जाए।
1: सो देन यू विल हैव अ ब्राह्मण दलित कॉम्बिनेशन, राजेंद्र पाल गौतम,
2: बीच में किसी ने मुस्लिम का भी कहा था बट वो रिजेक्ट हो गया आइडिया, कि इमरान मुस्लिम,
1: इमरान प्रतापगढ़ी की बात कर रही
2: है, नदीम जावेद, इन दो तीन नाम आए थे बट वो रिजेक्ट हो गया, इससे पोलराइजेशन हो जाएगा, इसलिए किसी ब्राह्मण को जो है बनाया जाए।
1: एंड व्हाई इज दिस कास्ट कॉम्बिनेशन सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ यू नीड टू फोकस आल्सो ऑन व्हाट्स हैपनिंग इन द बीएसपी कैंप, एंड दिस इज लाइक द लॉन्गेस्ट रनिंग सोप ऑपरा आई थिंक इन द पॉलिटिक्स ऑफ उत्तर प्रदेश, येट अनदर सरप्राइज, एंड नॉट जस्ट फॉर अस, आई थिंक फॉर द फैमिली ऑफ मायावती's brother as well. Another flip-flop that has come from party chief Mayawati. 2 weeks after she relieved her nephew Akash Anand from all party responsibilities, she has now brought in his younger brother. In the middle, she had also said that Akash and Ishan's sister Deepika Kumari should be given a position of responsibility inside the party. But now it seems that her attention has shifted to Ishan Anand to take up a key post. Ishan has been appointed the new national coordinator of the party, the post held earlier by Akash. This decision was announced at the party's All India meeting held in Lucknow on Wednesday. Also present in this meeting was Ishan's father Anand Kumar, who is the BSP's vice president. Ishan's elevation came just days after Mayawati posted on X that neither Akash nor Ishan nor their children will get party posts in the future. But is the BSP drama finally over, or will there be even more surprises, Bhupesh?
3: Well, with Mayawati, you never know. It's never done till it's done. You remember last time we were doing the show, I was saying exactly this, that just because Akash Anand has been dislodged and Ishan has been brought in doesn't mean that Akash cannot be brought back, right? So Akash was, suddenly there was a flurry of letters, he's brought back one day, Mayawati is making one statement the other day, and now we are back to Ishan. There is a problem with Mayawati. एक हिंदी में ना एक फ्रेज है पद्मजा, कान का कच्चा। मायावती जी के साथ द रियल इशू विद हर इज दैट शी जस्ट डजंट हैव यू नो द राइट काइंड ऑफ पीपल गिविंग हर द राइट काइंड ऑफ फीडबैक। देयर वाज अ टाइम व्हेन शी हैड द लाइक्स ऑफ नसीमुद्दीन सिद्दीकी ऑन वन साइड, सतीश चंद्र मिश्रा वाज यू नो वाज फार मोर एम्पावर्ड। Now, Mr. Mishra is only busy, honestly speaking, looking after his son's interests. Nasimuddin Siddiqui is not
1: there. But his son has been given some responsibility.
3: His son has been, that's what I'm trying to tell you, that if she's not, she doesn't have that mechanism which she used to have. When she was in alliance with the BJP earlier in 2000s or even in 2007 when she ended up getting a full majority government for herself. Let's also be clear, unfortunately, age is not on Mayawati's side. She is not managing to really set the agenda in any form. Mm-hmm. If I ask you that what is the agenda of Mayawati? Before this show, I actually looked at her 12 past press statements. Mm-hmm. None of those press statements have anything to do, or the formulation of those statements have anything to do with what is really agitating the minds of the youth voters today. You look at an Akhilesh Yadav or Rahul Gandhi or whoever, there is an attempt being made. If there is no attempt to, there's no attempt to repackage, there's no attempt to re-innovate, you made Ishan Anand. Now my question is this, who's going to determine the ticket distribution?
1: Yeah.
3: Ishan Anand is the party convener, but there is no decision making which is happening without Mayawati being in the fray. Mm. You know, my good friend Vijay Shankar Pandey, who used to be the additional cabinet secretary to Mayawati when she was the a full majority chief minister, was actually sharing this with me, that the only thing that Behenji misses is full conviction that if she was to really rise on her own self, she can make a difference. Mayawati is not fighting this battle with full conviction, which is why you're seeing one decision being made one day, one decision being made the
1: next. You know, initially when Ishan Anand was moved out, Akhileshji, it was said that it was under pressure of the BJP because he had made a very strong, aggressive...
3: Akash Anand.
1: Sorry, I've also lost track of who is who and what, where they are. When Akash was removed, because he had said very strong words against Yogi Adityanath and the Prime Minister
4: also
1: as well.
4: And all other issues.
1: Correct. Yes. So, is the BJP in backroom talks with Mayawati, what is her political standing right now? What is happening?
4: No, I do not think that BJP is in that...
1: Vis-a-vis UP, is there any understanding between the two?
4: I do not think so. But it's very clear that if Mayawati goes down, if the BSP goes down, then it hurts the BJP. Because if Mayawati is strong, what happened in 2024 Lok Sabha election, Mayawati's vote share has come down below 10%.
1: Yes.
4: And that has hurt the BJP big time, because what happened at the non-Jato voters, they actually shifted towards the India Alliance. And that's why the BJP had, you know, lost so many seats, especially in Western UP and the Eastern UP. So BJP would not like that BSP goes down further. They would like, certainly like to see that there's clear-cut line of succession as far as the BSP is concerned. But obviously it is so confusing, because every day she is making a new statement, ki iske baad ye honge, ye nahi honge, wo honge, wo nahi, wo honge. So it's not very clear. What does she want? Mm-hmm. As Bhupen is saying, it's very correct. If you look at what the BSP's ideology is going to be, mm-hmm. as far as this assembly election is concerned, the voters do not know. Is she fighting to win the election? Is she fighting to become chief minister once again? Mm-hmm. Because once this Rajya Sabha elections take place on 16th of October, after this, BSP will neither in parliament,
3: zero.
4: Nor in assembly or legislative council. So BSP will be zero everywhere.
1: And Vinod ji, wo chhodiye ki aap Gen Z ke baare mein bol rahe ki nahi, aapka jo so-called captive vote bank kaha jata hai. Kitne saal ho gaye ki behan ji se kuch uske captive vote bank ki bhai dalit rajniti mein kya ho raha hai, Uttar Pradesh mein kya ho raha hai, kuch nahi sunne ko milta. Kya ab wo vote puri tarike se shift ho jayega from Mayawati?
2: Dekhiye, ab Mayawati ji ke paas jo 9.5% vote bacha hai, 9.38 jo Lok Sabha mein aaya tha, wo unka core vote jo Jato vote hai wahi bacha hai. Baki non Jato vote to hai almost shift kar chuka.
1: Par wo core Jato vote bhi to ab chitak jayega na, kyunki now you've got people like Chandrasekhar Ravan.
2: Chandrasekhar aa gaye aur
4: BJP ko bhi mil raha hai.
2: वो डिवाइड हो रहा है ना, उसमें कांग्रेस भी कोशिश कर रही है, इसीलिए राजपाल गौतम को लगाया है, कुछ और जो है जाटव नेताओं को लगाया है, बीजेपी भी कोशिश कर रही है, और चंद्रशेखर तो उसके प्लेयर हैं, तो वो उसको शिफ्ट कराने की कोशिश हो रही है. नान जाटव वोट वो चला गया था 2022 में ही बीजेपी के साथ, नान जाटव वोट, और 19 में भी गया और शिफ्ट किया, फिर वो 22 में भी गया, और लेकिन 24 में वो बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और ये संविधान और ये
1: सब. टिकट कौन डिसाइड करेगा बीएसपी में?
2: वो तो मायावती डिसाइड
1: करेंगी. वो
2: तो मायावती जी
1: अभी भी वो इन कंट्रोल हैं.
2: बिल्कुल, शी इज इन फुल कंट्रोल.
3: टिकट बीएसपी में एक ही फैक्टर डिसाइड करता है, लक्ष्मी माल. वो लेट मी बी वेरी क्लियर एंड लेट इट बी स्टेटेड कंप्लीटली.
2: लक्ष्मी भी करता है फैसला, मायावती भी करती है. वो
1: हां, लक्ष्मी भी करता है, माया भी करती है.
3: वॉल्यूम कितना,
1: सिनोनिमस ही तो है दोनों.
3: वॉल्यूम कितना होना है वो डिसाइड होता है बीएसपी में. बड़ी क्लियर कट प्रथा है बीएसपी में, राइट फ्रॉम यू नो अर्ली डेज ऑफ मायावती. एंड शी सेज इट वेरी ओपनली, यू नो, शी स्टेट्स इट, लुक, आई एम नॉट बीइंग बैक्ड बाय द कॉर्पोरेट हाउसेस, सो हु विल गिव मी मनी, सो आई विल देयरफॉर रेज मनी फ्रॉम माय कैंडिडेट्स टू रन माय पार्टी. एंड शी फील्स दैट्स अ सो कॉल्ड पॉलिटिकल बिजनेस मॉडल व्हिच वर्क्स फॉर हर. जस्ट लाइक यू वर सेइंग, वेयर आर द कैंडिडेट्स, लेट्स से वी वर टेकिंग द कांग्रेस पार्टी, राइट, वेयर आर द कैंडिडेट्स फॉर द कांग्रेस. लेट मी आस्क यू, where are the candidates today for the BSP? Who would want to contest on the BSP?
1: Let me ask you, where are the leaders for the BSP?
3: Where are the leaders for the BSP?
1: Who are the office bearers for the BSP?
3: So if that is where Behenji is today, what kind of an impact is Behenji going to make, whether it is Akash Anand or it's Ishan Anand?
1: And that gives you an idea of...
2: In 2022, Congress got two MLAs and Behenji got only one.
4: मायावती को अपना नोट मिलना है ना, वोट मिलना है,
2: डिस्पाइट दोनों 13% वोट.
1: मतलब उनका ये लास्ट इलेक्शन हो सकता है, रिप्रेजेंटेशन अभी खत्म हो गया, एंड दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर कैप्टिव वोट व्हिच हैड बीन विद द बीएसपी सो फार नाउ अप फॉर ग्रैब्स, एक्सट्रीमली क्रिटिकल इन एंटायर रीजन्स लाइक ईस्टर्न एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. नाउ नेक्स्ट मंथ 12 राज्यसभा सीट्स विल ऑल्सो बी अप फॉर ग्रैब्स, 10 इन उत्तर प्रदेश, 1 इन उत्तराखंड एंड अ बायपोल व्हिच इज गोइंग टू टेक प्लेस इन वेस्ट बंगाल इन द सीट दैट कोयल मलिक वेकेटेड. नाउ दीज इलेक्शंस विल बी हेल्ड ऑन द 16th ऑफ अक्टूबर, बट द बिग क्वेश्चन इज हु विल बी सेंट टू राज्यसभा फ्रॉम यूपी. Many names are doing the rounds. Remember, these 10 seats from UP include those which are held by big names like Union Minister Hardeep Puri, B.L. Verma, Samajwadi Party General Secretary Ram Gopal Yadav, as well as the seat vacated earlier this month by Dinesh Sharma, who is now being made the Lieutenant Governor of Andaman and Nicobar. So let's start with the names. Akhilesh ji, कौन जा रहा है राज्यसभा फ्रॉम उत्तर प्रदेश?
4: देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स रहेंगे. पहली बात तो ये है कि जो विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं उनको ध्यान में रख करके तय किया जाएगा. दूसरी बात, जो कैबिनेट में रिशफल होना है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा. ये भी मत भूलिए कि बीजेपी में संगठन में भी अब दो लोग जनरल सेक्रेटरी यूपी से, स्मृति ईरानी और हरीश द्वेरी, उनमें से भी किसी को जगह मिल सकती है राज्यसभा में. फिर तीसरी सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी को अपना कास्ट बैलेंस देखना होगा. अभी जो बीजेपी के रिटायर हो रहे हैं उनमें आप देखिए तो दो जो है वो राजपूत हैं, इसमें अरुण सिंह है, नीरज शेखर है. नीरज शेखर भी चाहेंगे कि उनको फिर से मौका दिया जाए, तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है, क्या नीरज शेखर को मिलता है नहीं मिलता है.
1: नीरज शेखर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर बेटे.
4: फिर महिला
1: यूज्ड टू बी एन एमएलए फ्रॉम यूपी ऑन अ समाजवादी पार्टी टिकट, बट सिंस हैज लॉस्ट ऑल हिज इलेक्शंस ऑन अ बीजेपी टिकट.
4: फिर उसके बाद महिला फैक्टर देखना होगा. दो महिला रिटायर हो रही है तो आपको जाहिर सी बात है उनकी जगह महिला. सात सीटें बीजेपी जीतना तय है 10 में से, इसमें से दो सीटें समाजवादी पार्टी को जीतना तय है. 10वीं सीट पर मुझे लगता है मुकाबला हो सकता है, क्योंकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों चाहेंगे, क्योंकि चुनाव का समय है, बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हो सकती है, इसलिए 10वां कैंडिडेट के लिए पूरी ताकत दोनों तरफ से लगाई जाएगी. इसमें एक और फैक्टर आपको देखना होगा कि दो मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी और दूसरे हैं बीएल वर्मा जो कि एमओएस हैं. दोनों का टर्म भी खत्म हो रहा है, तो क्या इनमें से किसी को दोबारा लाया जाएगा? बीएल वर्मा का चांस इसलिए बनता है क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष के लिए मजबूत दावेदार थे, कुर्मी नेता हैं, और बीजेपी को ये डर है कि 2024 के चुनाव में जो कुर्मी वोट गया था वापस आता या नहीं, तो इसलिए बीएल वर्मा पर दांव फिर से लगाया जा सकता है, ये एक संभावना रहेगी. हरदीप पुरी को आप क्या करेंगे, क्योंकि पंजाब के चुनाव भी सिर पर हैं, वो बहुत सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अगर वो हटते हैं कैबिनेट से तो फिर आप किसको लेकर?
1: और जो आपके दूसरे सीख फेस थे उनका भी टर्म खत्म हो चुका है, उनको फ्रेश टर्म नहीं मिला है. रवनीत बिट्टू का खत्म हो गया, अब हरदीप पुरी भी चले जाएंगे, कोई सीख नहीं रहेगा.
4: अब जो कैबिनेट है उसमें सिर्फ बौद्ध एक माइनॉरिटी के नाम पर बौद्ध है किरण रिजिजू, और अभी तक हरदीप सिंह पुरी है, तो आपको कोई ना कोई तो माइनॉरिटी लाना होगा पंजाब के लिए स्पेशली लाना होगा. तो क्या हरदीप पुरी रिपीट होंगे, ये एक बड़ा प्रश्न रहेगा. हालांकि दो टर्म उनको मिल चुकी है, बीजेपी में थर्ड टर्म नहीं मिलता है, उनकी उम्र भी 74 ईयर्स की हो चुके हैं, तो क्या मिलती है नहीं मिलती है देखने की बात होगी. लेकिन जैसा कि कहा जा रहा है कि बीजेपी और अकाली का अलायंस हो सकता है, तो क्या हरसिमरत कौर आ सकती हैं फिर से कैबिनेट में वापसी कर सकती हैं? वो महिला भी हैं, सिख भी हैं, पंजाब से भी हैं, वो तीनों उस पर टिक होता है, तो इसलिए बहुत सोच समझ करके
1: बताइए कैबिनेट रिशफल कब हो रहा है. हम हर चीजों कहते हैं कि अभी इसके बाद हो जाएगा, अच्छा अब खड़मास खत्म होगा तो हो जाएगा, अच्छा अब राज्यसभा हो जाएगा, अब श्राद्ध शुरू हो जाएगा, अब नहीं होगा, अब नवरात्रों में होगा, कब होगा कैबिनेट रिशफल?
4: श्राद्ध शुरू हो रहा है उसके बाद ही होगा, लेकिन मुझे कहा गया है कि पहले डिलिमिटेशन का बिल पास होगा, उसके बाद कैबिनेट एक्सपेंशन होगा.
1: तो डिलिमिटेशन का बिल कब पास होगा
4: ये नहीं बताया गया कि कब होगा, लेकिन मुझे लगता है इसमें भी समय लगेगा. अभी तो चिंतन बैठक हुई है, अभी तो चिंतन बैठक डेढ़ दिन चली है, अगले सप्ताह फिर से होने वाली है सेकंड राउंड चिंतन बैठक का, उसके बाद फिर हो सकता है एक राउंड और हो, तो ये अभी तो कवायद चलेगी पूरी.
1: आपने बात की, बताई दीजिए क्या हुआ चिंतन बैठक में?
4: चिंतन बैठक में काफी सारी चीजें हुई हैं. पहली बात तो ये कि मंत्रियों से एक दूसरे के बारे में अनुभव लिए गए. जो बात कही गई थी कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, उसके लिए आपका क्या रोड मैप है, इस पर चर्चा हुई. अलग अलग ग्रुप बनाए गए, उनके सब ग्रुप बनाए गए, 6 प्रेजेंटेशन दिए गए हैं इसी बात को लेकर के. सारे मंत्रियों को एक कागज़ दिया गया कि आप दूसरे मंत्री के बारे में क्या सोचते हैं, उनसे आपने क्या सीखा, ये सब भी हुआ. अलग अलग कमरों में मंत्रियों के ग्रुप्स भी उनको बैठा दिया गया. पीएम मोदी वहाँ पर सब हर कमरे में अलग अलग गए, सब दूर नोट्स भी उन्होंने लिए. ये कहा कि भाई सरकार की जो स्कीम्स हैं उनको जनता के बीच में लेके जाइए, 40-45 गवर्नमेंट की बड़ी स्कीम्स हैं, लाभार्थियों की संख्या को बढ़ाइए, जो लोग छूट गए स्कीम्स में उनको इसके दायरे में लेकर के आइए, सुशासन पर जोर दीजिए, स्वयं का विकास, सेल्फ का आपने डेवलपमेंट कैसे किया है, आपकी कौन सी अच्छी आदतें हैं जिनका कि प्रभाव हो सकता है, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखते हैं, इतना प्रेशर आपके ऊपर काम का होता है कि कहीं आप अपने स्वास्थ्य से समझौता नहीं तो नहीं कर रहे हैं, ये सारी टिप्स भी दिए.
3: रामदेव का घी जरूर दिया जाता
1: है. लेकिन एचआर एक्सरसाइज वो जो होता है ना कि आपस में एचआर एक्सरसाइज. सर क्या हुआ चिंतन बैठक में और क्या हो रहा है ये राज्यसभा में, क्या नाम है?
5: सबसे मजेदार प्रश्न जो पूछा गया चिंतन बैठक में, ये पूछा गया था कि आपको मंत्री के रूप में कंटिन्यू क्यों किया जाए. आप बताइए कि आपने ऐसा क्या परफॉर्मेंस किया है मिनिस्ट्री में कि आपको कंटिन्यू किया जाए. और ये भी पूछा कि सरकार में तो आप लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार के साथ संगठन में आपने क्या भूमिका निभाई है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आपने कितना काम किया. फिर ये भी पूछा कि सोशल मीडिया पर आप कितने एक्टिव हैं अपनी सरकार की योजनाओं को लेकर. जो योजनाएँ केंद्र सरकार लेकर आई है, आपका मंत्रालय जो योजनाएँ लेकर आया है, राज्य सरकार के साथ आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है, क्या राज्य सरकारों के साथ उस योजना को लेकर आपने जमीन स्तर पर काम किया है, उसका फीडबैक लिया है. तो तमाम ओवरऑल प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी मतलब जो मंत्रियों से जानकारी नहीं, कंप्लीट जानकारी उनके लिए, और कई ऐसे मंत्री जो लंबे समय से एक ही पोर्टफोलियो के अंदर लंबे समय से रहे, उनसे बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछा गया है कि लंबे समय मंत्रालय में रहे, 2014 से लगातार किसी के पास कोई मंत्रालय, कोई 2019 से उसी मंत्रालय में, तो उनको लंबा समय हो गया है, तो उनसे ज़्यादा डिटेल से अंदर लिया गया। और कई ऐसे जो नए मंत्री रहे जिस बार मंत्री बने, उनसे भी पूछा गया, युवाओं को लेकर पूछा गया, सोशल मीडिया को लेकर पूछा गया, संघ संगठन सरकार को लेकर पूछा गया है।
1: तो पास कौन हुआ और फेल कौन हुआ, ये
5: तीन कैटेगरी में ना, मतलब
2: आप रिजल्ट पूछ रहे हैं,
1: हां बिल्कुल, सब पर एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन रिजल्ट।
2: पेपर लीक हुआ,
3: व्हाट इज द रिव्यू, इज द नेट डेस्टिनेशन, व्हाट इज द नेट डेस्टिनेशन, द रीजन व्हाई दिस ग्रैनुलैरिटी इज बीइंग अटेम्प्टेड इज बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर इज वेरी वेल अवेयर दैट इन हिज 12th ईयर एज प्राइम मिनिस्टर व्हाट इज द न्यू आइडिया दैट दिस बीजेपी रियली हैज, right? You're now in for an important round of assembly elections. I'm not even talking about 2029, I'm talking about now. The prime minister, in various conversations informally with his key advisors in the communications team, etc., has always expressed one regret, that he's not got that one new idea. Like, see, in 2014 when he became the prime minister, there was a freshness to everything that he was talking about. 2019 was all about, you know, nationalism and patriotism. 2024 was the first hotly contested political election, and see how the BJP's tally came down. By 2029, Vikasit Bharat is a great idea, it's a great concept, but how does it really end up becoming an accessible tool and accessible idea? On that front, all these exercises.
1: What was the new idea then?
3: So I'll tell you that the real challenge before the BJP, and that is one of the principal reasons for this Chintan Baithak, is to be able to figure out that if so many good things are happening, if so many great things are happening across multiple departments, why is it that all these departments cannot come together to give him that one grand idea which can take the BJP forward?
5: Ministers ke performance ko char category mein divide kar diya gaya tha, excellent kar diya tha, uske baad गुड था, उसके बाद एवरेज था, उसके बाद पुअर था। अब मार्किंग तो प्रधानमंत्री करेंगे, सबका फीडबैक लेने के बाद खत्म हो गया है। कल परसों तक मुझे लगता है उनकी मार्किंग आएगी कि कौन एक्सीलेंट मिनिस्टर रहा है, कौन एवरेज रहा है, कौन पुअर रहा है और कौन गुड रहा है।
1: क्योंकि कुछ ऐसी भी खबरें थी, एंड at least a lot of Congress ecosystem seems to be saying that there was a lot of worry also about the manner in which the Prime Minister's birthday was celebrated.
2: Worry?
1: मतलब वरी थी कि उस तरीके का रिस्पांस आया है क्या इसको लेकर?
2: अच्छा,
1: के
2: वो कुछ दीपक जलाने को
4: चल ही रहा है। आपने देखा होगा कि जो वडनगर से वाराणसी से वडनगर की यात्रा चल रही है, दोनों दिन पीएम मोदी ने उनको संबोधित किया, पहले दिन वो आशीर्वाद का दिया, ये कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किया गया और हर दिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम।
1: कांग्रेस कह रही है कि आशीर्वाद के दिए में देयर वाज नो रिस्पांस।
4: कांग्रेस तो ये कहेगी और क्या कहेगी। परसों जो है गृहमंत्री अमित शाह गए थे बीजेपी हेडक्वार्टर, वहाँ पर उन्होंने रिव्यू भी किया है कि जो कार्यक्रम हुआ है वो किस तरह का चल रहा है, तो फीडबैक भी लिया है। सोशल मीडिया पे कुछ ऑडियो वायरल हो रहे हैं कि गृहमंत्री अमित शाह, मुझे पता नहीं कितना सच है, बट गृहमंत्री अमित शाह कोई बहुत ही बूथ लेवल के कार्यकर्ता को फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारी क्या तैयारी है, ये कार्यक्रम जो आपने किया ऐसा क्या रिस्पॉन्स रहा। तो इस लेवल पर कम्युनिकेशन भी होता है ताकि पता रहे कि कहाँ क्या चीज़ चल रही है। अभी मंडे ट्यूज़डे को नितिन नवीन की पहली बैठक होगी, जो नए इंचार्ज और जो सबसे प्रभारी बनाए गए उनकी पहली बैठक भी वो करने जा रहे हैं, उसमें भी इस विषय पे चर्चा।
1: अभी न्यू इंचार्जेस की बात करेंगे, पर राज्यसभा का बताइए, राज्यसभा के कौन नाम हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी से कौन जाएंगे?
2: नहीं तो रामगोपाल जी का तो मुझे लगता है उसको कोई डाउट ही नहीं है।
1: और सीट जो है,
2: एक मुझे लगता है कि हो सकता है किसी मुस्लिम को भेजे हो, जो समाजवादी पार्टी का जो कॉम्बिनेशन, या तो मुस्लिम या फिर अदर देन ओबीसी, यादव ओबीसी,
1: तो किसी पंडित को भेज दे, पीडीए के पंडित को अगर बना के
2: भेज सकते हैं, पंडित भी भेज सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद कोई जो है नॉन यादव ओबीसी को भेज सकते हैं।
1: ओके,
2: क्योंकि वो उनका सॉलिड वोट है ना। पंडित जी तो पता नहीं कब स्लिप कर जाए, कहाँ चले जाए, कोई भरोसा नहीं ना पंडित जी लोगों का।
3: रूठे
2: हैं, नाराज हैं कि रूठे
3: हैं। अखिलेश इज वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट दे कैन नॉट बी एनी इरोजन इन स्कोर वोट बेस व्हिच इज ऑफ द यादव कम्युनिटी एंड द मुस्लिम कम्युनिटी। सो आई वुड बी सरप्राइज्ड इफ अखिलेश डिसाइड्स टू पुट a member as a 10th candidate of either of these two communities, which is why I think that what Akhilesh was initially talking about, that there could be a battle for the 10th seat, that is where that battle could become very, very interesting. Because if it's a newcomer you know, the BJP is not going to let go of that one seat. Hmm. BJP is a party in power in the center, in the state. They can be all kinds of.
2: यादव तो रामगोपाल जी रहेंगी.
3: वो तो हैं. नहीं रामगोपाल जी तो परिवार हैं. उनको तो छोड़ दीजिए.
2: परिवार भी हैं. यादव
3: भी हैं. वो तो उसमें तो कोई debate ही नहीं है.
1: और plus कितने उनके 5 terms हो चुके हैं. He's been 5 term राज्यसभा में.
2: हाँ उनका तो.
3: He's
2: वो तो guardian है तो ऐसे family के party के नेताजी के जाने के बाद.
1: So I just want to give a quick background of some of the leaders whose term from the BJP is getting over in the Rajya Sabha. Hardeep Puri we've spoken of. He's the petroleum minister. BL Verma, he was MOS consumer affairs. Neeraj Shekhar has been a 3-time Rajya Sabha MP and of course the son of former Prime Minister Chandrasekhar. So it's important to have him there. Brij Lal is former IPS officer. He was in the police force when Mayawati was chief
2: Dalit
1: minister. He's a Dalit. And I think he has also led a number of these fact-finding commissions for the BJP.
2: Yeah,
1: also.
2: SST commission
1: to West Bengal, Sandesh Khali.
2: SST commission ke chairman the UP ke.
1: SCST commission ke chairman reh chuke hain. Let's pull up that graphic please. Arun Singh, who was former BJP headquarters.

0: Waters in charge. I think now even
1: General Secretary Bidhyab nahi hai.
0: Unko hata chuke hai. So he's out of the Sangathan altogether. Seema Dwivedi, three-time former MLA. Geeta Shakya, first-time MP. But she's an OBC leader of the BJP in the Rajya Sabha. And Ram Gopal Yadav, we've already spoken of. So ye pura jo cast ka jo hai, कुछ इंटरेस्टिंग नाम आपको लग रहे हैं, स्पेशली ओबीसी कम्युनिटी, लोध कम्युनिटी, ऑल ऑफ देम नीड टू गेट रिप्रेजेंटेशन।
2: लोध का अच्छा हमने अभी रायबरेली जो कहे थे अखिलेश यादव, वहाँ उन्होंने नारा दिया कि चुनाव योगी बनाम लोधी।
0: अच्छा, योगी बनाम लोधी,
2: क्योंकि उस इलाके में लोधी कम्युनिटीज की काफी,
3: उनका एमएलए समाजवादी पार्टी का लोध
2: है
3: और एक पासी है, दोनों के घर भी हो गए हैं, तो वो वैसे
2: पासी और लोधी इसलिए वहां काफी
3: नॉन यादव ओबीसी एंड नॉन जाटव एससी, उनके भी उन्होंने मैसेज अखिलेश यादव ने यहाँ पे दिया रायबरेली में अपना।
0: इंटरेस्टिंग,
3: मैसेजिंग में कहीं कमी नहीं है। वो जो आपने भगवान कृष्ण वाला उनका दिखाया, हनुमान जी का आशीर्वाद ले रहे हैं, सब तरह के मैसेज है, नीला रंग लगा दिया बस के ऊपर।
0: एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर दैट वी मे लाफ अबाउट दीज पोस्टर्स, but there is a very clear attempt by Akhilesh Yadav in no way that he should be branded anti-Hindu, because that legacy of Mulayam Singh Yadav aur aapne kar sevako pe goli chalai thi, all the right signaling is being done over there ki bhai anti-Hindu ka tag kahin stick na kare.
3: Wo to BJP ne khatam kar diya na mudda, Padma Award dekar
2: ke. Padma Award dekar
3: ke kya bacha aap, kis mujhse aap
0: hoge Padma Vibhushan jo Mulayam Singh Yadav ko unhone diya.
2: Wo to 2012 mein tag khatam ho gaya tha jab 225 seats aa gayi thi Samajwadi party ki, wo to baad mein jab 17 में, क्योंकि घर में झगड़ा, पार्टी में झगड़ा और फिर मोदी जी का उदय, फिर वो शमशान कब्रिस्तान
0: और शिवपाल यादव अलग,
2: शिवपाल यादव अलग हो गए थे, तो वो फिर एक बार चिपक गया उनको।
0: एंड व्हिच इज व्हाई नाउ परहैप्स द बीजेपी इज ट्राइंग अनदर टैक, व्हाइल दे कीप सेइंग दैट लॉ एंड ऑर्डर इज द मेन फोकस ऑफ अ योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट, व्हाट वर द पोस्टर्स पुट अप फॉर अखिलेश यादव ऑन दिस एंटायर रूट, अखिलेश के माफिया, माफिया के अखिलेश, विद द पिक्चर्स ऑफ मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद and Azam Khan on them. क्या ये stick कर रहे हैं?
2: But Azam Khan को mafia तो नहीं मानना चाहिए।
0: अब ये poster में इन्होंने
2: लगा। मतलब मेरा personal है, वो political leader से।
4: BJP will always use Akhilesh Yadav. What's the core vote for Akhilesh Yadav? The MY combination. So no matter what Akhilesh Yadav does, he can, you know, he can move from Bhagwan Parshuram to Lord Hanuman to Lord Krishna. But in reality, Akhilesh's core vote base is the Muslim community in the state of UP.
0: तो इसीलिए तो तीनों gangster लगाए हैं, वो वही लगाए हैं।
4: हाँ, BJP को चाहती है। मुख्तार
0: अंसारी, अतीक अहमद।
4: BJP तो बिल्कुल चाहती है कि अखिलेश का जो प्रोजेक्शन है वो पूरा का पूरा यही
0: रहे। वो स्टिक कर रहा है अभी।
4: Look, I mean, you know, there is no way in hell that Akhilesh Yadav can ever say that he is not the leader of the Muslims. You're right that he does not want to be projected as being anti-Hindu, but that doesn't mean that he is
0: not Muslims. I'm saying this law and order issue, jahan bar bar gangsters are being associated with the Samajwadi Party.
4: He's been out of power now, Padmaja, for so long. You know, UP mein hai, dam chuki jurm hai kam, wo to Amitabh Bachchan ne kab bola tha?
0: Arre sir, but even Tejaswi Yadav was out of power na, but Jungle Raj came back to haunt him.
4: I see.
0: Ab wo Jungle Raj, Mafia Raj ka stick karega kya Samajwadi Party?
4: Aap dekhiye, aap in Bihar, you can say that the Yadav community was the aggressive community, and therefore, you know, if the Yadavs come to power, then this is what will happen. Law and order will be, you know, all over the place. Same thing you can argue about Akhilesh Yadav also.
0: अभी तो वो कहते हैं जिस पे हो समाजवादी पार्टी का झंडा उस पे बैठा है एक गुंडा।
3: तो आज भी यहाँ से हम जहाँ बैठे हैं, यहाँ से कुछ ही दूर ग्रेटर नोएडा में आज गृहमंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ दोनों एक ही मंच पर थे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, याद दिलाया कि योगी आदित्यनाथ ने आके यहाँ पर माफिया राज को खत्म किया है, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बनाया है। तो बीजेपी का प्लैंक वही है, योगी की लीडरशिप इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को एस्टैब्लिश किया, माफिया राज को खत्म किया है। वो तो ये कहेंगे ही बार बार बीजेपी।
0: सो दैट इज दैट जंगल राज और इन उत्तर प्रदेश इज गोइंग टू बी अ रेकरेंट थीम दिस टाइम अराउंड।
2: मैं थोड़ा बिहार और यूपी में थोड़ा फर्क,
0: ODOM बोला ना योगी आदित्यनाथ, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया,
2: नहीं वो
0: मिररिंग व्हाट ही हैड सेड, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट।
2: बीजेपी का रेटोरिक है और चलेगा, मतलब बीजेपी करेगी उसको, लेकिन बिहार और यूपी में एक फर्क है। बिहार में जो घटनाएं हुई जंगल राज के टाइम में, उस तरह की घटनाएं यूपी में नहीं हुई कि चीफ मिनिस्टर के घर में कोई बैठा हो, उसकी कार चोरी हो जाए और वो जाके वहाँ जाए, इस तरह की घटनाएं यूपी में सुनने, ये ठीक है दादागिरी और सब चलता था, अभी भी चल रही है दादागिरी क्या, नहीं चल रही है क्या, अब दूसरों की चल रही है। तो ये ग्राउंड पे तो हर आदमी देख रहा है ना, तो आप पोस्टर लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए। अब ग्रेटर नोएडा से एक लड़की अगर वो बस में जाती है और 45 किलोमीटर उसका रेप होता है, वो भी तो इसी राज्य की घटना, क्या लॉ एंड ऑर्डर है? तो ये सारी चीजें भी तो आ रही हैं मीडिया में, अखबारों में, सब जगह इस तरह खबर।
0: वी कैन जस्ट डिकोड द पॉलिटिकल रेटोरिक, वेदर इट इवेंचुअली स्टिक्स, वेदर द पीपल बिलीव इट।
1: लेकिन अगर एक मुख्यमंत्री गैंगस्टर के घर भी जाता है, अगर भाई मुलायम सिंह गए थे ना अतीक अहमद के घर गए थे, तो ये भी लोगों को याद है ना कि किस तरीके से अतीक अहमद के घर पर मुलायम सिंह जाते थे, किस तरीके से अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का किस तरीके से सरकार के अंदर दबाव था, दखल था, किस तरीके से वो अपने समानता सरकार चलाते, तो लोगों ने देखा है। और उसके बाद 2012 से लेकर 2017 तक का अखिलेश का कार्यकाल था, तो अखिलेश यादव ने अपनी छवि वो जो मुलायम सिंह के समय अपराधियों की और संगठित गिरोह की जो बनी थी उससे बाहर नहीं निकल पाए, वह लोग भी अखिलेश के

0: तो ये जनता इस बात को समझती है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उसी पर फोकस कर रही
1: है। और अगर 2012 में जब डीपी यादव की एंट्री हो रही थी, उस वक्त उन्होंने एक बयान दिया था कि डीपी यादव जैसे लोगों की एंट्री समाजवादी पार्टी में नहीं है। उस बयान ने उनका जो ग्राफ था इतना ऊपर कर दिया था कि तमाम लोगों ने जो लोगों को वोट मिला, अखिलेश यादव की इमेज बिल्कुल बदल गई थी। ये सही है कि बाद में उन्होंने मान लीजिए उनको अफजल खान अफजल अंसारी को बनाया, बट अफजल अंसारी भी तो इलेक्टेड हैं, ऐसा तो है नहीं कि बद्दू की नाल पे ही एमपी बन गए।
2: तो अतीक भी थे,
1: अतीक भी थे, बट इलेक्टेड बहुत। धनंजय सिंह भी तो इलेक्टेड है। धनंजय सिंह किसके साथ है?
2: हां राजा भैया भी इलेक्टेड है। खैर एनीवे वी आर ओनली हियर टू टेक ओवर द
0: मैसेज। जोड़ देता हूं, एंटी हिंदू अखिलेश यादव को नहीं बनना है तो अखिलेश यादव का राम मंदिर दर्शन करने चले जाए तो बीजेपी की उनकी जो एंटी हिंदू की जो छवि है पूरी, मतलब बीजेपी बनानी पड़ेगी। उतना कर ले,
2: अब ही इज मेकिंग अ सेपरेट टेंपल, वो उसमें दर्शन करने जाएंगे, बट क्लियरली अ लॉट ऑफ चांसेस फॉर केदारेश्वर मंदिर। So there is a lot of churn happening in the BJP organization. Like we mentioned, state in charges and co-in charges have also been changed. 6 leaders have got charge of 2 states. This includes Harish Dwivedi. He's been appointed in charge of Bihar and Karnataka. Smriti Irani has been given charge of Chhattisgarh and Haryana. Satish Punia had already got Punjab earlier. Now he's got Jammu and Kashmir. Ram Madhav has been put in charge of Tamil Nadu and Uttarakhand. And Sunil Bansal has been made in charge of Telangana and West Bengal. Akhilesh ji, promotion for Ram Madhav, Smriti Irani and Harish Dwivedi. Big responsibility.
3: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए राम माधव इससे पहले जम्मू कश्मीर के प्रभारी रह चुके हैं, पूर्वोत्तर राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं। जब अपने पहले टर्म में जब आए थे जनरल सेक्रेटरी थे, इस बार उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो एक सेरेमोनियल पोस्ट होता है, इसके बावजूद भी उनको महत्वपूर्ण राज्यों की जिम्मेदारी दी गई, उत्तराखंड जो कि चुनावी राज्य है, और तमिलनाडु जहाँ पर कि बीजेपी अपनी पूरी कोशिश कर रही है सत्ता में आने की या कहें कि ताकत में आने की, तो वहाँ पर भी राम माधव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। स्मृति ईरानी को निश्चित तौर पर 2 बड़े राज्य मिले हैं, छत्तीसगढ़, वहाँ पर बीजेपी की सरकार है, इसलिए जाहिर सी बात है कि स्मृति के सामने भी एक बड़ी चुनौती रहेगी। हरीश द्विवेदी का आपको यहाँ पर नहीं भूलना, हरीश द्विवेदी बीजेपी के नए स्टार दिखाई दे रहे हैं जनरल सेक्रेटरी के तौर पर। उनको बिहार की जिम्मेदारी दी गई जो कि पड़ोसी राज्य यूपी का, तो उनके पास भी एक बड़ी चुनौती रहेगी। सुनील बंसल पहले से ही आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का, उड़ीसा का काम देख रहे थे, तो एक बार फिर से उनको वही जिम्मेदारी, पश्चिम बंगाल का देख रहे थे, तो वही जिम्मेदारी उनको दोबारा।
4: But the one person I just want to talk about is,
2: sorry, I just want to pause you for a second. Okay, unfortunately, Vinod ji has to leave us midway because in this very heated political season, he has many, many engagements. Vinod ji, thank you very much for joining us. अगले हफ्ते फिर से politics जिंदाबाद में, hope to see you again. Thank you very much. आपका माइक सर, माइक माइक. Thank you. All right, sorry, Bhupen, you were saying.
4: I just want to specifically refer to Harish Dwivedi because I find his elevation, you know, very fascinating. Because of the better part of the Yogi administration in UP, one of the most vocal critics of what was going on in UP under Yogi, certainly from this Brahmin versus Thakur divide, was Harish Dwivedi. You know, and I know for a fact that on multiple occasions he would come, he would inform the Home Minister that the Brahmins were being overlooked and the bureaucracy was completely being led by the Thakur community. Now, I just wonder whether one of the reasons why he's also been elevated by being given the charge of the politically crucial state of UP is somewhere,
3: Bihar and Karnataka,
4: Karnataka is somewhere to give this message, you know, to the UP chief minister as well, that he needs to maybe rethink and rework his political affinity to a particular community.
2: So you're saying it is to undercut Yogi Adityanath?
4: Maybe to give a sense. I would say undercut.
3: पिछली बार भी हुआ था, राधा मोहन दास अग्रवाल जो गोरखपुर में जिनकी योगी के साथ कभी पट्टी नहीं बैठी, उनको भी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था, उनको भी कर्नाटक राजस्थान का इंचार्ज बनाया गया था। तो ये मैसेजिंग तो बीजेपी के भीतर होती है, देते हैं।
2: Because बीच में it was said and today you mentioned when the Home Minister was in Greater Noida here at an IT park. Quite fulsome praise he heaped on Yogi Adityanath. He praised Yogi Adityanath.
3: It's very important that you notice this because there's a lot of talk that there's no coordination between Delhi and Lucknow. There's a lot of talk this and that, the differences and all. But today the way Home Minister Amit Shah was there, not only was there, but he praised Yogi Adityanath, his leadership, his success on the law and order, and also on the front of investment, all on all those parameters, well, the way.
2: Then why will he undercut him with Harish Dwivedi?
3: It's a different issue. You talk about Savarn, you say upper caste, you just talk about one caste, that is Brahmins. Rajputs are not unhappy with the BJP in Uttar Pradesh. Though during 2024 Lok Sabha elections, there were Rajput sammelans across from Western UP till Eastern UP, and the talk in the political circle is that they were being organized to challenge Modi's leadership. But and we saw what happened in the election results. But this time situation is different. I've been talking to very senior

0: senior leaders of the BJP, they are worried and they are also concerned about what's happening on the ground as far as the UP is concerned. Mm-hmm. And they are saying this, yes, we have taken note of it,
1: you know,
0: and we are working to rectify.
1: You land at the Prayagraj airport or at the Babatpur airport in Banaras, you drive anywhere for 50 kilometers. You know, I come from Banaras and I keep going there all the time. I'm always amazed that I see all posters of BJP representatives, right from Zila Adhyaksha, Mandal Adhyaksha, you know, any position that you can think of, all Sings. I do not see any political representation in that sense at an organization at a very base fundamental level being given to the Brahmin community, which is one of the main reasons why there is clear.
2: Brijesh Pathak is there.
1: Well, I mean, yeah, Brijesh Pathak. I mean, you know, if you call him really a big leader of the community, which is a different story. That's one. Two, the point about Yogi Adityanath. Amit Shah will praise Yogi Adityanath to the extent I will point you to an interview which was done of the Home Minister immediately after 2022 UP Assembly result, where this specific question was raised to Amit Shah, that what does he think about Yogi Adityanath being the next big leader, potentially the next Prime Ministerial candidate. His response, and I'm quoting, was that, look, I mean, as you know, Prime Minister Modi, he's numero uno, but in the first amongst equals list, where is the doubt that Yogi Adityanath is the most popular leader? This was Amit Shah on camera, on court. But politics is not just about what's being stated on camera. It's also about what's happening behind the scenes, which is where all these appointments of Harish Dwivedi, etc.
2: Speaking of what's happening behind the scenes, what is going on in the Election Commission? There is massive political heat. What you're seeing right now is all the protests that have taken place on Friday, pan-India protests that have been held by various parties. The Congress Party, RJD, TMC, everyone has opposed. Well, after the report that came out in the Indian Express, the CJP has set a 48-hour deadline and said we are going to start a Jantar Mantar 2.0. But the bigger question is not just what the Congress is saying, they're saying vote chori. What is exactly happening inside the Election Commission? Because remember, this was an extremely unusual situation where you've got 14 objections within a span of 10 months being expressed by deputy election commissioners and them writing to the cabinet secretary, no less. So, in a government that so far has been very, very guarded, hardly any information, there was no talk, not like there wouldn't have been rumblings in the last 12 years, but Sameer ji, kabhi aapne pehle suna tha is sarkar ke andar ki koi noting, koi objection, kabhi bahar nikle? Kya ho raha hai election commission ke andar?
3: Nahi, ye bahut matlab, jis tarikhe se election commission ko leka jo report aayi Indian Express mein, mujhe lag raha hai ab election commission ke uske baad chuni hui jo chuppi hai, matlab election ke andar uske baad jo chuppi saad li, wo jyada khatarnaak hai. Election commission ko saamne aakar batana chahiye ki is maamle ko lekar ki exactly kya hua tha. Agar tino ne milkar faisla liya hai, to tino mukhya chunav ayukt, dono chunav ayukt saath mein aaye, patrakar vaarta le aur sare prashno ka जवाब दे जो प्रश्न उठाए गए थे. फॉर्म 6 को लेकर उठाया गया था, तमाम गोवा में जो हुआ उसको लेकर किया गया था. तो मुझे लग रहा है कि अब ये चुनाव आयोग के ऊपर है कि चुनाव आयोग इसको कैसे लेता है. सिर्फ एक प्रेस रिलीज देकर कि सारे फैसले साथ में मिलकर लिए गए थे, मुझे लगता है सफिशिएंट नहीं है. और जिस तरीके से
2: व्हाई डिडंट दे कम आउट ऑल ऑफ देम थ्री टुगेदर एंड से कि कोई प्रॉब्लम नहीं है? अगर प्रेस स्टेटमेंट कह रहा है कि यूनानिमस है, तो तीनों बाहर क्यों नहीं आए?
3: तीनों आना चाहिए. अगर मैं कह रहा हूँ मुख्य चुनाव आयुक्त भी नहीं आए, तो दो जो चुनाव आयुक्त जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो मुख्य चुनाव आयुक्त सहमत नहीं थे, उनके फैसले माने नहीं जा रहे थे, वो उनके साथ नहीं थे, कम से कम सिंधु साहब और जोशी साहब खुद साथ में आकर बोल सकते हैं कि नहीं, जो फैसले हुए हमारे सार्वजनिक मतलब सहमति से हुए और हम उसमें शामिल थे. तो मुझे लग रहा है कि अब चुनाव आयोग के ऊपर है, मामला बहुत गंभीर है. अब कैसे इसको आगे बढ़ते हैं ये देखने वाली बात होगी. अब चुनाव आयोग के लिए भी एक इश्यू होगा ना. आप देखिए, अब मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी.
2: But Ajay, what I wanted to ask was two things. One, could Ganesh Kumar go? And two, what does the government have to say about now largely a huge number of people saying this is beginning to feel like UPA 2.0, where, you know, the same leaks happened, where there were street protests, what we saw in 2012, 2013. Now, I'm not saying it's the same, but similar.
4: मुझे लगता है कि जो public memory होती है वो short होती है. हम भूल जाते हैं कि election commission में इससे पहले भी इसी तरह के झगड़े और इस तरह के विवाद, आपस में कड़ुआहट, ये सब चीज़ें पब्लिक में आती रही हैं. इलेक्शन कमिश्नर से लोग इस्तीफ़ा भी देते रहे हैं. इलेक्शन कमिश्नर्स ने इस्तीफ़ा दिया है, इस्तीफ़ा देकर के अलग हो गए. कई के खिलाफ जांच भी हुई है, कई बाद में जाकर के पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट भी उनका हो गया, कुछ ने पॉलिटिकल पार्टीज भी ज्वाइन कर ली.
2: पर इस सरकार में इस तरीके का लीक पहले नहीं हुआ था. नोवेयर डिड वी गेट टू नो दैट ऑन रिकॉर्ड
4: लीक में क्या है. इसमें लीक में ये कि जो प्रोसीजर आई गई थी, इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस रेज किए गए थे. क्या उस ऑब्जेक्शन के बाद उस फैसले पर कोई इम्पैक्ट पड़ा? नहीं पड़ा. इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जो प्रोसेस होती है
0: कंसल्टेशन की, उसमें ये इस तरह की बातें आती हैं, हर व्यक्ति अपना ओपिनियन देता है, लेकिन अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखेंगे तो जब उन्होंने ऑब्जेक्शन किया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फॉर्म 6 की आप बात कर रहे हैं उसको एक तरह से वैलिड ठहराया, तो उसमें जो फैसला लिया गया था सही लिया गया था, इसका मतलब तो यही हुआ इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया। और दूसरी बात यह है कि सवाल तो ये उठ रहा है ना कि जो आपकी वोटर लिस्ट है वो प्योर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसमें गड़बड़ियां क्यों हों?
2: सर वो तो ठीक है, बट रिपोर्ट के बारे में सरकार का क्या सोचना है, ये गले की फांस है नहीं है? अब जंतर मंतर पे बैठ जाएंगे फिर,
0: वो तो बैठेंगे तब वो देखा जाएगा, वो सरकार के लिए कि हम देखेंगे तब कि क्या करते हैं, लेकिन उनका ये कहना कि ये
2: जो हम देखेंगे वाला अप्रोच कब तक चलेगा, आपने देख लिया धर्मेंद्र प्रधान को जाना पड़ा।
0: सरकार ये कह रही है कि ये जो इलेक्शन कमीशन का मामला है इसमें बिल्कुल क्लियर कट है कि कांग्रेस पार्टी इसको एक अननेसेसरी इशू बना रही है, उनका ये कहना है कि ये जो बातें सामने आई
2: दे आर नॉट वरीड,
0: दे आर नॉट वरीड,
2: दे आर नॉट वरीड।
1: नो, आई डिसएग्री, आई
2: बिकॉज़ देयर इज अ कंस्पिरेसी थ्योरी व्हिच सेज दैट दिस इज इंजीनियर्ड बाय द गवर्नमेंट।
1: वेल, देयर इज अ व्यू एंड आई एम वन ऑफ दोस हु एक्चुअली सब्सक्राइब्स टू दिस व्यू दैट देयर इज अ सेक्शन विद इन द गवर्नमेंट व्हिच इज एक्सट्रीमली अपसेट विद ज्ञानेश कुमार एंड व्हाट ही हैज बिकम। व्हाट आई गेट टू हियर इज दिस दैट ज्ञानेश कुमार ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स हैज बीन इंडल्जिंग इन सम लूज टॉक which has reached the ears of the Prime Minister, that this government may not have been there if there was no Ganesh Kumar. Now, this kind of phraseology, these kind of, you know, we've seen what happened to Jagdeep Dhankar. I mean, it all happened overnight. In this government, you know, depending on who's feeding information to whom, things can get out of hand very, very quickly. I'm just wondering whether Ganesh Kumar has ended up crossing the thin red line, A, by claiming, allegedly, what he's claimed, and B, maybe he's looking, you know, he wants something from the government, which the government is not interested in giving him beyond a point. I can give you an entire list of officers, right, who were supposedly aligned with the government, but post-retirement or close to retirement, and, you know, Gyaneji still has some time. It's not as if
2: he's that in 2029.
1: He still has a long term, but that's the other problem. Now, with the kind of taint that Ganesh Kumar has been hit by, can he really?
2: But Akhilesh is saying they don't think it's a
1: thing. I disagree. You know, I mean, with this kind of a mass mobilization which is happening against Ganesh Kumar,
2: okay,
1: do you think that the BJP would be liking the idea?
0: Several Rajiv Kumar ke liye bhi yehi kaha gaya tha. आप भूल नहीं सकते ना, ये तो होता है, मेमोरी हम लोग इतनी शॉर्ट होती है, राजीव कुमार के बारे में ये सब बातें कही गई थी,
1: नहीं, लेकिन अब ज्ञानेश कुमार आ गए हैं इस तरीके की,
0: तो उसके बाद अगला जो आएगा उसके बारे में ये कहा जाएगा। ये तो होते ही, जब बीजेपी अपोजिशन में थी तब बीजेपी भी इसी तरह से इलेक्शन कमिश्नर के बारे में सवाल उठाती थी। नवीन चावला को आप भूल गए क्या? लवासा को आप भूल गए?
2: एंड लुक, द प्रॉब्लम इज दैट इवन इफ ज्ञानेश कुमार वाज टू गो, हु विल बिकम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर? द टू जेंटलमैन हु आर the
0: either Sandhu or Joshi,
2: both of whom whose appointment was objected to by the Congress party, by their LOPs, whether it's Adhir Ranjan Chaudhary or Rahul Gandhi. We're out of time today. Yes, but sir, if you're saying that...
1: But I just want one line, you know, on okay, this one. Since we're talking of these two gentlemen, there is a precedent, by the way, in the Central Bureau of Investigation, Alok Verma and Rakesh Asthana, who were both supposedly close, you know, to the number one and number two of this government in 2018, when the things went really out of control, what happened? Both of them were asked to leave. So I wonder whether something like that may end up happening in the election commission as well.
2: Okay, if you're saying that he could follow on the footsteps of Jagdeep Dhankar, I can just say we wish the very best of health to the Chief Election Commissioner Ganesh Kumar. For the time being though, thank you very much all gentlemen for having joined us in saying politics, Zindabad. See you soon.

0: भारत ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि भारत टेक्नोलॉजी को डिफाइन करे, और यही वह अप्रोच है जो भारत को स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की ओर ले जा रही है।
1: And Punjab's lovely professional university students vandalized campus block highway over alleged rape case. A video from Delhi's Tilak Nagar shows PWD Minister Parvesh Verma allegedly slapping a young man who was filming him during a road inspection. Delhi Minister Parvesh Verma, in his response, said that an AAP worker had abused his family and he reacted in anger. Let's cut across to some latest news coming in. This is the Delhi slapgate row that has now triggered a war of words between Rahul Gandhi and BJP Minister Parvesh Verma. Rahul Gandhi attacked the minister over the viral video and said that the Aam Aadmi Party leader was attacked for questioning minister. Just like students allegedly lathi charged for questioning paper leaks, Parvesh Verma has hit back directly targeting Rahul Gandhi, saying, "Rahul, let it be, you know nothing." The war of words between the two sides. Let me cut across to my colleague Ishika, who's joining us live to give us more details on the story. Ishika, as expected, a political war of words, this time between Rahul Gandhi and Parvesh Verma. Aam Aadmi Party and Congress Party at least united on one of the issues here.
2: Well, certainly seems like that. You know, a rare picture with the Aam Aadmi Party and the Congress Party coming together and in fact slamming the Delhi minister Parvesh Verma over the alleged slapgate controversy. In fact, Rahul Gandhi has gone on to post on X saying that this particular incident shows BJP's arrogance across the country. Now, on that, the Delhi Minister Parvesh Verma, in fact, has gone on to respond and said that Rahul Gandhi knows nothing and that's why he should let it be. Let me tell our viewers that, in fact, after this entire controversy happened, it was Arvind Kejriwal, the Aam Aadmi Party Supremo, who, in fact, had demanded the arrest of the Delhi Minister Parvesh Verma, over which now Parvesh Verma had gone on to respond, saying that the entire
1: matter... All right, Ishika, as you get us all those details, there's some more breaking news coming in at this point in time. Aam Aadmi Party is staging a protest in Tilak Nagar. There's major drama which is being witnessed right now as far as the Tilak Nagar incident is concerned, where Delhi Minister Parvesh Verma had slapped one of the boy who was filming this entire inspection slash the incident that really happened. Let's listen into the voices.
3: जब तक परमेश वर्मा पर एफआईआर नहीं होगी, हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे।
1: Ishika, once again coming back to you, major drama unfolding, it seems like, in Tilak Nagar. It seems like the political controversy may have just started.
2: Well, yes, Anusha, you know, the political controversy over this and the drama over this only now escalating with this, the Delhi chief of the Aam Aadmi Party now currently holding a protest at Tilak Nagar, exactly the spot where this entire controversy unfolded. And he's now sitting on dharna with the Aam Aadmi Party karyakartas and going on to say that until and unless an FIR is registered against the Delhi minister, they are not going to leave the spot. We are in fact seeing in the visuals how in fact there's a scuffle that's currently going on between in fact the Aam Aadmi Party karyakartas and the Delhi police officials. And let me tell you that we are, you know, the response that had come from Parvesh Verma, he had gone on to say that he only reacted after the Aam Aadmi Party worker abused his family. And also he goes on to allege that Jarnail Singh, the Aam Aadmi Party MLA from that area, in fact, was allegedly demanding commission from the PWD engineer. Right. So certainly now we are seeing that the war of words only escalating over the matter. Over to you.
1: All right, Ishika, getting us all those details, the drama unfolding in Tilak Nagar. Let's tell you how it all started. A political row escalated in Delhi after a video appeared to show PWD Minister Parvesh Verma slapping an AAP worker during a road inspection in Tilak Nagar. Aam Aadmi Party Chief Arvind Kejriwal demanded minister's arrest and said he will visit the spot. Verma has defended his action, claiming that the video does not show the full picture. He alleges that the app worker abused him first while accusing app leader Jarnail Singh of seeking commission over the road work. Verma also alleged that Jarnail Singh's aides abused his family and claimed he reacted in the heat of the moment. The Aam Aadmi Party leader has filed a complaint, demanded disciplinary action, while app leaders have demanded an apology. You also saw the dharna which is happening right now outside that entire area in Tilaknagar. The row has now widened into a political confrontation, with the Aam Aadmi Party demanding action against Verma, while the minister has hit back with allegation of commission, demands and corruption.
4: दिल्ली के तिलक नगर में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने एक सड़क बनाई। सड़क की क्वालिटी इतनी गंदी थी कि हाथों से वो सड़क उखड़ रही थी। जब वहां पे लोकल लोगों ने मंत्री जी को वो सड़क दिखाई तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने वहां खड़े हुए एक लड़के को जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था खींच के थप्पड़ मारा। मोदी जी ने कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जो कि आम आदमी को इंसान नहीं समझते। मैं कल इस सड़क का मुआयना करने खुद जाऊंगा।
5: हमारे जो वहां के कार्यकर्ता थे मैंने उनको नहीं बुलाया। जब वहां पे जर्नल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए, और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा मैंने भी वही किया। मैं आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूं कि आप जो काम नहीं कर पाए आज वो हमारी सरकार कर रही है, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है।
6: ये हम उन्हें बस आईना दिखा रहे थे कितना घोटाला हुआ है। उन्हें बता रहे थे कि ये 25 करोड़ के इस रोड का टेंडर था, इसमें आई थिंक 2 करोड़ भी नहीं लगे होंगे। जो हमने खुद दिखाया कि कारपेट की तरह रोड उखड़ रही थी, ये चीज़ उन्हें बताई कि घोटाले शायद से उन्होंने ही करा है, कि PWD विभाग उनका है। वो बात की जब उनके सामने एक ही घोटाला उनके घोटाले के हमने उनके सामने करा कुछ ये झेल नहीं पाए, तो उसी समय उन्होंने ये चपेड़ मारी मुझे। मेरे हाथ में फ़ोन था, मेरा वो फ़ोन फेंका, और साथ के साथ जो उनके साथ साथी थे गुंडे थे जो भाजपा के, उन्होंने मुझे उन्होंने लाते घूसे चलाई हैं, उन्होंने जान से मारने तक की धमकी दी है मुझे। ये और ये बोलते हैं जैनजीज के साथ हैं हम, ये साथ हैं, चपेड़े मार रहे हैं।
7: ये सड़क का टूटा हुआ टुकड़ा देखकर मंत्री जी बौखला गए, क्योंकि कैमरे हमारे भी चल रहे थे पर इस समय भाजपा के बंद हो गए थे। बौखलाहट में मेरा जो साथी कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था, मंत्री जी ने उसका फ़ोन खींचा, ज़मीन पे मारा, उसके थप्पड़ मारा गुंडों की तरह, और उसको जान से मारने की धमकी दी, लाते मारी, और चोरों की तरह यहाँ से गाड़ी में बैठ के फरार हो गए। पहली कार्रवाई तो PWD के इंजीनियर्स के ऊपर जो मंत्री जी को करनी चाहिए थी, दूसरी कार्रवाई मंत्री जी के ऊपर क्योंकि उन्होंने सरेआम क्राइम किया है, थप्पड़ मारा, जान से मारने की धमकी दी, उस पर हमला किया, उसका फ़ोन तोड़ा, तो दूसरी कार्रवाई मंत्री जी के ऊपर। अगर इस देश का कानून आम आदमी और एक मंत्री के लिए एक समान है तो तुरंत मंत्री प्रवेश वर्मा के ऊपर FIR करके उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
1: Shifting our focus, protests at the Lovely Professional University over alleged sexual assault turned violent, with students not just vandalizing campus property and clashing with the police. There were parts of the campus property and buildings that were set on fire as the unrest escalated through the night. Police personnel were deployed in large numbers. Clashes intensified. Several cops were reportedly injured amid the violence. The situation spiraled as the police resorted to lathi charge to disperse the protesters and bring the campus situation under control. Dean Saurabh Lakhanpal has blamed what he described as anti-social elements for vandalism, saying violence was not representative of the students. And the dean has also said the university strongly suspects a conspiracy behind the escalation amid the claims and counterclaims surrounding this entire incident and violence.
8: स्टूडेंट्स के द्वारा पत्थरबाजी की जा रही थी, हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरें कैसे ये गाड़ी तोड़ी गई, पूरे शीशे टूटे हुए हैं, यहाँ पे सारी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये पुलिस का व्हीकल है जिस पे अटैक किया गया स्टूडेंट्स द्वारा, जो पुलिस के आला अधिकारी है वो भी पहुँचे हुए हैं। ये देखिए दूसरी गाड़ी जो टूटी है, क्योंकि पुलिस ने वहाँ पे उनको लेके वहाँ पे एक्शन करने की कोशिश की, और जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने पत्थरबाजी वहाँ पे स्टार्ट कर दी, और पत्थरबाजी करने के बाद पुलिस भी आगे आई, और इस वक्त ये सारी की सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने लगातार वहाँ पे स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी पत्थर, और ये हम भी तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये पत्थर पड़ा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा पत्थर दिखाया जाए यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखिए पूरी गाड़ी तोड़ी गई है। ये देखिए ये DIG की गाड़ी है जिसपे अटैक किया गया है, और जो लगातार यहाँ पे पत्थरबाजी उनके द्वारा की जा रही है। चलिए हम और भी गाड़ियाँ दिखाते हैं। ये भी गाड़ी है जिसमें और ये जो SSP की गाड़ी है उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया, और यहाँ पे पत्थर चलाए गए और पत्थर अभी भी आगे पड़ा हुआ है, और ये पिछला जो विंडो है बिल्कुल तोड़ी गई है। तो ये देखिए ये तस्वीरें यहाँ पे ये पूरा शीशा तोड़ा गया है, क्योंकि वहाँ पे लाठियाँ मारी गई, वहाँ से पत्थर मारे गए, क्योंकि पुलिस ने जब इनको बोला कि हाईवे छोड़ दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी ये लगातार पत्थरबाजी यहाँ पे की गई। Right now we are reporting from lovely professional university where we have seen the students, they were holding protest since morning, and right now the police was trying to use mild lathi charge to disperse all the protesters, but all the protesters they started stone pelting, and the police forced to go back, and a lot of police officials they got injured. We are showing all these pictures at this point of time. Now it has been seen that vehicle have also been burnt by these protesters, so we are showing all these pictures at this point of time. Multiple vehicles had been damaged because of stone pelting, and when they were taking initiatives to disperse all these protesters, they started stone pelting at the force. So I'll request my visitor to just keep on showing all these visuals, because these visuals are very important to show at this point of time. So this vehicle which has been put on fire by these protesters, so we are showing all these pictures at this point of time, that how this violence has taken place in front of a lovely professional university, where the force was forced to go back, step back, because a lot of stone pelting started the moment police have taken action against these protesters.
9: देखिए स्टूडेंट्स ने हमारे को जो ये मैटर है जब हमारे संज्ञान में लाए तो हमने कहा कि नहीं, इसको सीरियसली देखा जाना चाहिए, लेकिन हम जितना इसको देखते गए हमें यही आइडिया हुआ है कि ये सारा र्यूमर रेज है, और स्टूडेंट्स ने जब जब जैसे जैसे मांग की हमने वैसे वैसे पूरी की। वो CCTV फुटेज देखना चाहते थे कुछ दिनों की, उन्हें वो दिखाई गई स्टूडेंट कमेटी बना के। उनको बार बार आश्वासन दिया गया कि हम हर तरह का एक्शन लेने के लिए तैयार हैं।
10: मैं डॉक्टर मोनिका गुलाटी, रजिस्ट्रार लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, आपसे बात करना चाहती हूँ उस इंसिडेंट्स के बारे में जो कल से मीडिया और सोशल मीडिया पे चल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ जो GH3 के रूम नंबर 504 में रहने वाली लड़कियों ने हमें बताया।
11: सो हम लोग रूम नंबर 504 के स्टूडेंट्स हैं, और हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम यहाँ पिछले 2 महीने से रह रहे हैं। प्लीज पुलिस और स्टूडेंट्स हमें आके तंग ना करें, हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारा रूम इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है।
12: हम लोग आज बहुत ज्यादा परेशान हुए, और अगर हमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम अपने पेरेंट्स को प्लीज इन्वॉल्व करेंगे, हाँ, अब लोग हमें परेशान मत करेंगे।
11: और पुलिस भी बार बार हमारे रूम पे ना आए, नहीं तो हम अपने पेरेंट्स को बुला लेंगे।
10: इस सबसे यही निष्कर्ष निकलता है कि इस सबके पीछे असामाजिक तत्वों का और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोगों का हाथ है। ये झूठी और मनगढ़ंत अफवाहों से यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की साजिश है। धन्यवाद।
1: Gorakhpur's flooding has now triggered a BJP versus BJP clash, a heated phone call between BJP MP Ravi Kishan and party corporator Viswajit Tripathi over the city's waterlogging has gone viral. Corporator questioned the drainage situation while Kishan asked if he had joined the Samajwadi Party. Tripathi hit back asking if Kishan had joined the BSP. Ravi Kishan later inspected the waterlogged areas with civic officials, saying that the rainfall was unprecedented and the priority was restoring normalcy. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has attacked the BJP over the flooding, alleging that corruption has crippled the drainage systems.
13: वार्डों में लगभग हम बता रहे 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पे सुनिए सुनिए 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पानी लगा जहां कभी पानी नहीं लगता था। स्थिति ये है।
14: सपा ज्वाइन कर रही है क्या? सपा वाली बात कर रहे हो? सपा के नेता हो गई लगा।
13: अरे मतलब आप तो इसी बात बतिया रहे सपा ज्वाइन के लिए पानी अगर भर जाए सपा ने ज्वाइन कर लिया आप क्या ज्वाइन कर लिए सांसद जी? आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या?
14: हेलो पार्षद जी
13: जी नहीं आप बसपा ज्वाइन कर लिए हैं हम सपा ज्वाइन कर लिए हैं
14: कहा हो गई अचानक कैसे ऐसे बात कर रहा था
13: नहीं ऐसे नहीं बात आप कह रहे हैं सपा ज्वाइन कर लिए हैं तो आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या?
14: सब चालू है तरकुलानी चालू बा
13: तरकुलानी चालू पूछिए अधिकारी पानी क्यों नहीं निकल रहा है।
15: गोरखपुर के सांसद सरकार कर रहे हैं हमारे साथ सांसद जी हमारे साथ खुद सड़क पर करे भारी बारिश हुई है क्या?
16: बहुत दुखद है। देखिए ऐसा हम लोग सब वही सोच रहे थे लेकिन अब महादेव की दया से पानी काफी स्तर कम हुआ और प्रार्थना है कि जल्दी जनता को इससे निजात मिले। निकले हैं सब लोग प्रशासन भी लगा है पूज्य महाराज जी भी लगातार बात कर रहे हैं और कैंपियरगंज में भी तीन पेड़ गिरने से तीन लोगों की मौतें वो खबर हुई है तो उनके परिवार के लिए संवेदना है और महादेव से ही प्रार्थना है कि जल्दी गोरखपुर जनपद को हमने आपके माध्यम से अभी टोल नंबर भी दिया अपना और हेल्पलाइन नंबर भी है तो कृपया आप लोग उस पर भी फोन करें जब भी अचानक कोई आप लोगों को कहीं कोई दुर्घटना की खबर आती हो। हम मेयर साहब हैं नगर आयुक्त जी हम लोग सब पूरे हमारे प्रशासन पूरा जमीन पर हमारे सारे कार्यकर्ता जमीन पर हैं जितना हो सके सब लोगों को बचाने का काम लेकिन पानी काफी हद तक बारिश रुक गई पिछले दो घंटे से नहीं हो रही पानी का स्तर काफी नीचे जा रहा है। हमको लगता है अगर बरसात कल तक हवान करे नहीं होगी तो दो दिन में स्थिति सामान्य होगी।
17: माननीय सांसद जी से अनुरोध किया कि माननीय सांसद जी थोड़ा आप उच्च अधिकारियों से बात करिए कि जो भी जल निकासी के समुचित प्रबंध है वो अस्थायी तौर पर प्रभावी तौर पर किए जाएं। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस रहे हैं और जनता का आर्थिक नुकसान हो रहा है। माननीय सांसद जी मेरी बात से तिलमिला गए और वह पूछने लगे कि आप फला पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं क्या? आप बताइए किसी सांसद से कोई जनप्रतिनिधि समस्या बता रहा है और सांसद जी उसका दल पूछने लगे तो निश्चित ही माननीय सांसद जी के लिए शर्मिंदगी की बात है। राजनीति में और जनता की सेवा में आप जब जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुन लिए गए तो आप पूरी जनता के प्रतिनिधि होते हैं किसी व्यक्तिगत दल के सदस्यों के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। सांसद जी को अपने व्यवहार और अपनी भाषा शैली में संयम रखना चाहिए। यह राजनीतिक क्षेत्र है और जनता के प्रतिनिधि हैं यह आपका अभिनय का क्षेत्र नहीं है। अभिनय का क्षेत्र आपका बंबई है आप बंबई में वहां मजाक हंसी करिए वो अलग की बात है लेकिन जनता पीड़ा में है जनता का नुकसान हो रहा है घरों में।
18: तैयारी हमारी लगभग पूरी है ऐसा नहीं है कि कहीं तैयारी में कमी हो। पिछले तीन दिनों से आपने देखा होगा कि लगातार बारिश चल रही है और आज का रिकॉर्ड आपको बताऊं कि जो है आज एक घंटे के अंदर कुल 116 mm बारिश हुई। हमारा नगर निगम का पूरे अधिकारी पूरे कर्मचारी इसी तरह से गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सभी कर्मचारी अधिकारी लगे हुए हैं और जगह जगह जहाँ भी ऐसी संभावना है कि जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है वहाँ हम लोग मैं और नगर आयुक्त साहब गए सांसद जी भी हमारे साथ अभी गल्ला मंडी में थे आप VC साहब GTA के या हमारे साथ हैं तो इन सब जगहों पे हम लोग देख देख के जो है कोशिश कर रहे हैं कि जो है वहाँ किसी तरह की परेशानी को कम किया जाए।
1: Slipping into a very short break, news and updates will continue on the other side. Stay tuned, stay with us.
19: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
20: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal. What's happening?
19: The show that sets the prime time agenda.
20: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
19: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, weekdays at 5 p.m. only on NDTV, when it really matters.
21: A healthier India doesn't happen in a day.
22: It starts with the health choices that we make every day.
23: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे
24: और हर हाथ में हो बेहतर सेहत का अधिकार।
21: Because बनेगा स्वस्थ इंडिया is just not about living longer.
25: It's about living healthier, feeling alive and making every day count.
24: One informed choice और एक healthier action.
21: giving better health in more hands every day.

0: officials, and let me tell you that we are, you know, the response that had come from Parvesh Verma, he had gone on to say that he only reacted after the Aam Aadmi Party worker abused his family, and also he goes on to allege that Jarnail Singh, the Aam Aadmi Party MLA from that area, in fact, was allegedly demanding commission from the PWD engineer. So certainly now we are seeing that the war of words only escalating over the matter. Over to you.
1: All right, Ishika, getting us all those details, the drama unfolding in Tilaknagar. Let's tell you how it all started. A political row escalated in Delhi after a video appeared to show PWD Minister Parvesh Verma slapping an AAP worker during a road inspection in Tilaknagar. Aam Aadmi Party Chief Arvind Kejriwal demanded Minister's arrest and said he will visit the spot. Verma has defended his action, claiming that the video does not show the full picture. He alleges that the AAP worker abused him first while accusing AAP leader Jarnail Singh of seeking commission over the road work. Verma also alleged that Jarnail Singh's aides abused his family and claimed he reacted in the heat of the moment. The Aam Aadmi Party leader has filed a complaint, demanded disciplinary action, while AAP leaders have demanded an apology. You also saw the dharna which is happening right now outside that entire area in Tilaknagar. The row has now widened into a political confrontation, with the Aam Aadmi Party demanding action against Verma, while the minister has hit back with allegation of commission, demands and corruption.
2: दिल्ली के तिलक नगर में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने एक सड़क बनाई। सड़क की क्वालिटी इतनी गंदी थी कि हाथों से वो सड़क उखड़ रही थी। जब वहां पे लोकल लोगों ने मंत्री जी को वो सड़क दिखाई तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने वहां खड़े हुए एक लड़के को, जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था, खींच के थप्पड़ मारा। मोदी जी ने कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जो कि आम आदमी को इंसान नहीं समझते। मैं कल इस सड़क का मुआयना करने खुद जाऊंगा।
3: हमारे जो वहां के कार्यकर्ता थे, मैंने उनको नहीं बुलाया। जब वहां पे जर्नल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए, और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा, मैंने भी वही किया। मैं आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूं कि आप जो काम नहीं कर पाए, आज वो हमारी सरकार कर रही है, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है।
4: ये हम उन्हें बस आईना दिखा रहे थे कितना घोटाला हुआ है। उन्हें बता रहे थे कि ये 25 करोड़ के इस रोड का टेंडर था, इसमें आई थिंक 2 करोड़ भी नहीं लगे होंगे, जो हमने खुद दिखाया कि कारपेट की तरह रोड उखड़ रही थी। ये चीज़ उन्हें बताई कि घोटाले शायद से उन्होंने ही करा है, कि PWD विभाग उनका है। वो बात की जब उनके सामने एक ही घोटाले के हमने उनके सामने करा, कुछ ये झेल नहीं पाए, तो उसी समय उन्होंने ये चपेड़ मारी मुझे। मेरे हाथ में फ़ोन था, मेरा वो फ़ोन फेंका, और साथ के साथ जो उनके साथ साथी थे, गुंडे थे जो भाजपा के, उन्होंने लाते घूसे चलाई हैं, उन्होंने जान से मारने तक की धमकी दी है मुझे। ये और ये बोलते हैं जेंजिस के साथ हैं हम, ये साथ हैं, चपेड़े मार रहे हैं।
5: ये सड़क का टूटा हुआ टुकड़ा देखकर मंत्री जी बौखला गए, क्योंकि कैमरे हमारे भी चल रहे थे पर इस समय भाजपा के बंद हो गए थे। बौखलाहट में मेरा जो साथी कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था, मंत्री जी ने उसका फ़ोन खींचा, ज़मीन पे मारा, उसके थप्पड़ मारा गुंडों की तरह, और उसको जान से मारने की धमकी दी, लाते मारी, और चोरों की तरह यहाँ से गाड़ी में बैठ के फरार हो गए। पहली कार्रवाई तो PWD के इंजीनियर्स के ऊपर, जो मंत्री जी को करनी चाहिए थी। दूसरी कार्रवाई मंत्री जी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने सरेआम क्राइम किया है, थप्पड़ मारा, जान से मारने की धमकी दी, उस पर हमला किया, उसका फ़ोन तोड़ा, तो दूसरी कार्रवाई मंत्री जी के ऊपर। अगर इस देश का कानून आम आदमी और एक मंत्री के लिए एक समान है, तो तुरंत मंत्री परवेश वर्मा के ऊपर FIR करके उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
1: Shifting our focus, protests at the Lovely Professional University over alleged sexual assault turned violent, with students not just vandalizing campus property and clashing with the police. There were parts of the campus property and buildings that were set on fire as the unrest escalated through the night. Police personnel were deployed in large numbers. Clashes intensified. Several cops were reportedly injured amid the violence. The situation spiraled as the police resorted to lathi charge to disperse the protesters and bring the campus situation under control. Dean Saurabh Lakhanpal has blamed what he described as anti-social elements for vandalism, saying violence was not representative of the students. And the dean has also said the university strongly suspects a conspiracy behind the escalation amid the claims and counterclaims surrounding this entire incident and violence.
6: स्टूडेंट्स के द्वारा पत्थरबाजी

0: और पत्थरबाजी करने के बाद पुलिस भी आगे आई और इस वक्त ये सारी की सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने लगातार वहां पे स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी पत्थर, और ये हम भी तस्वीरें दिखा रहे हैं यहां पे कि यहां पे ये पत्थर पड़ा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन साथियों का पत्थर दिखाया जाए यहां पे, और यहां पे ये देखिए पूरी गाड़ी तोड़ी गई है। ये देखिए ये DIG की गाड़ी है जिसपे अटैक किया गया है, और जो लगातार यहाँ पे पत्थरबाजी उनके द्वारा की जा रही है। चलिए हम और भी गाड़ियाँ दिखाते हैं। ये भी गाड़ी है जिसमें और ये जो SSP की गाड़ी है उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया, और यहाँ पे पत्थर चलाए गए और पत्थर अभी भी आगे पड़ा हुआ है, और ये पिछला जो विंडो है बिल्कुल तोड़ी गई है। तो ये देखिए ये तस्वीरें यहाँ पे ये पूरा शीशा तोड़ा गया है क्योंकि वहाँ पे लाठियाँ मारी गई, वहाँ से पत्थर मारे गए, क्योंकि पुलिस ने जब इनको बोला कि हाईवे छोड़ दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी ये लगातार पत्थरबाजी यहाँ पे की गई। राइट नाउ वी आर रिपोर्टिंग फ्रॉम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वेयर वी हैव सीन द स्टूडेंट्स, दे वर होल्डिंग प्रोटेस्ट सिंस मॉर्निंग, एंड राइट नाउ द पुलिस वॉज ट्राइंग टू यूज माइल्ड लाठी चार्ज टू डिस्पर्स ऑल द प्रोटेस्टर, बट दीज ऑल द स्टूडेंट्स ऑल द प्रोटेस्टर दे स्टार्टेड स्टोन पेल्टिंग, एंड द पुलिस forced to go back, and a lot of police officials they got injured. We are showing all these pictures at this point of time. Now it has been seen that vehicle have also been burnt by these protesters, so we are showing all these pictures at this point of time. Multiple vehicles had been damaged because of stone pelting, and when they were taking initiatives to disperse all these protesters, they started stone pelting at the force. So I'll request my visitor to just keep on showing all these visuals, because these visuals are very important to show at this point of time. So this vehicle which has been put on fire by these protesters, so we are showing all these pictures at this point of time, that how this violence has taken place in front of a lovely professional university, where the force was forced to go back, step back, because a lot of stone pelting started the moment police have taken taken action against these protesters.
1: देखिए, स्टूडेंट्स ने हमारे को जो ये मैटर है जब हमारे संज्ञान में लाए, तो हमने कहा कि नहीं, इसको सीरियसली देखा जाना चाहिए। लेकिन हम जितना इसको देखते गए, हमें यही आइडिया हुआ है कि ये सारा र्यूमर रेज है, और स्टूडेंट्स ने जब जब जैसे जैसे मांग की, हमने वैसे वैसे पूरी की। वो CCTV फुटेज देखना चाहते थे कुछ दिनों की, उन्हें वो दिखाई गई स्टूडेंट कमेटी बना के। उनको बार बार आश्वासन दिया गया कि हम हर तरह का एक्शन लेने के लिए तैयार हैं।
2: मैं डॉक्टर मोनिका गुलाटी, रजिस्ट्रार लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, आपसे बात करना चाहती हूँ उस इंसिडेंस के बारे में जो कल से मीडिया और सोशल मीडिया पे चल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ जो GH3 के रूम नंबर 504 में रहने वाली लड़कियों ने हमें बताया।
3: सो हम लोग रूम नंबर 504 के स्टूडेंट्स हैं, और हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम यहाँ पिछले 2 महीने से रह रहे हैं। प्लीज पुलिस और स्टूडेंट्स हमें आके तंग ना करें, हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारा रूम इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है।
4: हम लोग आज बहुत ज्यादा परेशान हुए, और अगर हमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम अपने पेरेंट्स को प्लीज इन्वॉल्व करेंगे। हाँ, अब लोग हमें परेशान मत करेंगे,
3: और पुलिस भी बार बार हमारे रूम पे ना आए, नहीं तो हम अपने पेरेंट्स को बुला लेंगे।
2: इस सबसे यही निष्कर्ष निकलता है कि इस सबके पीछे असामाजिक तत्वों का और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोगों का हाथ है। ये झूठी और मनगढ़ंत अफवाहों से यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की साजिश है। धन्यवाद।
5: Gorakhpur's flooding has now triggered a BJP versus BJP clash. A heated phone call between BJP MP Ravi Kissan and party corporator Viswajit Tripathi over the city's waterlogging has gone viral. Corporator questioned the drainage situation, while Kishan asked if he had joined the Samajwadi Party. Tripathi hit back, asking if Kishan had joined the BSP. Ravi Kishan later inspected the waterlogged areas with civic officials, saying that the rainfall was unprecedented and the priority was restoring normalcy.

0: Rajwadi Party chief Akhilesh Yadav has attacked the BJP over the flooding, alleging that corruption has crippled the drainage systems.
1: वार्डों में लगभग हम बता रहे हैं 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पे सुनिए सुनिए 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पानी लगा जहां कभी पानी नहीं लगता था। स्थिति ये है।
2: सपा ज्वाइन कर रही
1: है
2: क्या? सपा वाली बात कर रहे हो, सपा के नेता हो गई लगा।
1: अरे मतलब आप तो इसी बात बतिया रहे, सपा ज्वाइन के लिए पानी अगर भर जाए सपा ने ज्वाइन कर लिया? आप क्या ज्वाइन कर लिए सांसद जी? आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या?
2: हेलो पार्षद जी,
1: जी आप नहीं, आप बसपा ज्वाइन कर लिए हैं? हम सपा ज्वाइन कर लिए हैं।
2: कहा हो गई अचानक, कैसे ऐसे बात कर रहा था?
1: नहीं ऐसे नहीं बात, आप कह रहे हैं सपा ज्वाइन कर लिए हैं तो आप बसपा ज्वाइन कर लिए हैं क्या?
2: सब चालू है, तरकुलानी चालू बा,
1: तरकुलानी चालू। पूछिए अधिकारी पानी क्यों नहीं निकल रहा है?
3: गोरखपुर के सांसद सरपंच कर रहे हैं, हमारे साथ सांसद जी है। सांसद जी हमारे साथ खुद सड़क पर करे हैं, भारी बारिश हुई है क्या?
4: बहुत दुखद है। देखिए ऐसा हम लोग सब वही सोच रहे थे, लेकिन अब महादेव की दया से पानी काफी स्तर कम हुआ और प्रार्थना है कि जल्दी जनता को इससे निजात मिले। निकले हैं सब लोग, प्रशासन भी लगा है, पूज्य महाराज जी भी लगातार बात कर रहे हैं और कैंपियरगंज में भी तीन पेड़ गिरने से तीन लोगों की मौतें वो खबर हुई है। उनके परिवार के लिए संवेदना है और महादेव से ही प्रार्थना है कि जल्दी गोरखपुर जनपद को, हमने आपके माध्यम से अभी टोल नंबर भी दिया अपना और हेल्पलाइन नंबर भी है, तो कृपया आप लोग उस पर भी फोन करें जब भी अचानक कोई आप लोगों को कहीं कोई दुर्घटना की खबर आती हो। हम मेयर साहब हैं, नगर आयुक्त जी, हम लोग सब पूरे, हमारे प्रशासन पूरा जमीन पर, हमारे सारे कार्यकर्ता जमीन पर हैं, जितना हो सके सब लोगों को बचाने का काम। लेकिन पानी काफी हद तक, बारिश रुक गई, पिछले दो घंटे से नहीं हो रही, पानी का स्तर काफी नीचे जा रहा है। हमको लगता है अगर बरसात कल तक भगवान करे नहीं होगी तो दो दिन में स्थिति सामान्य होगी।
1: माननीय सांसद जी से अनुरोध किया कि माननीय सांसद जी थोड़ा आप उच्च अधिकारियों से बात करिए कि जो भी जल निकासी के समुचित प्रबंध है वो अस्थायी तौर पर, प्रभावी तौर पर किए जाएं। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस रहे हैं और जनता का आर्थिक नुकसान हो रहा है। माननीय सांसद जी मेरी बात से तिलमिला गए और वह पूछने लगे कि आप फला पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं क्या? आप बताइए, किसी सांसद से कोई जनप्रतिनिधि समस्या बता रहा है और सांसद जी उसका दल पूछने लगे तो निश्चित ही माननीय सांसद जी के लिए शर्मिंदगी की बात है। राजनीति में और जनता की सेवा में आप जब जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुन लिए गए तो आप पूरी जनता के प्रतिनिधि होते हैं, किसी व्यक्तिगत दल के सदस्यों के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। सांसद जी को अपने व्यवहार और अपनी भाषा शैली में संयम रखना चाहिए। यह राजनीतिक क्षेत्र है और जनता के प्रतिनिधि हैं, यह आपका अभिनय का क्षेत्र नहीं है। अभिनय का क्षेत्र आपका बंबई है, आप बंबई में वहां मजाक हंसी करिए वो अलग की बात है, लेकिन जनता पीड़ा में है, जनता का नुकसान हो रहा है घरों में।
5: तैयारी हमारी लगभग पूरी है, ऐसा नहीं है कि कहीं तैयारी में कमी हो। पिछले तीन दिनों से आपने देखा होगा कि लगातार बारिश चल रही है और आज का रिकॉर्ड आपको बताऊं कि जो है आज एक घंटे के अंदर कुल 116 mm बारिश हुई। हमारा नगर निगम का पूरे अधिकारी, पूरे कर्मचारी, इसी तरह से गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सभी कर्मचारी अधिकारी लगे हुए हैं और जगह जगह जहां भी ऐसी संभावना है कि जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है वहां वहां हम लोग, मैं और नगर आयुक्त साहब गए, सांसद जी भी हमारे साथ अभी गल्ला मंडी में थे, आप VC साहब GTA के या हमारे साथ हैं, तो इन सब जगहों पे हम लोग देख देख के जो है कोशिश कर रहे हैं कि जो है वहां किसी तरह की परेशानी को कम किया जाए। और
0: Slipping into a very short break, news and updates will continue on the other side. Stay tuned, stay with us.
6: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
7: Hello and welcome to watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal. What's happening?
6: The show that sets the prime time agenda.
7: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
6: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5 weekdays at 5 p.m. only on NDTV, when it really matters.
8: A healthier India doesn't happen in a day.
9: It starts with the health choices that we make every day.
10: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे
11: और हर हाथ में हो बेहतर
10: सेहत का अधिकार।
8: बिकॉज बनेगा स्वस्थ इंडिया इज जस्ट नॉट अबाउट लिविंग लॉन्गर।

0: Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has attacked the BJP over the flooding, alleging that corruption has crippled the drainage systems.
1: वार्डों में लगभग हम बता रहे हैं 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पे सुनिए सुनिए 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पानी लगा जहां कभी पानी नहीं लगता था। स्थिति ये है।
2: सपा ज्वाइन कर रही है क्या? सपा वाली बात कर रहे हो? सपा के नेता हो गई लगा?
1: अरे मतलब आप तो इसी बात बतिया रहे, सपा ज्वाइन के लिए पानी अगर फट जाए सपा ने ज्वाइन कर लिया? आप क्या ज्वाइन कर लिए सांसद जी? आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या?
2: हेलो पार्षद जी,
1: जी आप नहीं आप बसपा ज्वाइन कर लिए हैं? हम सपा ज्वाइन कर लिए हैं।
2: कहा हो गई अचानक? कैसे ऐसे बात कर रहा था?
1: नहीं ऐसे नहीं बात, आप कह रहे हैं सपा ज्वाइन कर लिए हैं तो आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या?
2: सब चालू है, तरकुलानी चालू बा,
1: तरकुलानी चालू। पूछिए अधिकारी पानी क्यों नहीं निकल रहा है?
3: गोरखपुर के सांसद सागरपुर कर रहे हैं, हमारे साथ सांसद जी है। सांसद जी हमारे साथ खुद सड़क पर करे हैं, भारी बारिश हुई है क्या?
4: बहुत दुखद है। देखिए ऐसा हम लोग सब वही सोच रहे थे, लेकिन अब महादेव की दया से पानी काफी स्तर कम हुआ और प्रार्थना है कि जल्दी जनता को इससे निजात मिले। निकले हैं सब लोग, प्रशासन भी लगा है, पूज्य महाराज जी भी लगातार बात कर रहे हैं और कैंपियरगंज में भी तीन पेड़ गिरने से तीन लोगों की मौतें वो खबर हुई है। उनके परिवार के लिए संवेदना है और महादेव से ही प्रार्थना है कि जल्दी गोरखपुर जनपद को, हमने आपके माध्यम से अभी टोल नंबर भी दिया अपना और हेल्पलाइन नंबर भी है, तो कृपया आप लोग उस पर भी फोन करें जब भी अचानक कोई आप लोगों को कहीं कोई दुर्घटना की खबर आती है। हम मेयर साहब हैं, नगर आयुक्त जी, हम लोग सब पूरे हमारे प्रशासन पूरा जमीन पर, हमारे सारे कार्यकर्ता जमीन पर हैं, जितना हो सके सब लोगों को बचाने का काम। लेकिन पानी काफी हद तक, बारिश रुक गई पिछले दो घंटे से नहीं हो रही, पानी का स्तर काफी नीचे जा रहा है। हमको लगता है अगर बरसात कल तक भगवान करे नहीं होगी तो दो दिन में स्थिति सामान्य होगी।
1: माननीय सांसद जी से अनुरोध किया कि माननीय सांसद जी थोड़ा आप उच्च अधिकारियों से बात करिए कि जो भी जल निकासी के समुचित प्रबंध है वो अस्थायी तौर पर प्रभावी तौर पर किए जाएं। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस रहे हैं और जनता का आर्थिक नुकसान हो रहा है। माननीय सांसद जी मेरी बात से तिलमिला गए और वह पूछने लगे कि आप फला पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं क्या? आप बताइए, किसी सांसद से कोई जनप्रतिनिधि समस्या बता रहा है और सांसद जी उसका दल पूछने लगे तो निश्चित ही माननीय सांसद जी के लिए शर्मिंदगी की बात है। राजनीति में और जनता की सेवा में आप जब जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुन लिए गए तो आप पूरी जनता के प्रतिनिधि होते हैं, किसी व्यक्तिगत दल के सदस्यों के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। सांसद जी को अपने व्यवहार और अपनी भाषा शैली में संयम रखना चाहिए। यह राजनीतिक क्षेत्र है, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, यह आपका अभिनय का क्षेत्र नहीं है। अभिनय का क्षेत्र आपका बंबई है, आप बंबई में वहां मजाक हंसी करिए वो अलग की बात है, लेकिन जनता पीड़ा में है, जनता का नुकसान हो रहा है घरों में।
5: तैयारी हमारी लगभग पूरी है, ऐसा नहीं है कि कहीं तैयारी में कमी हो। पिछले तीन दिनों से आपने देखा होगा कि लगातार बारिश चल रही है और आज का रिकॉर्ड आपको बताऊं कि जो है आज एक घंटे के अंदर कुल 116 mm बारिश हुई। हमारा नगर निगम का पूरे अधिकारी, पूरे कर्मचारी, इसी तरह से गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सभी कर्मचारी अधिकारी लगे हुए हैं और जगह जगह जहाँ भी ऐसी संभावना है कि जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है वहाँ वहाँ हम लोग मैं और नगर आयुक्त साहब गए, सांसद जी भी हमारे साथ अभी गल्ला मंडी में थे, आप VC साहब GDA के या हमारे साथ हैं, तो इन सब जगहों पे हम लोग देख देख के जो है कोशिश कर रहे हैं कि जो है वहाँ किसी तरह की परेशानी को कम किया जाए। और
0: slipping into a very short break, news and updates will continue on the other side. Stay tuned, stay with us.

0: A political row escalated in Delhi after a video appeared to show PWD Minister Parvesh Verma slapping an AAP worker during a road inspection in Tilaknagar. Aam Aadmi Party Chief Arvind Kejriwal demanded minister's arrest and said he will visit the spot. Verma has defended his action, claiming that the video does not show the full picture. He alleges that the AAP worker abused him first while accusing AAP leader Jarnail Singh of seeking commission over the road work. Verma also alleged that Jarnail Singh's aides abused his family and claimed he reacted in the heat of the moment. The Aam Aadmi Party leader has filed a complaint, demanded disciplinary action, while AAP leaders have demanded an apology. You also saw the dharna which is happening right now outside that entire area in Tilaknagar. The row has now widened into a political confrontation, with the Aam Aadmi Party demanding action against Verma, while the minister has hit back with allegation of commission, demands and corruption.
1: दिल्ली के तिलक नगर में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने एक सड़क बनाई। सड़क की क्वालिटी इतनी गंदी थी कि हाथों से वो सड़क उखड़ रही थी। जब वहां पे लोकल लोगों ने मंत्री जी को वो सड़क दिखाई तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने वहां खड़े हुए एक लड़के को जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था खींच के थप्पड़ मारा। मोदी जी ने कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जो कि आम आदमी को इंसान नहीं समझते। मैं कल इस सड़क का मुआयना करने खुद जाऊंगा।
2: हमारे जो वहां के कार्यकर्ता थे मैंने उनको नहीं बुलाया। जब वहां पे जर्नैल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए, और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा मैंने भी वही किया। मैं आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूं कि आप जो काम नहीं कर पाए आज वो हमारी सरकार कर रही है, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है।
3: ये हम उन्हें बस आईना दिखा रहे थे कितना घोटाला हुआ है। उन्हें बता रहे थे कि ये 25 करोड़ के इस रोड का टेंडर था, इसमें आई थिंक 2 करोड़ भी नहीं लगे होंगे। जो हमने खुद दिखाया कि कारपेट की तरह रोड उखड़ रही थी, ये चीज़ उन्हें बताई कि घोटाले शायद से उन्होंने ही करा है कि PWD विभाग उनका है। वो बात की जब उनके सामने एक ही घोटाला उनके घोटाले के हमने उनके सामने करा, वो चीज़ें झेल नहीं पाए तो उसी समय उन्होंने ये चपेड़ मारी मुझे। मेरे हाथ में फ़ोन था, मेरा वो फ़ोन फेंका, और साथ के साथ जो उनके साथ साथी थे गुंडे थे जो भाजपा के, उन्होंने मुझे उन्होंने लाते घूसे चलाई हैं, उन्होंने जान से मारने तक की धमकी दी है मुझे। ये और ये बोलते जैनजीज के साथ हैं हम, ये साथ हैं, चपेड़े मार रहे हैं।
4: ये सड़क का टूटा हुआ टुकड़ा देखकर मंत्री जी बौखला गए, क्योंकि कैमरे हमारे भी चल रहे थे पर इस समय भाजपा के बंद हो गए थे। बौखलाहट में मेरा जो साथी कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था, मंत्री जी ने उसका फ़ोन खींचा, ज़मीन पे मारा, उसके थप्पड़ मारा गुंडों की तरह, और उसको जान से मारने की धमकी दी, लाते मारी, और चोरों की तरह यहाँ से गाड़ी में बैठ के फरार हो गए। पहली कार्रवाई तो PWD के इंजीनियर्स के ऊपर जो मंत्री जी को करनी चाहिए थी, दूसरी कार्रवाई मंत्री जी के ऊपर क्योंकि उन्होंने सरेआम क्राइम किया है, थप्पड़ मारा, जान से मारने की धमकी दी, उस पर हमला किया, उसका फ़ोन तोड़ा, तो दूसरी कार्रवाई मंत्री जी के ऊपर। अगर इस देश का कानून आम आदमी और एक मंत्री के लिए एक समान है तो तुरंत मंत्री परवेश वर्मा के ऊपर FIR करके उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
0: Shifting our focus, protests at the Lovely Professional University over alleged sexual assault turned violent, with students not just vandalizing campus property and clashing with the police. There were parts of the campus property and buildings that were set on fire as the unrest escalated through the night. Police personnel were deployed in large numbers. Clashes intensified. Several cops were reportedly injured amid the violence. The situation spiraled as the police resorted to lathi charge to disperse the protesters and bring the campus situation under control. Dean Saurabh Lakhanpal has blamed what he described as anti-social elements for vandalism, saying violence was not representative of the students, and the dean has also said the university strongly suspects a conspiracy behind the escalation amid the claims and counterclaims surrounding this entire incident and violence.
5: स्टूडेंट के द्वारा पत्थरबाजी की जा रही थी, हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरें कैसे ये गाड़ी तोड़ी गई, पूरे शीशे टूटे हुए हैं, यहाँ पे सारी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये पुलिस का व्हीकल है जिस पे अटैक किया गया स्टूडेंट्स द्वारा, जो पुलिस के आला अधिकारी है वो भी पहुँचे हुए हैं। ये देखिए दूसरी गाड़ी जो टूटी है, क्योंकि पुलिस ने वहाँ पे वह उनको लेके वहाँ पे एक्शन करने की कोशिश की और जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने पत्थरबाजी वहाँ पे स्टार्ट कर दी और पत्थरबाजी करने के बाद पुलिस भी आगे आई और इस वक्त ये सारी की सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने लगातार

0: गाड़ी है जिसमें और ये जो एसएसपी की गाड़ी है उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया और यहाँ पे पत्थर चलाए गए और पत्थर अभी भी आगे पड़ा हुआ है और ये पिछला जो विंडो है बिल्कुल तोड़ी गई है। तो ये देखिए ये तस्वीरें, यहाँ पे ये पूरा शीशा तोड़ा गया है क्योंकि वहाँ पे लाठियां मारी गई, वहाँ से पत्थर मारे गए क्योंकि पुलिस ने जब इनको बोला कि हाईवे छोड़ दिया जाए लेकिन उसके बाद भी ये लगातार पत्थरबाजी यहाँ पे की गई। राइट नाउ वी आर रिपोर्टिंग फ्रॉम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वेयर वी हैव सीन द स्टूडेंट्स, दे वर होल्डिंग प्रोटेस्ट सिंस मॉर्निंग एंड राइट नाउ द पुलिस वॉज ट्राइंग टू यूज माइल्ड लाठी चार्ज टू डिस्पर्स ऑल द प्रोटेस्टर बट दीज ऑल द स्टूडेंट्स ऑल द प्रोटेस्टर दे स्टार्टेड स्टोन पेल्टिंग एंड द पुलिस forced to go back and a lot of police officials they got injured. We are showing all these pictures at this point of time. Now it has been seen that the vehicle have also been burnt by these protesters, so we are showing all these pictures at this point of time. Multiple vehicles had been damaged because of stone pelting and when they were taking initiatives to disperse all these protesters, they started stone pelting at the force. So I'll request my visitor to just keep on showing all these visuals because these visuals are very important to show at this point of time. So this vehicle which has been put on fire by these protesters. So we are showing all these pictures at this point of time that how this violence has taken place in front of a lovely professional university where the force was forced to go back, step back because a lot of stone pelting started the moment police have taken taken action against these protesters.
1: क्योंकि स्टूडेंट्स ने हमारे को जो ये मैटर है जब हमारे संज्ञान में लाए तो हमने कहा कि नहीं, इसको सीरियसली देखा जाना चाहिए, लेकिन हम जितना इसको देखते गए हमें यही आइडिया हुआ है कि ये सारा र्यूमर रेज है और स्टूडेंट्स ने जब जब जैसे जैसे मांग की हमने वैसे वैसे पूरी की। वो सीसीटीवी फुटेज देखना चाहते थे कुछ दिनों की, उन्हें वो दिखाई गई स्टूडेंट कमेटी बना के, उनको बार बार आश्वासन दिया गया कि हम हर तरह का एक्शन लेने के लिए तैयार हैं।
2: मैं डॉक्टर मोनिका गुलाटी, रजिस्ट्रार लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, आपसे बात करना चाहती हूँ उस इंसिडेंस के बारे में जो कल से मीडिया और सोशल मीडिया पे चल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ जो GH3 के रूम नंबर 504 में रहने वाली लड़कियों ने हमें बताया।
3: सो हम लोग रूम नंबर 504 के स्टूडेंट्स हैं और हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम यहाँ पिछले 2 महीने से रह रहे हैं। प्लीज पुलिस और स्टूडेंट्स हमें आके तंग ना करें, हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारा रूम इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है।
4: हम लोग आज बहुत ज्यादा परेशान हुए और अगर हमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम अपने पेरेंट्स को प्लीज इन्वॉल्व करेंगे, आप अब लोग हमें परेशान मत करेंगे।
3: और पुलिस भी बार बार हमारे रूम पे ना आए, नहीं तो हम अपने पेरेंट्स को बुला लेंगे।
2: इस सबसे यही निष्कर्ष निकलता है कि इस सब के पीछे असामाजिक तत्वों का और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोगों का हाथ है। ये झूठी और मनगढ़ंत अफवाहों से यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की साजिश है। धन्यवाद।
5: Gorakhpur's flooding has now triggered a BJP versus BJP clash. A heated phone call between BJP MP Ravi Kissan and party corporator Viswajit Tripathi over the city's waterlogging has gone viral. Corporator questioned the drainage situation while Kishan asked if he had joined the Samajwadi Party. Tripathi hit back asking if Kishan had joined the BSP. Ravi Kishan later inspected the waterlogged areas with civic officials, saying that the rainfall was unprecedented and the priority was restoring normalcy. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has attacked the BJP over the flooding, alleging that corruption has crippled the drainage systems.
6: वार्डों में लगभग हम बता रहे हैं 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पे सुनिए सुनिए 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पानी लगा जहां कभी पानी नहीं लगता था। स्थिति ये है,
7: सपा ज्वाइन कर लिया, सपा वाली बात कर रहे हो, सपा के नेता हो गए लगा।
6: अरे मतलब आप तो ऐसी बात बतिया रहे, सपा ज्वाइन के लिए पानी अगर भर जाए सपा ने ज्वाइन कर लिया, आप क्या ज्वाइन कर लिए सांसद जी, आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या?
7: हेलो पार्षद जी
6: जी

0: नहीं आप बसपा ज्वाइन कर लिए हैं, आप सपा ज्वाइन कर लिए हैं,
1: हो गई अचानक कैसे ऐसे बात कर रहा था?
0: नहीं ऐसे नहीं बात, आप कह रहे हैं सपा ज्वाइन कर लिए हैं तो आप बसपा ज्वाइन कर लिए हैं क्या?
1: सब चालू है, तरकुलानी चालू बा,
0: तरकुलानी चालू, पूछिए अधिकारी पानी क्यों नहीं निकल रहा है?
2: गोरखपुर के सांसद तरकुल कर रहे हैं, हमारे साथ सांसद जी है, सांसद जी हमारे साथ खुद सड़क पर करे हैं, भारी बारिश हुई है क्या?
3: बहुत दुखद है, देखिए ऐसा हम लोग सब वही सोच रहे थे, लेकिन अब महादेव की दया से पानी काफी स्तर कम हुआ और प्रार्थना है कि जल्दी जनता को इससे निजात मिले। निकले हैं सब लोग, प्रशासन भी लगा है, पूज्य महाराज जी भी लगातार बात कर रहे हैं और कैंपियरगंज में भी तीन पेड़ गिरने से तीन लोगों की मौतें वो खबर हुई है, उनके परिवार के लिए संवेदना है और महादेव से ही प्रार्थना है कि जल्दी गोरखपुर जनपद को, हमने आपके माध्यम से अभी टोल नंबर भी दिया अपना और हेल्पलाइन नंबर भी है, तो कृपया आप लोग उस पर भी फोन करें जब भी अचानक कोई आप लोगों को कहीं कोई दुर्घटना की खबर आती है। हम मेयर साहब हैं, नगर आयुक्त जी, हम लोग सब पूरे, हमारे प्रशासन पूरा जमीन पर, हमारे सारे कार्यकर्ता जमीन पर हैं, जितना हो सके सब लोगों को बचाने का काम, लेकिन पानी काफी हद तक, बारिश रुक गई पिछले दो घंटे से नहीं हो रही, पानी का स्तर काफी नीचे जा रहा है, हमको लगता है अगर बरसात कल तक भगवान करे नहीं होगी तो दो दिन में स्थिति सामान्य होगी।
4: माननीय सांसद जी से अनुरोध किया कि माननीय सांसद जी थोड़ा आप उच्च अधिकारियों से बात करिए कि जो भी जल निकासी के समुचित प्रबंध है वो अस्थायी तौर पर प्रभावी तौर पर किए जाएं, लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस रहे हैं और जनता का आर्थिक नुकसान हो रहा है। माननीय सांसद जी मेरी बात से तिलमिला गए और वह पूछने लगे कि आप फला पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं क्या? आप बताइए, किसी सांसद से कोई जनप्रतिनिधि समस्या बता रहा है और सांसद जी उसका दल पूछने लगे तो निश्चित ही माननीय सांसद जी के लिए शर्मिंदगी की बात है। राजनीति में और जनता की सेवा में आप जब जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुन लिए गए तो आप पूरी जनता के प्रतिनिधि होते हैं, किसी व्यक्तिगत दल के सदस्यों के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। सांसद जी को अपने व्यवहार और अपनी भाषा शैली में संयम रखना चाहिए, यह राजनीतिक क्षेत्र है, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, यह आपका अभिनय का क्षेत्र नहीं है। अभिनय का क्षेत्र आपका बंबई है, आप बंबई में वहां मजाक हंसी करिए वो अलग की बात है, लेकिन जनता पीड़ा में है, जनता का नुकसान हो रहा है घरों में।
5: तैयारी हमारी लगभग पूरी है, ऐसा नहीं है कि कहीं तैयारी में कमी हो। पिछले तीन दिनों से आपने देखा होगा कि लगातार बारिश चल रही है और आज का रिकॉर्ड आपको बताऊं कि जो है आज एक घंटे के अंदर कुल 116 mm बारिश हुई। हमारा नगर निगम का पूरे अधिकारी, पूरे कर्मचारी, इसी तरह से गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सभी कर्मचारी अधिकारी लगे हुए हैं और जगह जगह जहाँ भी ऐसी संभावना है कि जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है वहाँ वहाँ हम लोग मैं और नगर आयुक्त साहब गए, सांसद जी भी हमारे साथ अभी गल्ला मंडी में थे, आप VC साहब GDA के या हमारे साथ हैं, तो इन सब जगहों पे हम लोग देख देख के जो है कोशिश कर रहे हैं कि जो है वहाँ किसी तरह की परेशानी को कम किया जाए। और
6: स्लिपिंग इनटू अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, न्यूज एंड अपडेट्स विल कंटिन्यू ऑन द अदर साइड, स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस।
7: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
8: So many attacks.
7: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
8: It's incredible.
7: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
8: Welcome to Left, Right and Center.
7: Hard facts.
8: War struck country.
7: Hard questions.
8: In the Ukraine.
7: 30 years of trust.
9: In the Kargil area.
8: North Ukraine.
10: In France. In Italy.
8: At Srinagar.
10: In Istanbul.
8: Vishnu Shom for NDTV.
7: Vishnu Shom. Only on NDTV.
11: There has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
12: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
13: The line of control, Shivaroor, NDTV.

0: This is a world between orders. Uncertain. Unwritten. As global equations shift, Prime Minister Narendra Modi will lead the conversation at the NDTV World Summit 2020.
1: Hello and welcome. You're watching NDTV. I'm Anusha Soni. A quick check of the headlines first. CDS says that the situation along the China border remains stable, with meetings between the two sides continuing. He stressed that India remains vigilant, with the armed forces focused on safeguarding territorial sovereignty and leaving no room for complacency.
2: Border situation at the moment is stable. It is our mission and also our job to ensure that our borders are safeguarded, and we have adequate measures to ensure that we are able to guard our territorial sovereignty.
1: Army Chief General Dhiraj Seth speaks first and exclusively at the NDTV Defence Summit. General Seth makes a resounding case for land battle amidst an era of tech transformation. He declares that land victory is the only indisputable marker of victory. At the NDTV Defence Summit, Navy Chief invites Skyroot CEO to meet him and get into mission mode to build space capabilities for the Navy. All from the NDTV Summit stage.
3: When you're working with the Indian Armed Forces, you're working for something much bigger than all of that.
4: Absolutely.
3: You're working for national security, so we request you to please integrate with us on a mission mode, understand our requirements, and make us world beaters in the next 20 or 25 years.
1: Defence Secretary RK Singh says GE has committed to supplying 4 Tejas engines within a month, with the target of having one full Tejas squadron operational by the end of the year. He added that only residual issues remain with the aircraft's delivery. Defence Minister Rajnath Singh draws the line on India's strategic autonomy, says India will always put national interests first. Rajnath Singh sends out a strong message for Pakistan, calls terrorism a strategic asset of India's neighbour, warns that India will strike if Pakistan pushes terrorists.
5: हम चाहते हैं कि भारत केवल टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट न करे. भारत ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि भारत टेक्नोलॉजी को डिफाइन करे, और यही वह अप्रोच है जो भारत को स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की ओर ले जा रही है.
1: And Punjab's lovely professional university students vandalized campus block highway over alleged rape case. A video from Delhi's Tilak Nagar shows PWD Minister Parvesh Verma allegedly slapping a young man who was filming him during a road inspection. Delhi Minister Parvesh Verma, in his response, said that an AAP worker had abused his family and he reacted in anger. Let's cut across to some latest news coming in. This is the Delhi slapgate row that has now triggered a war of words between Rahul Gandhi and BJP Minister Parvesh Verma. Rahul Gandhi attacked the minister over the viral video and said that the Aam Aadmi Party leader was attacked for questioning minister. Just like students allegedly lathi charged for questioning paper leaks, Parvesh Verma has hit back, directly targeting Rahul Gandhi, saying, "Rahul, let it be, you know nothing." The war of words between the two sides. Let me cut across to my colleague Ishika, who's joining us live to give us more details on the story. Ishika, as expected, a political war of words, this time between Rahul Gandhi and Parvesh Verma. Aam Aadmi Party and Congress Party at least united on one of the issues here.
6: Well, certainly seems like that. You know, a rare picture with the Aam Aadmi Party and the Congress Party coming together and in fact slamming the Delhi minister Parvesh Verma over the alleged slapgate controversy. In fact, Rahul Gandhi has gone on to post on X saying that this particular incident shows BJP's arrogance across the country. Now, on that, the Delhi Minister Parvesh Verma, in fact, has gone on to respond and said that Rahul Gandhi knows nothing and that's why he should let it be. Let me tell our viewers that, in fact, after this entire controversy happened, it was Arvind Kejriwal, the Aam Aadmi Party Supremo, who, in fact, had demanded the arrest of the Delhi minister Parvesh Verma, over which now Parvesh Verma had gone on to respond, saying that the entire
1: All right, Ishika, as you get us all those details, there's some more breaking news coming in at this point in time. Aam Aadmi Party is staging a protest in Tilaknagar. There's major drama which is being witnessed right now as far as the Tilaknagar incident is concerned, where Delhi Minister Parvesh Verma had slapped one of the boy who was filming this entire inspection slash the incident that really happened. Let's listen into the voices.
4: नहीं जाएंगे जब तक परमेश वर्मा पर एफआईआर नहीं होगी हम लोग नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे
1: Ishika, once again coming back to you, major drama unfolding it seems like in Tilaknagar. It seems like the political controversy may have just started.
6: Well, yes, Anusha, you know, the political controversy over this and the drama over this only now escalating with this the Delhi chief of the Aam Aadmi Party now currently holding a protest at Tilaknagar, exactly the spot where this entire controversy unfolded. And he's now sitting on dharna with the Aam Aadmi Party karyakartas and going on to say that until and unless an FIR is registered against the Delhi minister, they are not going to leave the spot. We are in fact seeing in the visuals how in fact there's a scuffle that's currently going on between in fact the Aam Aadmi Party karyakartas and the Delhi police officials. And let me tell you that we are, you know, the response that had come from Parvesh Verma, he had gone on to say that he only reacted after the Aam Aadmi Party worker abused his family. And also he goes on to allege that Jarnail Singh, the Aam Aadmi Party MLA from that area, in fact, was allegedly demanding commission from right. the PWD engineer. Right. So certainly now we are seeing that the war of words only escalating over the matter. Over to you.
1: All right, Ishika, getting you all those details, the drama unfolding in Tilaknagar. Let's tell you how it all started. A political row escalated in Delhi after a video appeared to show PWD Minister Parvesh Verma slapping an AAP worker during a road inspection in Tilaknagar. Aam Aadmi Party Chief Arvind Kejriwal demanded minister's arrest and said he will visit the spot. Verma has defended his action, claiming that the video does not show the full picture. He alleges that the AAP worker abused him first while accusing AAP leader Jarnail Singh of seeking commission over the road work. Verma also alleged that Jarnail Singh's aides abused his family and claimed he reacted in the heat of the moment. The Aam Aadmi Party leader has filed a complaint, demanded disciplinary action, while AAP leaders have demanded an apology. You also saw the dharna which is happening right now outside that entire area in Tilaknagar. The row has now widened into a political confrontation with the Aam Aadmi Party demanding action against Verma, while the minister has hit back with allegation of commission, demands and corruption.
7: दिल्ली के तिलक नगर में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने एक सड़क बनाई। सड़क की क्वालिटी इतनी गंदी थी कि हाथों से वो सड़क उखड़ रही थी। जब वहां पे लोकल लोगों ने मंत्री जी को वो सड़क दिखाई तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने वहां खड़े हुए एक लड़के को जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था खींच के थप्पड़ मारा। मोदी जी ने कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जो कि आम आदमी को इंसान नहीं समझते। मैं कल इस सड़क का मुआयना करने खुद जाऊंगा।
8: हमारे जो वहां के कार्यकर्ता थे मैंने उनको नहीं बुलाया। जब वहां पे जर्नैल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा मैंने भी वही किया। मैं आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूं कि आप जो काम नहीं कर पाए आज वो हमारी सरकार कर रही है, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है।
9: ये हम उन्हें बस आईना दिखा रहे थे कितना घोटाला हुआ है। उन्हें बता रहे थे कि ये 25 करोड़ के इस रोड का टेंडर था, इसमें आई थिंक 2 करोड़ भी नहीं लगे होंगे। जो हमने खुद दिखाया कि कारपेट की तरह रोड उखड़ रही थी, ये चीज़ उन्हें बताई कि घोटाले शायद से उन्होंने ही करा है कि PWD विभाग उनका है। वो बात ये जब उनके सामने है कि घोटाले उनके घोटाले के हमने उनके सामने करा, वो चीज़ ये झेल नहीं पाए तो उसी समय उन्होंने ये चपेड़ मारी मुझे, मेरे हाथ में फ़ोन था, मेरा वो फ़ोन फेंका, और साथ के साथ जो उनके साथ साथी थे, गुंडे थे जो भाजपा के, उन्होंने मुझे उन्होंने लाते घूसे चलाई हैं, उन्होंने जान से मारने तक की धमकी दी है मुझे। ये और ये बोलते हैं जैन जिस के साथ हैं हम, ये साथ हैं, चपेड़े मार रहे हैं।
10: ये सड़क का टूटा हुआ टुकड़ा देखकर मंत्री जी बौखला गए, क्योंकि कैमरे हमारे भी चल रहे थे पर इस समय भाजपा के बंद हो गए थे। बौखलाहट में मेरा जो साथी कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था, मंत्री जी ने उसका फ़ोन खींचा, ज़मीन पे मारा, उसके थप्पड़ मारा गुंडों की तरह, और उसको जान से मारने की धमकी दी, लाते मारी, और चोरों की तरह यहाँ से गाड़ी में बैठ के फरार हो गए। पहली कार्रवाई तो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स के ऊपर जो मंत्री जी को करनी चाहिए थी, दूसरी कार्रवाई मंत्री जी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने सरेआम क्राइम किया है, थप्पड़ मारा, जान से मारने की धमकी दी, उस पर हमला किया, उसका फ़ोन तोड़ा, तो दूसरी कार्रवाई मंत्री जी के ऊपर। अगर इस देश का कानून आम आदमी और एक मंत्री के लिए एक समान है तो तुरंत मंत्री परवेश वर्मा के ऊपर FIR करके उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
1: Shifting our focus, protests at the Lovely Professional University over alleged sexual assault turned violent, with students not just vandalizing campus property and clashing with the police. There were parts of the campus property and buildings that were set on fire as the unrest escalated through the night. Police personnel were deployed in large numbers. Clashes intensified. Several cops were reportedly injured amid the violence. The situation spiraled as the police resorted to lathi charge to disperse the protesters and bring the campus situation under control. Dean Saurabh Lakhanpal has blamed what he described as anti-social elements for vandalism, saying violence was not representative of the students. And the dean has also said the university strongly suspects a conspiracy behind the escalation amid the claims and counterclaims surrounding this entire incident and violence.
11: स्टूडेंट्स के द्वारा पत्थरबाजी की जा रही थी, हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरें, कैसे ये गाड़ी तोड़ी गई, पूरे शीशे टूटे हुए हैं, यहाँ पे सारी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये पुलिस का व्हीकल है जिस पे अटैक किया गया स्टूडेंट्स द्वारा, जो पुलिस के आला अधिकारी है वो भी पहुँचे हुए हैं। ये देखिए दूसरी गाड़ी जो टूटी है, क्योंकि पुलिस ने वहाँ पे उनको लेके वहाँ पे एक्शन करने की कोशिश की, और जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने पत्थरबाजी वहाँ पे स्टार्ट कर दी, और पत्थरबाजी करने के बाद पुलिस भी आगे आई, और इस वक्त ये सारी की सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने लगातार वहाँ पे स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी, पत्थर, और ये हम भी तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये पत्थर पड़ा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन साथियों का पत्थर दिखाया जाए यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखिए पूरी गाड़ी तोड़ी गई है। ये देखिए ये DIG की गाड़ी है जिसपे अटैक किया गया है, और जो लगातार यहाँ पे पत्थरबाजी उनके द्वारा की जा रही है। चलिए हम और भी गाड़ियाँ दिखाते हैं, ये भी गाड़ी है जिसमें और ये जो SSP की गाड़ी है उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया, और यहाँ पे पत्थर चलाए गए, और पत्थर अभी भी आगे पड़ा हुआ है, और ये पिछला जो विंडो है बिल्कुल तोड़ी गई है। तो ये देखिए ये तस्वीरें, यहाँ पे ये पूरा शीशा तोड़ा गया है, क्योंकि वहाँ पे लाठियाँ मारी गई, वहाँ से पत्थर मारे गए, क्योंकि पुलिस ने जब इनको बोला कि हाईवे छोड़ दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी ये लगातार पत्थरबाजी यहाँ पे की गई। Right now we are reporting from Lovely Professional University, where we have seen the students, they were holding protests since morning, and right now the police was trying to use mild lathi charge to disperse all the protesters, but all the protesters they started stone pelting, and the police forced to go back, and a lot of police officials they got injured. We are showing all these pictures at this point of time. Now it has been seen that vehicle have also been burnt by these protesters, so we are showing all these pictures at this point of time. Multiple vehicles had been damaged because of stone pelting, and when they were taking initiatives to disperse all these protesters, they started stone pelting at the force. So I'll request my visitor to just keep on showing all these visuals, because these visuals are very important to show at this point of time. So this vehicle which has been put on fire by these protesters, so we are showing all these pictures at this point of time, that how this violence has taken place in front of लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वेयर द फोर्स वॉज फोर्स टू गो बैक स्टेप बैक बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टोन पेल्टिंग स्टार्टेड द मोमेंट पुलिस हैव टेकन एक्शन अगेंस्ट दिस प्रोटेस्ट.
12: क्योंकि स्टूडेंट्स ने हमारे को जो ये मैटर है जब हमारे संज्ञान में लाए तो हमने कहा कि नहीं, इसको सीरियसली देखा जाना चाहिए. लेकिन हम जितना इसको देखते गए हमें यही आइडिया हुआ है कि ये सारा र्यूमर रेज है. और स्टूडेंट्स ने जब जब जैसे जैसे मांग की हमने वैसे वैसे पूरी की. वो सीसीटीवी फुटेज देखना चाहते थे कुछ दिनों की, उन्हें वो दिखाई गई स्टूडेंट कमेटी बना के. उनको बार बार आश्वासन दिया गया कि हम हर तरह का एक्शन लेने के लिए तैयार हैं.
13: मैं डॉक्टर मोनिका गुलाटी, रजिस्ट्रार लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, आपसे बात करना चाहती हूँ उस इंसिडेंस के बारे में जो कल से मीडिया और सोशल मीडिया पे चल रहा है. लेकिन उससे पहले मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ जो GH3 के रूम नंबर 504 में रहने वाली लड़कियों ने हमें बताया.
14: सो हम लोग रूम नंबर 504 के स्टूडेंट्स हैं और हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ. हम यहाँ पिछले 2 महीने से रह रहे हैं. प्लीज पुलिस और स्टूडेंट्स हमें आके तंग ना करें. हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमारा रूम इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है.
15: हम लोग आज बहुत ज्यादा परेशान हुए और अगर हमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम अपने पेरेंट्स को प्लीज इन्वॉल्व करेंगे. हाँ, अब लोग हमें परेशान मत करेंगे.
14: और पुलिस भी बार बार हमारे रूम पे ना आए, नहीं तो हम अपने पेरेंट्स को बुला लेंगे.
13: इस सबसे यही निष्कर्ष निकलता है कि इस सबके पीछे असामाजिक तत्वों का और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोगों का हाथ है. ये झूठी और मनगढ़ंत अफवाहों से यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की साजिश है. धन्यवाद.
1: Gorakhpur's flooding has now triggered a BJP versus BJP clash. A heated phone call between BJP MP Ravi Kissan and party corporator Viswajit Tripathi over the city's waterlogging has gone viral. Corporator questioned the drainage situation while Kissan asked if he had joined the Samajwadi Party. Tripathi hit back asking if Kissan had joined the BSP. Ravi Kissan later inspected the waterlogged areas with civic officials, saying that the rainfall was unprecedented and the priority was restoring normalcy. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has attacked the BJP over the flooding, alleging that corruption has crippled the drainage systems.
16: वार्डों में लगभग हम बता रहे हैं 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पे सुनिए 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पानी लगा जहां कभी पानी नहीं लगता था. स्थिति ये है.
17: सपा वाली बात कर रहे हो, सपा के नेता वही लगा.
16: अरे मतलब आप तो ऐसी बात बतिया रहे हैं सपा ज्वाइन के लिए. पानी अगर भर जाए सपा ने ज्वाइन कर लिया. आप क्या ज्वाइन कर लिए सांसद जी? आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या?
17: हेलो पार्षद जी.
16: जी

0: नहीं आप नहीं आप आप बसपा ज्वाइन कर लिए हैं, आप क्यों बसपा ज्वाइन कर लिए हैं?
1: कहाँ हो गई अचानक, कैसे ऐसे बात कर रहा था?
0: नहीं ऐसे नहीं बात, आप कह रहे हैं सपा ज्वाइन कर लिए हैं तो आप बसपा ज्वाइन कर लिए हैं क्या?
1: सब चालू है, तरकुलानी चालू बा,
0: तरकुलानी चालू, पूछिए अधिकारी उस पानी को नहीं निकल रहा है।
2: गोरखपुर के सांसद सरपंच कर रहे हैं, हमारे साथ सांसद जी है, सांसद जी हमारे साथ खुद सड़क पर करे हैं, भारी बारिश हुई है क्या?
3: बहुत दुखद है, देखिए ऐसा हम लोग सब वही सोच रहे थे, लेकिन अब महादेव की दया से पानी काफी स्तर कम हुआ और प्रार्थना है कि जल्दी जनता को इससे निजात मिले। निकले हैं सब लोग, प्रशासन भी लगा है, पूज्य महाराज जी भी लगातार बात कर रहे हैं और कैंपियरगंज में भी तीन पेड़ गिरने से तीन लोगों की मौतें वो खबर हुई है, तो उनके परिवार के लिए संवेदना है और महादेव से ही प्रार्थना है कि जल्दी गोरखपुर जनपद को, हमने आपके माध्यम से अभी टोल नंबर भी दिया अपना और हेल्पलाइन नंबर भी है, तो कृपया आप लोग उस पर भी फोन करें जब भी अचानक कोई आप लोगों को कहीं कोई दुर्घटना की खबर आती हो। हम मेयर साहब हैं, नगर आयुक्त जी, हम लोग सब पूरे, हमारे प्रशासन पूरा जमीन पर, हमारे सारे कार्यकर्ता जमीन पर हैं, जितना हो सके सब लोगों को बचाने का काम, लेकिन पानी काफी हद तक, बारिश रुक गई पिछले दो घंटे से नहीं हो रही, पानी का स्तर काफी नीचे जा रहा है, हमको लगता है अगर बरसात कल तक भगवान करे नहीं होगी तो दो दिन में स्थिति सामान्य होगी।
4: माननीय सांसद जी से अनुरोध किया कि माननीय सांसद जी थोड़ा आप उच्च अधिकारियों से बात करिए कि जो भी जल निकासी के समुचित प्रबंध है वो अस्थायी तौर पर, प्रभावी तौर पर किए जाएं, लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस रहे हैं और जनता का आर्थिक नुकसान हो रहा है। माननीय सांसद जी मेरी बात से तिलमिला गए और वह पूछने लगे कि आप फला पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं क्या? आप बताइए, किसी सांसद से कोई जनप्रतिनिधि समस्या बता रहा है और सांसद जी उसका दल पूछने लगे तो निश्चित ही माननीय सांसद जी के लिए शर्मिंदगी की बात है। राजनीति में और जनता की सेवा में आप जब जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुन लिए गए तो आप पूरी जनता के प्रतिनिधि होते हैं, किसी व्यक्तिगत दल के सदस्यों के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। सांसद जी को वो अपने व्यवहार और अपनी भाषा शैली में संयम रखना चाहिए, यह राजनीतिक क्षेत्र है और जनता के प्रतिनिधि हैं, यह आपका अभिनय का क्षेत्र नहीं है। अभिनय का क्षेत्र आपका बंबई है, आप बंबई में वहां मजाक हंसी करिए वो अलग की बात है, लेकिन जनता पीड़ा में है, जनता का नुकसान हो रहा है घरों में।
5: तैयारी हमारी लगभग पूरी है, ऐसा नहीं है कि कहीं तैयारी में कमी हो। पिछले तीन दिनों से आपने देखा होगा कि लगातार बारिश चल रही है और आज का रिकॉर्ड आपको बताऊं कि जो है आज एक घंटे के अंदर कुल 116 mm बारिश हुई। हमारा नगर निगम का पूरे अधिकारी, पूरे कर्मचारी, इसी तरह से गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सभी कर्मचारी अधिकारी लगे हुए हैं और जगह जगह जहाँ भी ऐसी संभावना है कि जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है वहाँ वहाँ हम लोग मैं और नगर आयुक्त साहब गए, सांसद जी भी हमारे साथ अभी गल्ला मंडी में थे, आप VC साहब GTA के या हमारे साथ हैं, तो इन सब जगहों पे हम लोग देख देख के जो है कोशिश कर रहे हैं कि जो है वहाँ किसी तरह की परेशानी को कम किया जाए। और
6: Slipping into a very short break, news and updates will continue on the other side. Stay tuned, stay with us.
7: The next chapter of the NDTV Golf Pro-Am begins here. Bigger, bolder, teeing off across India. The course of champions. The conversation of leaders. The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Tee off, 3rd October, Kotub Golf Course, Delhi.
8: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
9: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
10: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
6: Now getting you this special report, China's foreign ministry has announced an 8-point consensus following Xi Jinping's vision.

0: दिल्ली के तिलक नगर में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने एक सड़क बनाई। सड़क की क्वालिटी इतनी गंदी थी कि हाथों से वो सड़क उखड़ रही थी। जब वहां पे लोकल लोगों ने मंत्री जी को वो सड़क दिखाई तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने वहां खड़े हुए एक लड़के को जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था खींच के थप्पड़ मारा। मोदी जी ने कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जो कि आम आदमी को इंसान नहीं समझते। मैं कल इस सड़क का मुआयना करने खुद जाऊंगा।
1: हमारे जो वहां के कार्यकर्ता थे मैंने उनको नहीं बुलाया। जब वहां पे जनरल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा मैंने भी वही किया। मैं आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूं कि आप जो काम नहीं कर पाए आज वो हमारी सरकार कर रही है, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है।
2: ये हम उन्हें बस आईना दिखा रहे थे कितने का घोटाला हुआ है। उन्हें बता रहे थे कि ये 25 करोड़ का इस रोड का टेंडर था जिसमें आई थिंक 2 करोड़ भी नहीं लगे होंगे, जो हमने खुद दिखाया कि कारपेट की तरह रोड उखड़ रही थी। ये चीज़ उन्हें बताई कि घोटाले शायद से उन्होंने ही करा है कि PWD विभाग उनका है। वो बात की जब उनके सामने एक ही घोटाले उनके घोटाले के हमने उनके सामने करा कुछ ये झेल नहीं पाए तो उसी समय उन्होंने ये चपेड़ मारी मुझे। मेरे हाथ में फ़ोन था, मेरा वो फ़ोन फेंका और साथ के साथ जो उनके साथ साथी थे गुंडे थे जो भाजपा के उन्होंने लाते घूसे चलाई हैं, उन्होंने जान से मारने तक की धमकी दी है मुझे। ये और ये बोलते हैं जेंजिस के साथ हैं हम, ये साथ हैं चपेड़े मार रहे हैं।
3: ये सड़क का टूटा हुआ टुकड़ा देखकर मंत्री जी बौखला गए क्योंकि कैमरे हमारे भी चल रहे थे पर इस समय भाजपा के बंद हो गए थे। बौखलाहट में मेरा जो साथी कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था मंत्री जी ने उसका फ़ोन खींचा, ज़मीन पे मारा, उसके थप्पड़ मारा गुंडों की तरह और उसको जान से मारने की धमकी दी, लाते मारी और चोरों की तरह यहाँ से गाड़ी में बैठ के फरार हो गए। पहली कार्रवाई तो PWD के इंजीनियर्स के ऊपर जो मंत्री जी को करनी चाहिए थी, दूसरी कार्रवाई मंत्री जी के ऊपर क्योंकि उन्होंने सरेआम क्राइम किया है, थप्पड़ मारा, जान से मारने की धमकी दी, उस पर हमला किया, उसका फ़ोन तोड़ा, तो दूसरी कार्रवाई मंत्री जी के ऊपर। अगर इस देश का कानून आम आदमी और एक मंत्री के लिए एक समान है तो तुरंत मंत्री प्रवेश वर्मा के ऊपर FIR करके उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
4: Shifting our focus, protests at the lovely professional university over alleged sexual assault turned violent, with students not just vandalizing campus property and clashing with the police. There were parts of the campus property and buildings that were set on fire as the unrest escalated through the night. Police personnel were deployed in large numbers. Clashes intensified. Several cops were reportedly injured amid the violence. The situation spiraled as the police resorted to lathi charge to disperse the protesters and bring the campus situation under control. Dean Saurabh Lakhanpal has blamed what he described as anti-social elements for vandalism, saying violence was not representative of the students. And the dean has also said the university strongly suspects a conspiracy behind the escalation amid the claims and counterclaims surrounding this entire incident and violence.
5: स्टूडेंट्स के द्वारा पत्थरबाजी की जा रही थी, हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरें कैसे ये गाड़ी तोड़ी गई, पूरे शीशे टूटे हुए हैं, यहाँ पे सारी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये पुलिस का व्हीकल है जिस पे अटैक किया गया स्टूडेंट्स द्वारा, जो पुलिस के आला अधिकारी है वो भी पहुँचे हुए हैं। ये देखिए दूसरी गाड़ी जो टूटी है क्योंकि पुलिस ने वहाँ पे उनको लेके वहाँ पे एक्शन करने की कोशिश की और जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने पत्थरबाजी वहाँ पे स्टार्ट कर दी और पत्थरबाजी करने के बाद पुलिस भी आगे आई और इस वक्त ये सारी की सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने लगातार वहाँ पे स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी पत्थर, और ये हम भी तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये पत्थर पड़ा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा पत्थर दिखाया जाए यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखिए पूरी गाड़ी तोड़ी गई है। ये देखिए ये DIG की गाड़ी है जिसपे अटैक किया गया है और जो लगातार यहाँ पे पत्थरबाजी उनके द्वारा की जा रही है। चलिए हम और भी गाड़ियाँ दिखाते हैं, ये भी गाड़ी है जिसमें और ये जो SSP की गाड़ी है उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया और यहाँ पे पत्थर चलाए गए और पत्थर अभी भी आगे पड़ा हुआ है और ये पिछला जो विंडो है बिल्कुल तोड़ी गई है। तो ये देखिए ये तस्वीरें यहाँ पे ये पूरा

0: mild that he charged to disperse all the protesters, but all the students, all the protesters, they started stone pelting, and the police forced to go back, and a lot of police officials, they got injured. We are showing all these pictures at this point of time. Now it has been seen that vehicle have also been burnt by these protesters, so we are showing all these pictures at this point of time. Multiple vehicles had been damaged because of stone pelting, and when they were taking initiatives to disperse all these protesters, they started stone pelting at the force. So I'll request my visitor to just keep on showing all these visuals, because these visuals are very important to show at this point of time. So this vehicle which has been put on fire by these protesters, so we are showing all these pictures at this point of time, that how this violence has taken place in front of a lovely professional university, where the force was forced to go back, step back, because a lot of stone pelting started the moment police have taken taken action against these protesters.
1: देखिए, स्टूडेंट्स ने हमारे को जो ये मैटर है जब हमारे संज्ञान में लाए, तो हमने कहा कि नहीं, इसको सीरियसली देखा जाना चाहिए. लेकिन हम जितना इसको देखते गए, हमें यही आइडिया हुआ है कि ये सारा र्यूमर रेज है. और स्टूडेंट्स ने जब जब जैसे जैसे मांग की, हमने वैसे वैसे पूरी की. वो सीसीटीवी फुटेज देखना चाहते थे कुछ दिनों की, उन्हें वो दिखाई गई स्टूडेंट कमेटी बना के. उनको बार बार आश्वासन दिया गया कि हम हर तरह का एक्शन लेने के लिए तैयार हैं.
2: मैं डॉक्टर मोनिका गुलाटी, रजिस्ट्रार लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, आपसे बात करना चाहती हूँ उस इंसिडेंस के बारे में जो कल से मीडिया और सोशल मीडिया पे चल रहा है. लेकिन उससे पहले मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ जो GH3 के रूम नंबर 504 में रहने वाली लड़कियों ने हमें बताया.
3: सो हम लोग रूम नंबर 504 के स्टूडेंट्स हैं, और हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ है. हम यहाँ पिछले 2 महीने से रह रहे हैं. प्लीज पुलिस और स्टूडेंट्स हमें आके तंग ना करें. हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ, और हमारा रूम इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है.
4: हम लोग आज बहुत ज्यादा परेशान हुए, और अगर हमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम अपने पेरेंट्स को प्लीज इन्वॉल्व करेंगे. हम अब लोग हमें परेशान मत करेंगे.
3: और पुलिस भी बार बार हमारे रूम पे ना आए, नहीं तो हम अपने पेरेंट्स को बुला लेंगे.
2: इस सब से यही निष्कर्ष निकलता है कि इस सब के पीछे असामाजिक तत्वों का और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोगों का हाथ है. ये झूठी और मनगढ़ंत अफवाहों से यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की साजिश है. धन्यवाद.
5: Gorakhpur's flooding has now triggered a BJP versus BJP clash. A heated phone call between BJP MP Ravi Kissan and party corporator Viswajit Tripathi over the city's waterlogging has gone viral. Corporator questioned the drainage situation, while Kishan asked if he had joined the Samajwadi Party. Tripathi hit back, asking if Kishan had joined the BSP. Ravi Kishan later inspected the waterlogged areas with civic officials, saying that the rainfall was unprecedented and the priority was restoring normalcy. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has attacked the BJP over the flooding, alleging that corruption has crippled the drainage systems.
6: वार्डों में लगभग हम बता रहे हैं 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पे, सुनिए सुनिए, 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पानी लगा जहां कभी पानी नहीं लगता था. स्थिति ये है.
7: सपा ज्वाइन कर रही है क्या? सपा वाली बात कर रहे हो? सपा के नेता हो गई लगा.
6: अरे मतलब आप तो ऐसी बात बतिया रहे हैं सपा ज्वाइन के लिए. पानी अगर भर जाए सपा ज्वाइन कर लिया? आप क्या ज्वाइन कर लिए सांसद जी? आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या?
7: हेलो पार्षद जी.
6: जी आप नहीं, आप बसपा ज्वाइन कर लिए हैं? हम सपा ज्वाइन कर लिए हैं.
7: हो गई अचानक कैसे ऐसे बात कर रहा था?
6: नहीं ऐसे नहीं बात. आप कह रहे सपा ज्वाइन कर लिए हैं, तो आप बसपा ज्वाइन कर लिए हैं क्या?
7: सब चालू है. तरकुलानी चालू बा?
6: तरकुलानी चालू. पूछिए अधिकारी पानी क्यों नहीं निकल रहा है?
8: गोरखपुर के सांसद सरपंच कर रहे हैं. हमारे साथ सांसद जी है. सांसद जी हमारे साथ खुद सड़क पर कर रहे हैं. भारी बारिश हुई है क्या?
9: बहुत दुखद. देखिए ऐसा हम लोग सब वही सोच रहे थे, लेकिन अब महादेव की दया से पानी काफी स्तर कम हुआ, और प्रार्थना है कि जल्दी जनता को इससे निजात मिले. निकले हैं सब लोग, प्रशासन भी लगा है, पूज्य महाराज जी भी लगातार बात कर रहे हैं.

0: रेखा गुप्ता सरकार ने एक सड़क बनाई। सड़क की क्वालिटी इतनी गंदी थी कि हाथों से वो सड़क उखड़ रही थी। जब वहां पे लोकल लोगों ने मंत्री जी को वो सड़क दिखाई तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने वहां खड़े हुए एक लड़के को जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था खींच के थप्पड़ मारा। मोदी जी ने कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जो कि आम आदमी को इंसान नहीं समझते। मैं कल इस सड़क का मुआयना करने खुद जाऊंगा।
1: हमारे जो वहां के कार्यकर्ता थे मैंने उनको नहीं बुलाया। जब वहां पे जनरल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा मैंने भी वही किया। मैं आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूं कि आप जो काम नहीं कर पाए आज वो हमारी सरकार कर रही है, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है।
2: ये हम उन्हें बस आईना दिखा रहे थे कितना घोटाला हुआ है। उन्हें बता रहे थे कि ये 25 करोड़ के इस रोड का टेंडर था, इसमें आई थिंक 2 करोड़ भी नहीं लगे होंगे, जो हमने खुद दिखाया कि कारपेट की तरह रोड उखड़ रही थी। ये चीज उन्हें बताई कि घोटाले शायद से उन्होंने ही करा है कि PWD विभाग उनका है। वो बात की जब उनके सामने एक ही घोटाले उनके घोटाले के वो हमने उनके सामने करा कुछ ये झेल नहीं पाए तो उसी समय उन्होंने ये चपेड़ मारी मुझे। मेरे हाथ में फ़ोन था, मेरा वो फ़ोन फेंका और साथ के साथ जो उनके साथ साथी थे गुंडे थे जो भाजपा के उन्होंने मुझे उन्होंने लाते घूसे चलाई हैं, उन्होंने जान से मारने तक की धमकी दी है मुझे। ये और ये बोलते हैं जैनजीज के साथ हैं हम, ये साथ हैं चपेड़े मार रहे हैं।
3: ये सड़क का टूटा हुआ टुकड़ा देखकर मंत्री जी बौखला गए क्योंकि कैमरे हमारे भी चल रहे थे पर इस समय भाजपा के बंद हो गए थे। बौखलाहट में मेरा जो साथी कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था मंत्री जी ने उसका फ़ोन खींचा, ज़मीन पे मारा, उसके थप्पड़ मारा गुंडों की तरह और उसको जान से मारने की धमकी दी, लाते मारी और चोरों की तरह यहाँ से गाड़ी में बैठ के फरार हो गए। पहली कार्रवाई तो PWD के इंजीनियर्स के ऊपर जो मंत्री जी को करनी चाहिए थी, दूसरी कार्रवाई मंत्री जी के ऊपर क्योंकि उन्होंने सरेआम क्राइम किया है, थप्पड़ मारा, जान से मारने की धमकी दी, उस पर हमला किया, उसका फ़ोन तोड़ा, तो दूसरी कार्रवाई मंत्री जी के ऊपर। अगर इस देश का कानून आम आदमी और एक मंत्री के लिए एक समान है तो तुरंत मंत्री परवेश वर्मा के ऊपर FIR करके उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
4: Shifting our focus, protests at the lovely professional university over alleged sexual assault turned violent, with students not just vandalizing campus property and clashing with the police. There were parts of the campus property and buildings that were set on fire as the unrest escalated through the night. Police personnel were deployed in large numbers. Clashes intensified. Several cops were reportedly injured amid the violence. The situation spiraled as the police resorted to lathi charge to disperse the protesters and bring the campus situation under control. Dean Saurabh Lakhanpal has blamed what he described as anti-social elements for vandalism, saying violence was not representative of the students. And the dean has also said the university strongly suspects a conspiracy behind the escalation amid the claims and counterclaims surrounding this entire incident and violence.
5: स्टूडेंट्स के द्वारा पत्थरबाजी की जा रही थी, हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरें कैसे ये गाड़ी तोड़ी गई, पूरे शीशे टूटे हुए हैं, यहाँ पे सारी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये पुलिस का व्हीकल है जिस पे अटैक किया गया स्टूडेंट्स द्वारा, जो पुलिस के आला अधिकारी है वो भी पहुँचे हुए हैं। ये देखिए दूसरी गाड़ी जो टूटी है क्योंकि पुलिस ने वहाँ पे उनको लेके वहाँ पे एक्शन करने की कोशिश की और जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने पत्थरबाजी वहाँ पे स्टार्ट कर दी और पत्थरबाजी करने के बाद पुलिस भी आगे आई और इस वक्त ये सारी की सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने लगातार वहाँ पे स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी पत्थर, और ये हम भी तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये पत्थर पड़ा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन साथियों का पत्थर दिखाया जाए यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखिए पूरी गाड़ी तोड़ी गई है। ये देखिए ये DIG की गाड़ी है जिसपे अटैक किया गया है और जो लगातार यहाँ पे पत्थरबाजी उनके द्वारा की जा रही है। चलिए हम और भी गाड़ियाँ दिखाते हैं। ये भी गाड़ी है जिसमें और ये जो SSP की गाड़ी है उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया और यहाँ पे पत्थर चलाए गए और पत्थर अभी भी आगे पड़ा हुआ है और ये पिछला जो विंडो है बिल्कुल तोड़ी गई है। तो ये देखिए ये तस्वीरें यहाँ पे ये पूरा पूरा शीशा तोड़ा गया क्योंकि वहाँ पे लाठियाँ मारी गई, वहाँ से पत्थर मारे गए, क्योंकि पुलिस ने जब इनको बोला कि हाईवे छोड़ दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी ये लगातार पत्थरबाजी यहाँ पे की गई। Right now we are reporting from lovely professional university where we have seen the students, they were holding protests since morning, and right now the police was trying to use mild lathi charge to disperse all the protesters, but all the protesters they started stone pelting, and the police forced to go back, and a lot of police officials they got injured. We are showing all these pictures at this point of time. Now it has been seen that vehicle have also been burnt by these protesters, so we are showing all these pictures at this point of time. Multiple vehicles had been damaged because of stone pelting, and when they were taking initiatives to disperse all these protesters, they started stone pelting at the force. So I'll request my visitor to just keep on showing all these visuals, because these visuals are very important to show at this point of time. So this vehicle which has been put on fire by these protesters, so we are showing all these pictures at this point of time, that how this violence has taken place in front of a lovely professional university, where the force was forced to go back, step back, because a lot of stone pelting started the moment police have taken action against these protesters.
6: देखिए, स्टूडेंट्स ने हमारे को जो ये मैटर है जब हमारे संज्ञान में लाए, तो हमने कहा कि नहीं, इसको सीरियसली देखा जाना चाहिए। लेकिन हम जितना इसको देखते गए, हमें यही आइडिया हुआ है कि ये सारा र्यूमर रेज है। और स्टूडेंट्स ने जब जब जैसे जैसे मांग की, हमने वैसे वैसे पूरी की। वो सीसीटीवी फुटेज देखना चाहते थे कुछ दिनों की, उन्हें वो दिखाई गई स्टूडेंट कमेटी बना के। उनको बार बार आश्वासन दिया गया कि हम हर तरह का एक्शन लेने के लिए तैयार हैं।
7: मैं डॉक्टर मोनिका गुलाटी, रजिस्ट्रार लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, आपसे बात करना चाहती हूँ उस इंसिडेंस के बारे में जो कल से मीडिया और सोशल मीडिया पे चल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ जो GH3 के रूम नंबर 504 में रहने वाली लड़कियों ने हमें बताया।
8: सो हम लोग रूम नंबर 504 के स्टूडेंट्स हैं, और हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम यहाँ पिछले 2 महीने से रह रहे हैं। प्लीज पुलिस और स्टूडेंट्स हमें आके तंग ना करें, हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारा रूम इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है।
9: हम लोग आज बहुत ज्यादा परेशान हुए, और अगर हमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम अपने पेरेंट्स को प्लीज इन्वॉल्व करेंगे। आप अब लोग हमें परेशान मत करेंगे,
8: और पुलिस भी बार बार हमारे रूम पे ना आए, नहीं तो हम अपने पेरेंट्स को बुला लेंगे।
7: इस सबसे यही निष्कर्ष निकलता है कि इस सबके पीछे असामाजिक तत्वों का और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोगों का हाथ है। ये झूठी और मनगढ़ंत अफवाहों से यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की साजिश है। धन्यवाद।
4: Gorakhpur's flooding has now triggered a BJP versus BJP clash. A heated phone call between BJP MP Ravi Kissan and party corporator Viswajit Tripathi over the city's waterlogging has gone viral. Corporator questioned the drainage situation, while Kishan asked if he had joined the Samajwadi Party. Tripathi hit back, asking if Kishan had joined the BSP. Ravi Kishan later inspected the waterlogged areas with civic officials, saying that the rainfall was unprecedented and the priority was restoring normalcy. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has attacked the BJP over the flooding, alleging that corruption has crippled the drainage systems.
10: वार्डो में लगभग हम बता रहे हैं 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पे, सुनिए 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पानी लगा जहाँ कभी पानी नहीं लगता था। स्थिति ये है,
11: सपा ज्वाइन कर रही है, सपा वाली बात कर रहे हो, सपा के नेता हो गई लगा।
10: अरे मतलब आप तो ऐसी बात बतिया रहे, सपा ज्वाइन के लिए पानी अगर भर जाए सपा ने ज्वाइन कर लिया, आप क्या ज्वाइन कर लिए सांसद जी, आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या?
11: हेलो पार्षद जी,
10: जी नहीं आप बसपा ज्वाइन कर लिए हैं, हम क्यों सपा ज्वाइन कर लिए हैं?
11: हो गई अचानक कैसे ऐसे बात कर रहा था?
10: नहीं ऐसे नहीं बात, आप कह रहे हैं सपा ज्वाइन कर लिए हैं, तो आप बसपा ज्वाइन कर लिए हैं क्या?
11: सब चालू है, तरकुलानी चालू बा,
10: तरकुलानी चालू, पूछिए अधिकारी पानी क्यों नहीं निकल रहा है।
12: गोरखपुर के सांसद सड़क पर उतरे हैं, हमारे साथ सांसद भी है, सांसद जी हमारे साथ सांसद खुद सड़क पर उतरे हैं, भारी बारिश हुई है क्या?
13: बहुत दुखद है, देखिए ऐसा हम लोग सब वही सोच रहे थे, लेकिन अब महादेव की दया से पानी काफी

0: कम हुआ, और प्रार्थना है कि जल्दी जनता को इससे निजात मिले। निकले हैं सब लोग, प्रशासन भी लगा है, पूज्य महाराज जी भी लगातार बात कर रहे हैं, और कैंपियरगंज में भी तीन पेड़ गिरने से तीन लोगों की मौतें वो खबर हुई है, उनके परिवार के लिए संवेदना है। और महादेव से ये प्रार्थना है कि जल्दी गोरखपुर जनपद को, हमने आपके माध्यम से अभी टोल नंबर भी दिया अपना और हेल्पलाइन नंबर भी है, तो कृपया आप लोग उस पर भी फोन करें जब भी अचानक कोई आप लोगों को कहीं कोई दुर्घटना की खबर आती हो। हम मेयर साहब हैं, नगर आयुक्त जी, हम लोग सब पूरे, हमारे प्रशासन पूरा जमीन पर, हमारे सारे कार्यकर्ता जमीन पर हैं, जितना हो सके सब लोगों को बचाने का काम। लेकिन पानी काफी हद तक, बारिश रुक गई, पिछले दो घंटे से नहीं हो रही, पानी का स्तर काफी नीचे जा रहा है। हमको लगता है अगर बरसात कल तक भगवान करे नहीं होगी तो दो दिन में स्थिति सामान्य होगी।
1: माननीय सांसद जी से अनुरोध किया कि माननीय सांसद जी थोड़ा आप उच्च अधिकारियों से बात करिए कि जो भी जल निकासी के समुचित प्रबंध है वो अस्थायी तौर पर, प्रभावी तौर पर किए जाएं। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस रहे हैं और जनता का आर्थिक नुकसान हो रहा है। माननीय सांसद जी मेरी बात से तिलमिला गए और वह पूछने लगे कि आप फला पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं क्या? आप बताइए, किसी सांसद से कोई जनप्रतिनिधि समस्या बता रहा है और सांसद जी उसका दल पूछने लगे तो निश्चित ही माननीय सांसद जी के लिए शर्मिंदगी की बात है। राजनीति में और जनता की सेवा में आप जब जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुन लिए गए तो आप पूरी जनता के प्रतिनिधि होते हैं, किसी व्यक्तिगत दल के सदस्यों के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। सांसद जी को अपने व्यवहार और अपनी भाषा शैली में संयम रखना चाहिए। यह राजनीतिक क्षेत्र है और जनता के प्रतिनिधि हैं, यह आपका अभिनय का क्षेत्र नहीं है। अभिनय का क्षेत्र आपका बंबई है, आप बंबई में वहां मजाक हंसी करिए वो अलग की बात है, लेकिन जनता पीड़ा में है, जनता का नुकसान हो रहा है घरों में।
2: तैयारी हमारी लगभग पूरी है, ऐसा नहीं है कि कहीं तैयारी में कमी हो। पिछले तीन दिनों से आपने देखा होगा कि लगातार बारिश चल रही है और आज का रिकॉर्ड आपको बताऊं कि जो है आज एक घंटे के अंदर कुल 116 mm बारिश हुई। हमारा नगर निगम का पूरे अधिकारी, पूरे कर्मचारी, इसी तरह से गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सभी कर्मचारी अधिकारी लगे हुए हैं और जगह जगह जहाँ भी ऐसी संभावना है कि जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है वहाँ वहाँ हम लोग मैं और नगर आयुक्त साहब गए, सांसद जी भी हमारे साथ अभी गल्ला मंडी में थे, आप VC साहब GTA के या हमारे साथ हैं, तो इन सब जगहों पे हम लोग देख देख के जो है कोशिश कर रहे हैं कि जो है वहाँ किसी तरह की परेशानी को कम किया जाए। और
3: स्लिपिंग इनटू अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, न्यूज एंड अपडेट्स विल कंटिन्यू ऑन द अदर साइड, स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस।
4: The next chapter of the NDTV Golf Pro-Am begins here. Bigger, bolder, teeing off across India. The course of champions. The conversation of leaders. The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Tee off 3rd October, Kotub Golf Course, Delhi.
5: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
6: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
7: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app. Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
3: Now getting you this special report, China's foreign ministry has announced an 8-point consensus following Xi Jinping's visit to Washington. This includes a $30 billion tariff reduction deal, a new trade council, and a fresh dialogue on artificial intelligence. Take a look at this report.

0: Hello and welcome. You're watching NDTV. I'm Anusha Soni. A quick check of the headlines first. CDS says that the situation along the China border remains stable with meetings between the two sides continuing. He stressed that India remains vigilant with the armed forces focused on safeguarding territorial sovereignty and leaving no room for complacency.
1: Border situation at the moment is stable. It is our mission and also our job to ensure that our borders are safeguarded, and we have adequate measures to ensure that we are able to guard our territorial sovereignty.
0: Army Chief General Dheeraj Seth speaks first and exclusively at the NDTV Defence Summit. General Seth makes a resounding case for land battle amidst an era of tech transformation. He declares that land victory is the only indisputable marker of victory. At the NDTV Defence Summit, Navy Chief invites Skyroot CEO to meet him and get into mission mode to build space capabilities for the Navy. All from the NDTV Summit stage.
2: When you're working with the Indian Armed Forces, you're working for something much bigger than all of that.
3: Absolutely.
2: You're working for national security, so we request you to please integrate with us on a mission mode, understand our requirements, and make us world beaters in the next 20 or 25 years.
0: Defence Secretary R.K. Singh says GE has committed to supplying 4 Tejas engines a month, within a month, with the target of having one full Tejas squadron operational by the end of the year. He added that only residual issues remain with the aircraft's delivery. Defence Minister Rajnath Singh draws the line on India's strategic autonomy, says India will always put national interests first. Rajnath Singh sends out a strong message for Pakistan, calls terrorism a strategic asset of India's neighbour, warns that India will strike if Pakistan pushes terrorists.
4: हम चाहते हैं कि भारत केवल टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट न करे. भारत ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि भारत टेक्नोलॉजी को डिफाइन करे, और यही वह अप्रोच है जो भारत को स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की ओर ले जा रही है.
0: And Punjab's lovely professional university students vandalized campus block highway over alleged rape case. A video from Delhi's Tilak Nagar shows PWD Minister Parvesh Verma allegedly slapping a young man who was filming him during a road inspection. Delhi Minister Parvesh Verma, in his response, said that an AAP worker had abused his family and he reacted in anger. Let's cut across to some latest news coming in. This is the Delhi slapgate row that has now triggered a war of words between Rahul Gandhi and BJP Minister Parvesh Verma. Rahul Gandhi attacked the minister over the viral video and said that the Aam Aadmi Party leader was attacked for questioning minister. Just like students allegedly lathi charged for questioning paper leaks, Parvesh Verma has hit back, directly targeting Rahul Gandhi, saying, "Rahul, let it be, you know nothing." The war of words between the two sides. Let me cut across to my colleague Ishika, who's joining us live to give us more details on the story. Ishika, as expected, a political war of words, this time between Rahul Gandhi and Parvesh Verma. Aam Aadmi Party and Congress Party at least united on one of the issues here.
5: Well, certainly seems like that. You know, a rare picture with the Aam Aadmi Party and the Congress Party coming together and in fact slamming the Delhi minister Parvesh Verma over the alleged slapgate controversy. In fact, Rahul Gandhi has gone on to post on X saying that this particular incident shows BJP's arrogance across the country. Now, on that, the Delhi Minister Parvesh Verma, in fact, has gone on to respond and said that Rahul Gandhi knows nothing and that's why he should let it be. Let me tell our viewers that, in fact, after this entire controversy happened, it was Arvind Kejriwal, the Aam Aadmi Party supremo, who, in fact, had demanded the arrest of the Delhi minister, Parvesh Verma, over which now Parvesh Verma had gone on to respond, saying that the entire
0: matter... All right, Ishika, as you get us all those details, there's some more breaking news coming in at this point in time. Aam Aadmi Party is staging a protest in Tilak Nagar. There's major drama which is being witnessed right now as far as the Tilak Nagar incident is concerned, where Delhi minister Parvesh Verma had slapped one of the boy who was filming this entire inspection slash the incident that really happened. Let's listen into the voices.
3: जब तक परमेश वर्मा पर एफआईआर नहीं होगी हम लोग नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे.
0: Ishika, once again, coming back to you, major drama unfolding, it seems like, in Tilaknagar. It seems like the political controversy may have just started.
5: Well, yes, Anusha, you know, the political controversy over this and the drama over this only now escalating with this, the Delhi chief of the Aam Aadmi Party now currently holding a protest at Tilaknagar, exactly the spot where this entire controversy unfolded. And he's now sitting on dharna with the Aam Aadmi Party karyakartas and going on to say that until and unless an FII is registered against the Delhi minister, they are not going to leave the spot. We are in fact seeing in the visuals how in fact there's a scuffle that's currently going on between in fact the Aam Aadmi Party karyakartas and the Delhi police officials. And let me tell you that we are, you know, the response that had come from Parvesh Verma, he had gone on to say that he only reacted after the Aam Aadmi Party worker abused his family. And also he goes on to allege that Jarnail Singh, the Aam Aadmi Party MLA from that area, in fact, was allegedly demanding commission from the PWD engineer.
0: Right.
5: So certainly now we are seeing that the war of words only escalating over the matter. Over to you.
0: All right, Ishika, getting you all those details, the drama unfolding in Tilaknagar. Let's tell you how it all started. A political row escalated in Delhi after a video appeared to show PWD Minister Parvesh Verma slapping an AAP worker during a road inspection in Tilaknagar. Aam Aadmi Party Chief Arvind Kejriwal demanded minister's arrest and said he will visit the spot. Verma has defended his action, claiming that the video does not show the full picture. He alleges that the AAP worker abused him first while accusing AAP leader Jarnail Singh of seeking commission over the road work. Verma also alleged that Jarnail Singh's aides abused his family and claimed he reacted in the heat of the moment. The Aam Aadmi Party leader has filed a complaint, demanded disciplinary action, while AAP leaders have demanded an apology. You also saw the dharna which is happening right now outside that entire area in Tilaknagar. The row has now widened into a political confrontation with the Aam Aadmi Party demanding action against Verma, while the minister has hit back with allegation of commission, demands and corruption.
6: दिल्ली के तिलक नगर में बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार ने एक सड़क बनाई. सड़क की क्वालिटी इतनी गंदी थी कि हाथों से वो सड़क उखड़ रही थी. जब वहां पे लोकल लोगों ने मंत्री जी को वो सड़क दिखाई तो मंत्री जी अपना आपा खो बैठे और उन्होंने वहां खड़े हुए एक लड़के को जो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था खींच के थप्पड़ मारा. मोदी जी ने कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जो कि आम आदमी को इंसान नहीं समझते. मैं कल इस सड़क का मुआयना करने खुद जाऊंगा.
7: हमारे जो वहां के कार्यकर्ता थे मैंने उनको नहीं बुलाया. जब वहां पे जर्नैल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी. उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा मैंने भी वही किया. मैं आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूं कि आप जो काम नहीं कर पाए आज वो हमारी सरकार कर रही है, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है.
8: ये हम उन्हें बस आईना दिखा रहे थे कितना घोटाला हुआ है. उन्हें बता रहे थे कि ये 25 करोड़ के इस रोड का टेंडर था, इसमें आई थिंक 2 करोड़ भी नहीं लगे होंगे. जो हमने खुद दिखाया कि कारपेट की तरह रोड उखड़ रही थी, ये चीज़ उन्हें बताई कि घोटाले शायद से उन्होंने ही करा है कि PWD विभाग उनका है. वो बात की जब उनके सामने है कि उनके घोटाले के हमने उनके सामने करा, वो चीज़ ये झेल नहीं पाए तो उसी समय उन्होंने ये चपेड़ मारी मुझे. मेरे हाथ में फ़ोन था, मेरा वो फ़ोन फेंका और साथ के साथ जो उनके साथ साथी थे गुंडे थे जो भाजपा के, उन्होंने लाते घूसे चलाई हैं, उन्होंने जान से मारने तक की धमकी दी है मुझे. ये और ये बोलते हैं जेंजिस के साथ हैं हम, ये साथ हैं, चपेड़े मार रहे हैं.
9: ये सड़क का टूटा हुआ टुकड़ा देखकर मंत्री जी बौखला गए क्योंकि कैमरे हमारे भी चल रहे थे पर इस समय भाजपा के बंद हो गए थे. बौखलाहट में मेरा जो साथी कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था मंत्री जी ने उसका फ़ोन खींचा, जमीन पे मारा, उसके थप्पड़ मारा गुंडों की तरह, और उसको जान से मारने की धमकी दी, लातें मारी और चोरों की तरह यहाँ से गाड़ी में बैठ के फरार हो गए। पहली कार्रवाई तो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स के ऊपर जो मंत्री जी को करनी चाहिए थी, दूसरी कार्रवाई मंत्री जी के ऊपर क्योंकि उन्होंने सरेआम क्राइम किया है, थप्पड़ मारा, जान से मारने की धमकी दी, उस पर हमला किया, उसका फ़ोन तोड़ा, तो दूसरी कार्रवाई मंत्री जी के ऊपर। अगर इस देश का कानून आम आदमी और एक मंत्री के लिए एक समान है तो तुरंत मंत्री परवेश वर्मा के ऊपर एफआईआर करके उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
0: Shifting our focus, protests at the Lovely Professional University over alleged sexual assault turned violent, with students not just vandalizing campus property and clashing with the police. There were parts of the campus property and buildings that were set on fire as the unrest escalated through the night. Police personnel were deployed in large numbers. Clashes intensified. Several cops were reportedly injured amid the violence. The situation spiraled as the police resorted to lathi charge to disperse the protesters and bring the campus situation under control. Dean Saurabh Lakhanpal has blamed what he described as anti-social elements for vandalism, saying violence was not representative of the students, and the dean has also said the university strongly suspects a conspiracy behind the escalation amid the claims and counterclaims surrounding this entire incident and violence.
10: स्टूडेंट के द्वारा पत्थरबाजी की जा रही थी, हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरें कैसे ये गाड़ी तोड़ी गई, पूरे शीशे टूटे हुए हैं, यहाँ पे सारी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये पुलिस का व्हीकल है जिस पे अटैक किया गया स्टूडेंट्स द्वारा, जो पुलिस के आला अधिकारी है वो भी पहुँचे हुए हैं। ये देखिए दूसरी गाड़ी जो टूटी है, क्योंकि पुलिस ने वहाँ पे उनको लेके वहाँ पे एक्शन करने की कोशिश की और जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने पत्थरबाजी वहाँ पे स्टार्ट कर दी, और पत्थरबाजी करने के बाद पुलिस भी आगे आई, और इस वक्त ये सारी की सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने लगातार वहाँ पे स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी पत्थर, और ये हम भी तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये पत्थर पड़ा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन साथियों का पत्थर दिखाया जाए यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखिए पूरी गाड़ी तोड़ी गई है। ये देखिए ये DIG की गाड़ी है जिसपे अटैक किया गया है, और जो लगातार यहाँ पे पत्थरबाजी उनके द्वारा की जा रही है। चलिए हम और भी गाड़ियाँ दिखाते हैं, ये भी गाड़ी है जिसमें और ये जो SSP की गाड़ी है उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया, और यहाँ पे पत्थर चलाए गए और पत्थर अभी भी आगे पड़ा हुआ है, और ये पिछला जो विंडो है बिल्कुल तोड़ी गई है। तो ये देखिए ये तस्वीरें यहाँ पे ये पूरा शीशा तोड़ा गया है, क्योंकि वहाँ पे लाठियाँ मारी गई, वहाँ से पत्थर मारे गए, क्योंकि पुलिस ने जब इनको बोला कि हाईवे छोड़ दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी ये लगातार पत्थरबाजी यहाँ पे की गई। Right now we are reporting from Lovely Professional University, where we have seen the students, they were holding protests since morning, and right now the police was

0: had been damaged because of stone pelting, and when they were taking initiatives to disperse all these protesters, they started stone pelting at the force. So I'll request my visitor to just keep on showing all these visuals, because these visuals are very important to show at this point of time. So this vehicle which has been put on fire by these protesters. So we are showing all these pictures at this point of time, that how this violence has taken place in front of a lovely professional university, where the force was forced to go back, step back, because a lot of stone pelting started the moment police have taken taken action against these protesters.
1: देखिए, स्टूडेंट्स ने हमारे को जो ये मैटर है जब हमारे संज्ञान में लाए, तो हमने कहा कि नहीं, इसको सीरियसली देखा जाना चाहिए. लेकिन हम जितना इसको देखते गए, हमें यही आइडिया हुआ है कि ये सारा र्यूमर रेज है. और स्टूडेंट्स ने जब जब जैसे जैसे मांग की, हमने वैसे वैसे पूरी की. वो सीसीटीवी फुटेज देखना चाहते थे कुछ दिनों की, उन्हें वो दिखाई गई स्टूडेंट कमेटी बना के. उनको बार बार आश्वासन दिया गया कि हम हर तरह का एक्शन लेने के लिए तैयार हैं.
2: मैं डॉक्टर मोनिका गुलाटी, रजिस्ट्रार, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, आपसे बात करना चाहती हूँ उस इंसिडेंस के बारे में जो कल से मीडिया और सोशल मीडिया पे चल रहा है. लेकिन उससे पहले मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ जो GH3 के रूम नंबर 504 में रहने वाली लड़कियों ने हमें बताया.
3: सो हम लोग रूम नंबर 504 के स्टूडेंट्स हैं, और हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ है. हम यहाँ पिछले 2 महीने से रह रहे हैं. प्लीज पुलिस और स्टूडेंट्स हमें आके तंग ना करें. हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारा रूम इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है.
4: हम लोग आज बहुत ज्यादा परेशान हुए, और अगर हमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम अपने पेरेंट्स को प्लीज इन्वॉल्व करेंगे. आप अब लोग हमें परेशान मत करेंगे.
3: और पुलिस भी बार बार हमारे रूम पे ना आए, नहीं तो हम अपने पेरेंट्स को बुला लेंगे.
2: इस सब से यही निष्कर्ष निकलता है कि इस सब के पीछे असामाजिक तत्वों का और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोगों का हाथ है. ये झूठी और मनगढ़ंत अफवाहों से यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की साजिश है. धन्यवाद.
5: Gorakhpur's flooding has now triggered a BJP versus BJP clash. A heated phone call between BJP MP Ravi Kissan and party corporator Viswajit Tripathi over the city's waterlogging has gone viral. Corporator questioned the drainage situation, while Kishan asked if he had joined the Samajwadi Party. Tripathi hit back, asking if Kishan had joined the BSP. Ravi Kishan later inspected the waterlogged areas with civic officials, saying that the rainfall was unprecedented and the priority was restoring normalcy. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has attacked the BJP over the flooding, alleging that corruption has crippled the drainage systems.
6: वार्डों में लगभग हम बता रहे हैं 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पे, सुनिए 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पानी लगा जहाँ कभी पानी नहीं लगता था. स्थिति ये है.
7: सपा ज्वाइन कर रही है, सपा वाली बात कर रहे हो, सपा के नेता हो गई लगा.
6: अरे मतलब आप तो ऐसी बात बतिया रहे हैं, सपा ज्वाइन के लिए पानी अगर फट जाए सपा ने ज्वाइन कर लिया. आप क्या ज्वाइन कर लिए सांसद जी? आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या?
7: हेलो पार्षद जी.
6: जी नहीं, आप बसपा ज्वाइन कर लिए हैं? हम क्यों सपा ज्वाइन कर लिए हैं?
7: हो गई अचानक कैसे ऐसे बात कर रहा था?
6: नहीं ऐसे नहीं बात, आप कह रहे सपा ज्वाइन कर लिए हैं तो आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या?
7: सब चालू है, तरकुलानी चालू बा.
6: तरकुलानी चालू, पूछिए अधिकारी पानी क्यों नहीं निकल रहा है?
8: गोरखपुर के सांसद सरपंच कर रहे हैं, हमारे साथ सांसद जी है. सांसद जी हमारे साथ खुद सड़क पर कर रहे हैं. भारी बारिश हुई है क्या?
9: बहुत दुखद है. देखिए ऐसा हम लोग सब वही सोच रहे थे, लेकिन अब महादेव की दया से पानी काफी स्तर कम हुआ, और प्रार्थना है कि जल्दी जनता को इससे निजात मिले. निकले हैं सब लोग, प्रशासन भी लगा है, पूज्य महाराज जी भी लगातार बात कर रहे हैं, और कैंपियरगंज में भी 3 पेड़ गिरने से 3 लोगों की मौतें वो खबर हुई है. उनके परिवार के लिए संवेदना है, और महादेव से ही प्रार्थना है कि जल्दी गोरखपुर जनपद को, हमने आपके माध्यम से अभी टोल नंबर भी दिया अपना और हेल्पलाइन नंबर भी है, तो कृपया आप लोग उस पर भी फोन करें. जब भी अचानक कोई आप लोगों को कहीं कोई दुर्घटना की खबर आती है, हम मेयर साहब हैं, नगर आयुक्त जी, हम लोग सब पूरे, हमारे प्रशासन पूरा जमीन पे, हमारे

0: सारे कार्यकर्ता जमीन पर हैं, जितना हो सके सब लोगों को बचाने का काम। लेकिन पानी काफी हद तक, बारिश रुक गई पिछले 2 घंटे से नहीं हो रही, पानी का स्तर काफी नीचे जा रहा है। हमको लगता है अगर बरसात कल तक भगवान करे नहीं होगी तो 2 दिन में स्थिति सामान्य होगी।
1: माननीय सांसद जी से अनुरोध किया कि माननीय सांसद जी थोड़ा आप उच्च अधिकारियों से बात करिए कि जो भी जल निकासी के समुचित प्रबंध है वो अस्थायी तौर पर प्रभावी तौर पर किए जाएं। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस रहे हैं और जनता का आर्थिक नुकसान हो रहा है। माननीय सांसद जी मेरी बात से तिलमिला गए और वह पूछने लगे कि आप फला पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं क्या? आप बताइए, किसी सांसद से कोई जनप्रतिनिधि समस्या बता रहा है और सांसद जी उसका दल पूछने लगे तो निश्चित ही माननीय सांसद जी के लिए शर्मिंदगी की बात है। राजनीति में और जनता की सेवा में आप जब जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुन लिए गए तो आप पूरी जनता के प्रतिनिधि होते हैं, किसी व्यक्तिगत दल के सदस्यों के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। सांसद जी को अपने व्यवहार और अपनी भाषा शैली में संयम रखना चाहिए। यह राजनीतिक क्षेत्र है और जनता के प्रतिनिधि हैं, यह आपका अभिनय का क्षेत्र नहीं है। अभिनय का क्षेत्र आपका बंबई है, आप बंबई में वहां मजाक हंसी करिए वो अलग की बात है, लेकिन जनता पीड़ा में है, जनता का नुकसान हो रहा है घरों में।
2: तैयारी हमारी लगभग पूरी है, ऐसा नहीं है कि कहीं तैयारी में कमी हो। पिछले 3 दिनों से आपने देखा होगा कि लगातार बारिश चल रही है और आज का रिकॉर्ड आपको बताऊं कि जो है आज 1 घंटे के अंदर कुल 116 mm बारिश हुई। हमारा नगर निगम का पूरे अधिकारी, पूरे कर्मचारी, इसी तरह से गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सभी कर्मचारी अधिकारी लगे हुए हैं और जगह जगह जहाँ भी ऐसी संभावना है कि जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है वहाँ वहाँ हम लोग मैं और नगर आयुक्त साहब गए, सांसद जी भी हमारे साथ अभी गल्ला मंडी में थे, आप VC साहब GTA के या हमारे साथ हैं, तो इन सब जगहों पे हम लोग देख देख के जो है कोशिश कर रहे हैं कि जो है वहाँ किसी तरह की परेशानी को कम किया जाए। और
3: स्लिपिंग इनटू अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, न्यूज एंड अपडेट्स विल कंटिन्यू ऑन द अदर साइड, स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस।
4: Launch control, 0 to 100.
5: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
6: This car makes no sense, yet it makes every sense.
7: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
8: Your friend said, ye le le. We said, maybe not.
9: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
10: By noon, the world has changed. The headlines tell you what happened. Breaking Ground tells you why. We break down the story. We demand answers.
11: There is a deathly silence around this makeshift mass burial ground here in Bharatpur district in Nepal.
12: I want you to reach out to the Maharashtra Chief Minister today through our channel and tell them what you've been through as a father.
13: Marne se bada kya hoga?
12: As a journalist, I can say you're not alone.
10: So you can focus on what really matters. Watch Breaking Ground with me, Vedika Sood. Weekdays 12 to 2 p.m. only on NDTV, when it really matters.
14: When others are warming up, I'm raring to go. The stories.
3: Now, getting you this special report, China's foreign ministry has announced an 8-point consensus following Xi Jinping's visit to Washington. This includes a $30 billion tariff reduction deal, a new trade council, and a fresh dialogue on artificial intelligence. Take a look at this report.

0: कर पाए आज वो हमारी सरकार कर रही है, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है।
1: ये हम उन्हें बस आईना दिखा रहे थे कितना का घोटाला हुआ है। उन्हें बता रहे थे कि ये 25 करोड़ के इस रोड का टेंडर था, इसमें आई थिंक 2 करोड़ भी नहीं लगे होंगे, जो हमने खुद दिखाया कि कारपेट की तरह रोड उखड़ रही थी। ये चीज़ उन्हें बताई कि घोटाले शायद से उन्होंने ही करा है, कि PWD विभाग उनका है। वो बात की जब उनके सामने एक ही घोटाले उनके घोटाले के हमने उनके सामने करा कुछ ये झेल नहीं पाए, तो उसी समय उन्होंने ये चपेड़ मारी मुझे। मेरे हाथ में फ़ोन था, मेरा वो फ़ोन फेंका और साथ के साथ जो उनके साथ साथी थे गुंडे थे जो भाजपा के, उन्होंने मुझे उन्होंने लाते घूसे चलाई हैं, उन्होंने जान से मारने तक की धमकी दी है मुझे। ये और ये बोलते हैं जैनजीज के साथ हैं हम, ये साथ हैं, चपेड़े मार रहे हैं।
2: ये सड़क का टूटा हुआ टुकड़ा देखकर मंत्री जी बौखला गए, क्योंकि कैमरे हमारे भी चल रहे थे पर इस समय भाजपा के बंद हो गए थे। बौखलाहट में मेरा जो साथी कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था, मंत्री जी ने उसका फ़ोन खींचा, ज़मीन पे मारा, उसके थप्पड़ मारा गुंडों की तरह और उसको जान से मारने की धमकी दी, लाते मारी और चोरों की तरह यहाँ से गाड़ी में बैठ के फरार हो गए। पहली कार्रवाई तो PWD के इंजीनियर्स के ऊपर जो मंत्री जी को करनी चाहिए थी, दूसरी कार्रवाई मंत्री जी के ऊपर क्योंकि उन्होंने सरेआम क्राइम किया है, थप्पड़ मारा, जान से मारने की धमकी दी, उस पर हमला किया, उसका फ़ोन तोड़ा, तो दूसरी कार्रवाई मंत्री जी के ऊपर। अगर इस देश का कानून आम आदमी और एक मंत्री के लिए एक समान है तो तुरंत मंत्री प्रवेश वर्मा के ऊपर FIR करके उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
3: Shifting our focus, protests at the Lovely Professional University over alleged sexual assault turned violent, with students not just vandalizing campus property and clashing with the police. There were parts of the campus property and buildings that were set on fire as the unrest escalated through the night. Police personnel were deployed in large numbers. Clashes intensified. Several cops were reportedly injured amid the violence. The situation spiraled as the police resorted to lathi charge to disperse the protesters and bring the campus situation under control. Dean Saurabh Lakhanpal has blamed what he described as anti-social elements for vandalism, saying violence was not representative of the students. And the dean has also said the university strongly suspects a conspiracy behind the escalation amid the claims and counterclaims surrounding this entire incident and violence.
4: स्टूडेंट्स के द्वारा पत्थरबाजी की जा रही थी, हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरें कैसे ये गाड़ी तोड़ी गई, पूरे शीशे टूटे हुए हैं, यहाँ पे सारी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये पुलिस का व्हीकल है जिसपे अटैक किया गया स्टूडेंट्स द्वारा, जो पुलिस के आला अधिकारी है वो भी पहुँचे हुए हैं। ये देखिए दूसरी गाड़ी जो टूटी है, क्योंकि पुलिस ने वहाँ पे उनको लेके वहाँ पे एक्शन करने की कोशिश की और जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने पत्थरबाजी वहाँ पे स्टार्ट कर दी और पत्थरबाजी करने के बाद पुलिस भी आगे आई और इस वक्त ये सारी की सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने लगातार वहाँ पे स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी पत्थर, और ये हम भी तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये पत्थर पड़ा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन साथियों का पत्थर दिखाया जाए यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखिए पूरी गाड़ी तोड़ी गई है। ये देखिए ये DIG की गाड़ी है जिसपे अटैक किया गया है और जो लगातार यहाँ पे पत्थरबाजी उनके द्वारा की जा रही है। चलिए हम और भी गाड़ियाँ दिखाते हैं, ये भी गाड़ी है जिसमें और ये जो SSP की गाड़ी है उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया और यहाँ पे पत्थर चलाए गए और पत्थर अभी भी आगे पड़ा हुआ है और ये पिछला जो विंडो है बिल्कुल तोड़ी गई है। तो ये देखिए ये तस्वीरें यहाँ पे ये पूरा शीशा तोड़ा गया है क्योंकि वहाँ पे लाठियाँ मारी गई, वहाँ से पत्थर मारे गए क्योंकि पुलिस ने जब इनको बोला कि हाईवे छोड़ दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी ये लगातार पत्थरबाजी यहाँ पे की गई। Right now we are reporting from Lovely Professional University where we have seen the students, they were holding protests since morning and right now the police was trying to use mild lathi charge to disperse all the protesters, but all the protesters they started stone pelting and the police forced to go back and a lot of police officials they got injured. We are showing all these pictures at this point of time. Now it has been seen that the vehicle have also been burnt by these protesters, so we are showing all these pictures at this point of time. मल्टीपल व्हीकल्स हैड बीन डैमेज बिकॉज ऑफ स्टोन पेल्टिंग एंड व्हेन दे वर टेकिंग इनिशिएटिव्स टू डिस्पर्स ऑल दीज प्रोटेस्टर्स दे स्टार्टेड स्टोन पेल्टिंग एट द फोर्स सो आई विल रिक्वेस्ट माय विजय टू जस्ट कीप ऑन शोइंग ऑल दीज विजुअल्स.

0: Because these visuals are very important to show at this point of time. So this vehicle, which has been put on fire by these protesters. So we are showing all these pictures at this point of time that how this violence has taken place in front of. A lovely professional university where the force was forced to go back, step back, because a lot of stone pelting started the moment police have taken taken action against these protesters.
1: देखिए, स्टूडेंट्स ने हमारे को जो ये मैटर है जब हमारे संज्ञान में लाए तो हमने कहा कि नहीं, इसको सीरियसली देखा जाना चाहिए. लेकिन हम जितना इसको देखते गए, हमें यही आइडिया हुआ है कि ये सारा र्यूमर रेज है. और स्टूडेंट्स ने जब जब जैसे जैसे मांग की, हमने वैसे वैसे पूरी की. वो सीसीटीवी फुटेज देखना चाहते थे कुछ दिनों की, उन्हें वो दिखाई गई स्टूडेंट कमेटी बना के. उनको बार बार आश्वासन दिया गया कि हम हर तरह का एक्शन लेने के लिए तैयार हैं.
2: मैं डॉक्टर मोनिका गुलाटी, रजिस्ट्रार लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, आपसे बात करना चाहती हूँ उस इंसिडेंस के बारे में जो कल से मीडिया और सोशल मीडिया पे चल रहा है. लेकिन उससे पहले मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ जो GH3 के रूम नंबर 504 में रहने वाली लड़कियों ने हमें बताया.
3: सो हम लोग रूम नंबर 504 के स्टूडेंट्स हैं और हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ है. हम यहाँ पिछले 2 महीने से रह रहे हैं. प्लीज पुलिस और स्टूडेंट्स हमें आके तंग ना करें. हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमारा रूम इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है.
4: हम लोग आज बहुत ज्यादा परेशान हुए और अगर हमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम अपने पेरेंट्स को प्लीज इन्वॉल्व करेंगे. हाँ, अब लोग हमें परेशान मत करेंगे.
3: और पुलिस भी बार बार हमारे रूम पे ना आए, नहीं तो हम अपने पेरेंट्स को बुला लेंगे.
2: इस सब से यही निष्कर्ष निकलता है कि इस सब के पीछे असामाजिक तत्वों का और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोगों का हाथ है. ये झूठी और मनगढ़ंत अफवाहों से यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की साजिश है. धन्यवाद.
5: Gorakhpur's flooding has now triggered a BJP versus BJP clash. A heated phone call between BJP MP Ravi Kissan and party corporator Viswajit Tripathi over the city's waterlogging has gone viral. Corporator questioned the drainage situation while Kissan asked if he had joined the Samajwadi Party. Tripathi hit back asking if Kissan had joined the BSP. Ravi Kissan later inspected the waterlogged areas with civic officials, saying that the rainfall was unprecedented and the priority was restoring normalcy. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has attacked the BJP over the flooding, alleging that corruption has crippled the drainage systems.
6: वार्डो में लगभग हम बता रहे 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पे, सुनिए सुनिए, 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पानी लगा जहां कभी पानी नहीं लगता था. स्थिति ये है.
7: सपा ज्वाइन कर रही है? सपा वाली बात कर रहे हो? सपा के नेता हो गया?
6: अरे मतलब आप तो इसी बात बतिया रहे, सपा ज्वाइन के लिए पानी अगर भर जाए सपा ज्वाइन कर लिया? आप क्या ज्वाइन कर लिए सांसद जी? आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या?
7: हेलो पार्षद जी,
6: जी आप नहीं, आप बसपा ज्वाइन कर लिए हैं? हम सपा ज्वाइन कर लिए हैं.
7: कहा हो गई अचानक? कैसे ऐसे बात कर रहा था?
6: नहीं ऐसे नहीं बात. आप कह रहे हैं सपा ज्वाइन कर लिए हैं तो आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या?
7: सब चालू है, तरकुलानी चालू बा.
6: तरकुलानी चालू, पूछिए अधिकारी पानी क्यों नहीं निकल रहा है.
8: गोरखपुर के सांसद सड़कों कर रहे हैं. हमारे साथ सांसद जी है. सांसद जी हमारे साथ खुद सड़क पर करे हैं. भारी बारिश हुई है क्या?
9: बहुत दुखद है. देखिए ऐसा हम लोग सब वही सोच रहे थे, लेकिन अब महादेव की दया से पानी काफी स्तर कम हुआ और प्रार्थना है कि जल्दी जनता को इससे निजात मिले. निकले हैं सब लोग, प्रशासन भी लगा है, पूज्य महाराज जी भी लगातार बात कर रहे हैं. और कैंपियरगंज में भी 3 पेड़ गिरने से 3 लोगों की मौतें वो खबर हुई है. उनके परिवार के लिए संवेदना है और महादेव से ही प्रार्थना है कि जल्दी गोरखपुर जनपद को, हमने आपके माध्यम से अभी टोल नंबर भी दिया अपना और हेल्पलाइन नंबर भी है, तो कृपया आप लोग उस पर भी फोन करें. जब भी अचानक कोई आप लोगों को कहीं कोई दुर्घटना की खबर आती है, हम मेयर साहब हैं, नगर आयुक्त जी, हम लोग सब पूरे, हमारे प्रशासन पूरा जमीन पर, हमारे सारे कार्यकर्ता जमीन पर हैं, जितना हो सके सब लोगों को बचाने का काम. लेकिन पानी काफी हद तक, बारिश रुक गई, पिछले 2 घंटे से नहीं हो रही, पानी का स्तर काफी नीचे जा रहा है. हमको लगता है अगर बरसात कल तक भगवान करे नहीं होगी तो 2 दिन में स्थिति सामान्य होगी.
10: माननीय सांसद जी से अनुरोध किया
6: कि माननीय सांसद जी थोड़ा आप उच्च अधिकारियों से बात करिए कि जो भी जल निकासी के समुचित प्रबंध है वो अस्थायी तौर पर प्रभावी तौर पर किए जाए। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस रहे हैं और जनता का आर्थिक नुकसान हो रहा है। माननीय सांसद जी मेरी बात से तिलमिला गए और वह पूछने लगे कि आप फला पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं क्या। आप बताइए, किसी सांसद से कोई जनप्रतिनिधि समस्या बता रहा है और सांसद जी उसका दल पूछने लगे तो निश्चित ही माननीय सांसद जी के लिए शर्मिंदगी की बात है। राजनीति में और जनता की सेवा में आप जब जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुन लिए गए तो आप पूरी जनता के प्रतिनिधि होते हैं, किसी व्यक्तिगत दल के सदस्यों के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। सांसद जी को अपने व्यवहार और अपनी भाषा शैली में संयम रखना चाहिए। यह राजनीतिक क्षेत्र है और जनता के प्रतिनिधि हैं, यह आपका अभिनय का क्षेत्र नहीं है। अभिनय का क्षेत्र आपका बंबई है, आप बंबई में वहां मजाक हंसी करिए वो अलग की बात है, लेकिन जनता पीड़ा में है, जनता का नुकसान हो रहा है घरों में।
10: तैयारी हमारी लगभग पूरी है, ऐसा नहीं है कि कहीं तैयारी में कमी हो। पिछले 3 दिनों से आपने देखा होगा कि लगातार बारिश चल रही है और आज का रिकॉर्ड आपको बताऊं कि जो है आज 1 घंटे के अंदर कुल 116 mm बारिश हुई। हमारा नगर निगम का पूरे अधिकारी पूरे कर्मचारी, इसी तरह से गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सभी कर्मचारी अधिकारी लगे हुए हैं और जगह जगह जहां भी ऐसी संभावना है कि जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है वहां वहां हम लोग मैं और नगर आयुक्त साहब गए, सांसद जी भी हमारे साथ अभी गल्ला मंडी में थे, आप VC साहब GTA के या हमारे साथ हैं, तो इन सब जगहों पे हम लोग देख देख के जो है कोशिश कर रहे हैं कि जो है वहाँ किसी तरह की परेशानी को कम किया जाए। और
5: स्लिपिंग इनटू अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, न्यूज एंड अपडेट्स विल कंटिन्यू ऑन द अदर साइड, स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस।
11: व्हेन अदर्स आर वार्मिंग अप आई एम रेयरिंग टू गो, द स्टोरीज दैट मैटर, the stories that shape your life.
12: Hello and welcome to watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal. What's happening? How?
11: The show that sets the prime time agenda.
12: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
11: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5 weekdays at 5 p.m. only on NDTV, when it really matters.
5: A healthier India doesn't happen in a day.
13: It starts with the health choices that we make every day.
14: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे और हर हाथ में हो बेहतर सेहत का अधिकार.
15: Because बनेगा स्वस्थ इंडिया is just not about living longer.
16: It's about living healthier, feeling alive and making every day count.
17: One informed choice और एक healthier action.
15: Giving better health in more hands every day.

0: these are pictures at this point of time that how this violence has taken place in front of a lovely professional university where the force was forced to go back, step back, because a lot of stone pelting started the moment police have taken taken action against these protesters.
1: देखिए, स्टूडेंट्स ने हमारे को जो ये मैटर है जब हमारे संज्ञान में लाए तो हमने कहा कि नहीं, इसको सीरियसली देखा जाना चाहिए. लेकिन हम जितना इसको देखते गए हमें यही आइडिया हुआ है कि ये सारा र्यूमर रेज है. और स्टूडेंट्स ने जब जब जैसे जैसे मांग की हमने वैसे वैसे पूरी की. वो सीसीटीवी फुटेज देखना चाहते थे कुछ दिनों की, उन्हें वो दिखाई गई स्टूडेंट कमेटी बना के. उनको बार बार आश्वासन दिया गया कि हम हर तरह का एक्शन लेने के लिए तैयार हैं.
2: मैं डॉक्टर मोनिका गुलाटी, रजिस्ट्रार लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, आपसे बात करना चाहती हूँ उस इंसिडेंस के बारे में जो कल से मीडिया और सोशल मीडिया पे चल रहा है. लेकिन उससे पहले मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ जो GH3 के रूम नंबर 504 में रहने वाली लड़कियों ने हमें बताया.
3: सो हम लोग रूम नंबर 504 के स्टूडेंट्स हैं और हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ है. हम यहाँ पिछले 2 महीने से रह रहे हैं. प्लीज पुलिस और स्टूडेंट्स हमें आके तंग ना करें. हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमारा रूम इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है.
4: हम लोग आज बहुत ज्यादा परेशान हुए और अगर हमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम अपने पेरेंट्स को प्लीज इन्वॉल्व करेंगे. आप अब लोग हमें परेशान मत करेंगे.
3: और पुलिस भी बार बार हमारे रूम पे ना आए, नहीं तो हम अपने पेरेंट्स को बुला लेंगे.
2: इस सब से यही निष्कर्ष निकलता है कि इस सब के पीछे असामाजिक तत्वों का और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोगों का हाथ है. ये झूठी और मनगढ़ंत अफवाहों से यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की साजिश है. धन्यवाद.
5: Gorakhpur's flooding has now triggered a BJP versus BJP clash. A heated phone call between BJP MP Ravi Kissan and party corporator Viswajit Tripathi over the city's waterlogging has gone viral. Corporator questioned the drainage situation while Kissan asked if he had joined the Samajwadi Party. Tripathi hit back asking if Kishan had joined the BSP. Ravi Kishan later inspected the waterlogged areas with civic officials, saying that the rainfall was unprecedented and the priority was restoring normalcy. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has attacked the BJP over the flooding, alleging that corruption has crippled the drainage systems.
6: वार्डों में लगभग हम बता रहे हैं 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पे, सुनिए 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पानी लगा जहां कभी पानी नहीं लगता था. स्थिति ये है.
7: सपा ज्वाइन कर ली क्या? सपा वाली बात कर रहे हो? सपा के नेता हो गई लगा.
6: अरे मतलब आप तो ऐसी बात बतिया रहे सपा ज्वाइन के लिए. मैं पानी अगर फट जाए सपा ने ज्वाइन कर लिया? आप क्या ज्वाइन कर लिए सांसद जी? आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या?
7: हेलो पार्षद जी.
6: जी आप नहीं, आप बसपा ज्वाइन कर लिए हैं? हम सपा ज्वाइन कर लिए हैं.
7: हो गई अचानक कैसे ऐसे बात कर रहा था?
6: नहीं ऐसे नहीं बात. आप कह रहे हैं सपा ज्वाइन कर लिए हैं तो आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या?
7: सब चालू है. तरकुलानी चालू बा?
6: तरकुलानी चालू. पूछिए अधिकारी पानी क्यों नहीं निकल रहा है?
8: गोरखपुर के सांसद सरपंच कर रहे हैं. हमारे साथ सांसद जी है. सांसद जी हमारे साथ खुद सड़क पर करे हैं. भारी बारिश हुई है क्या?
9: बहुत दुखद है. देखिए ऐसा हम लोग सब वही सोच रहे थे लेकिन अब महादेव की दया से पानी काफी स्तर कम हुआ और प्रार्थना है कि जल्दी जनता को इससे निजात मिले. निकले हैं सब लोग. प्रशासन भी लगा है. पूज्य महाराज जी भी लगातार बात कर रहे हैं और कैंपियरगंज में भी 3 पेड़ गिरने से 3 लोगों की मौतें वो खबर हुई है. उनके परिवार के लिए संवेदना है और महादेव से ये प्रार्थना है कि जल्दी गोरखपुर जनपद को, हमने आपके माध्यम से अभी टोल नंबर भी दिया अपना और हेल्पलाइन नंबर भी है, तो कृपया आप लोग उस पर भी फोन करें जब भी अचानक कोई आप लोगों को कहीं कोई दुर्घटना की खबर आती हो. हम मेयर साहब हैं, नगर आयुक्त जी, हम लोग सब पूरे हमारे प्रशासन पूरा जमीन पर, हमारे सारे कार्यकर्ता जमीन पर हैं, जितना हो सके सब लोगों को बचाने का काम. लेकिन पानी काफी हद तक, बारिश रुक गई, पिछले 2 घंटे से नहीं हो रही, पानी का स्तर काफी नीचे जा रहा है. हमको लगता है अगर बरसात कल तक भगवान करे नहीं होगी तो 2 दिन में स्थिति सामान्य होगी.
6: माननीय सांसद जी से अनुरोध किया कि माननीय सांसद जी थोड़ा आप उच्च अधिकारियों से बात करिए कि जो भी जल निकासी के समुचित प्रबंध है वो अस्थायी तौर पर प्रभावी तौर पर किए जाएं. लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस रहे हैं और जनता का आर्थिक नुकसान हो रहा है. माननीय सांसद जी मेरी बात से तिलमिला गए और वह पूछने लगे कि आप फला पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं क्या? आप बताइए.

0: किसी सांसद से कोई जनप्रतिनिधि समस्या बता रहा है और सांसद जी उसका दल पूछने लगे, तो निश्चित ही माननीय सांसद जी के लिए शर्मिंदगी की बात है। राजनीति में और जनता की सेवा में आप जब जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुन लिए गए तो आप पूरी जनता के प्रतिनिधि होते हैं, किसी व्यक्तिगत दल के सदस्यों के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। सांसद जी को वो अपने व्यवहार और अपनी भाषा शैली में संयम रखना चाहिए। यह राजनीतिक क्षेत्र है और जनता के प्रतिनिधि हैं, यह आपका अभिनय का क्षेत्र नहीं है। अभिनय का क्षेत्र आपका बंबई है, आप बंबई में वहां मजाक हंसी करिए वो अलग की बात है, लेकिन जनता पीड़ा में है, जनता का नुकसान हो रहा है घरों में।
1: तैयारी हमारी लगभग पूरी है, ऐसा नहीं है कि कहीं तैयारी में कमी हो। पिछले 3 दिनों से आपने देखा होगा कि लगातार बारिश चल रही है और आज का रिकॉर्ड आपको बताऊं कि जो है आज 1 घंटे के अंदर कुल 116 mm बारिश हुई। हमारा नगर निगम का पूरे अधिकारी, पूरे कर्मचारी, इसी तरह से गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सभी कर्मचारी अधिकारी लगे हुए हैं और जगह जगह जहां भी ऐसी संभावना है कि जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है वहाँ वहाँ हम लोग मैं और नगर आयुक्त साहब गए, सांसद जी भी हमारे साथ अभी गल्ला मंडी में थे, आप VC साहब GTA के या हमारे साथ हैं, तो इन सब जगहों पे हम लोग देख देख के जो है कोशिश कर रहे हैं कि जो है वहाँ किसी तरह की परेशानी को कम किया जाए। और
2: स्लिपिंग इनटू अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, न्यूज एंड अपडेट्स विल कंटिन्यू ऑन द अदर साइड, स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस।
3: Five hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
4: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
5: Higher Ed, check the audio. Yeah,
3: let's do it. Let's start.
6: Breaking story, we're jumping straight into it.
3: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
7: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
3: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
8: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
7: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
3: The line of control, Shiv Arur, NDTV.
9: Voices that redraw boundaries.

0: ये चपेड़ मारी मुझे, मेरे हाथ में फ़ोन था मेरा, वो फ़ोन फेंका और साथ के साथ जो उनके साथ साथी थे, गुंडे थे जो भाजपा के, उन्होंने लाते घुसे चलाई हैं, उन्होंने जान से मारने तक की धमकी दी है मुझे। ये और ये बोलते हैं जेंजिस के साथ हैं हम, ये साथ हैं, चपेड़े मार रहे हैं।
1: ये सड़क का टूटा हुआ टुकड़ा देखकर मंत्री जी बौखला गए, क्योंकि कैमरे हमारे भी चल रहे थे पर इस समय भाजपा के बंद हो गए थे। बौखलाहट में मेरा जो साथी कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा था, मंत्री जी ने उसका फ़ोन खींचा, ज़मीन पे मारा, उसके थप्पड़ मारा गुंडों की तरह, और उसको जान से मारने की धमकी दी, लाते मारी और चोरों की तरह यहाँ से गाड़ी में बैठ के फरार हो गए। पहली कार्रवाई तो PWD के इंजीनियर्स के ऊपर जो मंत्री जी को करनी चाहिए थी, दूसरी कार्रवाई मंत्री जी के ऊपर क्योंकि उन्होंने सरेआम क्राइम किया है, थप्पड़ मारा, जान से मारने की धमकी दी, उस पर हमला किया, उसका फ़ोन तोड़ा, तो दूसरी कार्रवाई मंत्री जी के ऊपर। अगर इस देश का कानून आम आदमी और एक मंत्री के लिए एक समान है तो तुरंत मंत्री प्रवेश वर्मा के ऊपर FIR करके उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
2: Shifting our focus, protests at the Lovely Professional University over alleged sexual assault turned violent, with students not just vandalizing campus property and clashing with the police. There were parts of the campus property and buildings that were set on fire as the unrest escalated through the night. Police personnel were deployed in large numbers. Clashes intensified. Several cops were reportedly injured amid the violence. The situation spiraled as the police resorted to lathi charge to disperse the protesters and bring the campus situation under control. Dean Saurabh Lakhanpal has blamed what he described as anti-social elements for vandalism, saying violence was not representative of the students. And the dean has also said the university strongly suspects a conspiracy behind the escalation amid the claims and counterclaims surrounding this entire incident and violence.
3: स्टूडेंट के द्वारा पत्थरबाजी की जा रही थी, हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरें कैसे ये गाड़ी तोड़ी गई, पूरे शीशे टूटे हुए हैं, यहाँ पे सारी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये पुलिस का व्हीकल है जिस पे अटैक किया गया स्टूडेंट्स द्वारा, जो पुलिस के आला अधिकारी है वो भी पहुँचे हुए हैं। ये देखिए दूसरी गाड़ी जो टूटी है, क्योंकि पुलिस ने वहाँ पे उनको लेके वहाँ पे एक्शन करने की कोशिश की और जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने पत्थरबाजी वहाँ पे स्टार्ट कर दी, और पत्थरबाजी करने के बाद पुलिस भी आगे आई। और इस वक्त ये सारी की सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने लगातार वहाँ पे स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी पत्थर, और ये हम भी तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये पत्थर पड़ा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन साथियों का पत्थर दिखाया जाए यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखिए पूरी गाड़ी तोड़ी गई है। ये देखिए ये DIG की गाड़ी है जिसपे अटैक किया गया है, और जो लगातार यहाँ पे पत्थरबाजी उनके द्वारा की जा रही है। चलिए हम और भी गाड़ियाँ दिखाते हैं, ये भी गाड़ी है जिसमें और ये जो SSP की गाड़ी है उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया, और यहाँ पे पत्थर चलाए गए और पत्थर अभी भी आगे पड़ा हुआ है, और ये पिछला जो विंडो है बिल्कुल तोड़ी गई है। तो ये देखिए ये तस्वीरें, यहाँ पे ये पूरा शीशा तोड़ा गया है क्योंकि वहाँ पे लाठियाँ मारी गई, वहाँ से पत्थर मारे गए, क्योंकि पुलिस ने जब इनको बोला कि हाईवे छोड़ दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी ये लगातार पत्थरबाजी यहाँ पे की गई। Right now we are reporting from Lovely Professional University, where we have seen the students, they were holding protests since morning, and right now the police was trying to use mild lathi charge to disperse all the protesters, but all the protesters they started stone pelting, and the police forced to go back, and a lot of police officials they got injured. We are showing all these pictures at this point of time. Now it has been seen that vehicle have also been burnt by these protesters, so we are showing all these pictures at this point of time. Multiple vehicles had been damaged because of stone pelting, and when they were taking initiatives to disperse all these protesters, they started stone pelting at the force. So I'll request my visitor to just keep on showing all these visuals, because these visuals are very important to show at this point of time. So this vehicle which has been put on fire by these protesters, so we are showing all these pictures at this point of time, that how this violence has taken place in front of

0: a lovely professional university where the force was forced to go back, step back, because a lot of stone pelting started the moment police have taken taken action against these protesters.
1: क्योंकि स्टूडेंट्स ने हमारे को जो ये मैटर है जब हमारे संज्ञान में लाए तो हमने कहा कि नहीं, इसको सीरियसली देखा जाना चाहिए. लेकिन हम जितना इसको देखते गए हमें यही आइडिया हुआ है कि ये सारा र्यूमर रेज है. और स्टूडेंट्स ने जब जब जैसे जैसे मांग की हमने वैसे वैसे पूरी की. वो सीसीटीवी फुटेज देखना चाहते थे कुछ दिनों की, उन्हें वो दिखाई गई स्टूडेंट कमेटी बना के. उनको बार बार आश्वासन दिया गया कि हम हर तरह का एक्शन लेने के लिए तैयार हैं.
2: मैं डॉक्टर मोनिका गुलाटी, रजिस्ट्रार लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, आपसे बात करना चाहती हूँ उस इंसिडेंस के बारे में जो कल से मीडिया और सोशल मीडिया पे चल रहा है. लेकिन उससे पहले मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ जो GH3 के रूम नंबर 504 में रहने वाली लड़कियों ने हमें बताया.
3: सो हम लोग रूम नंबर 504 के स्टूडेंट्स हैं और हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ. हम यहाँ पिछले 2 महीने से रह रहे हैं. प्लीज पुलिस और स्टूडेंट्स हमें आके तंग ना करें. हमारे रूम में ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमारा रूम इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है.
4: हम लोग आज बहुत ज्यादा परेशान हुए और अगर हमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम अपने पेरेंट्स को प्लीज इन्वॉल्व करेंगे. हाँ, अब लोग हमें परेशान मत करेंगे.
3: और पुलिस भी बार बार हमारे रूम पे ना आए, नहीं तो हम अपने पेरेंट्स को बुला लेंगे.
2: इस सबसे यही निष्कर्ष निकलता है कि इस सब के पीछे असामाजिक तत्वों का और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोगों का हाथ है. ये झूठी और मनगढ़ंत अफवाहों से यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की साजिश है. धन्यवाद.
5: Gorakhpur's flooding has now triggered a BJP versus BJP clash. A heated phone call between BJP MP Ravi Kissan and party corporator Viswajit Tripathi over the city's waterlogging has gone viral. Corporator questioned the drainage situation while Kishan asked if he had joined the Samajwadi Party. Tripathi hit back asking if Kishan had joined the BSP. Ravi Kishan later inspected the waterlogged areas with civic officials, saying that the rainfall was unprecedented and the priority was restoring normalcy. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has attacked the BJP over the flooding, alleging that corruption has crippled the drainage systems.
6: वार्डों में लगभग हम बता रहे हैं 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पे सुनिए सुनिए 14 साल बाद ऐसी ऐसी जगह पानी लगा जहाँ कभी पानी नहीं लगता था. स्थिति ये है.
7: सपा ज्वाइन कर ली क्या? सपा वाली बात कर रहे हो? सपा के नेता हो गई लगा.
6: अरे मतलब आप तो ऐसी बात बतिया रहे हैं सपा ज्वाइन के लिए. पानी अगर भर जाए सपा ज्वाइन कर लिया? आप क्या ज्वाइन कर लिए सांसद जी? आप बसपा ज्वाइन कर लिए क्या?
7: हेलो पार्षद जी.
6: जी आप नहीं, आप बसपा ज्वाइन कर लिए हैं? हम सपा ज्वाइन कर लिए हैं.
7: हो गई अचानक कैसे ऐसे बात कर रहा था?
6: नहीं ऐसे नहीं बात. आप कह रहे हैं सपा ज्वाइन कर लिए हैं तो आप बसपा ज्वाइन कर लिए हैं क्या?
7: सब चालू है. तरकुलानी चालू बा.
6: तरकुलानी चालू. पूछिए अधिकारी पानी क्यों नहीं निकल रहा है.
8: गोरखपुर के सांसद सरपंच कर रहे हैं. हमारे साथ सांसद जी है. सांसद जी हमारे साथ खुद सड़क पर करे हैं. भारी बारिश हुई है क्या?
9: बहुत दुखद है. देखिए ऐसा हम लोग सब वही सोच रहे थे लेकिन अब महादेव की दया से पानी काफी स्तर कम हुआ और प्रार्थना है कि जल्दी जनता को इससे निजात मिले. निकले हैं सब लोग. प्रशासन भी लगा है. पूज्य महाराज जी भी लगातार बात कर रहे हैं. और कैंपियरगंज में भी 3 पेड़ गिरने से 3 लोगों की मौतें वो खबर हुई है. उनके परिवार के लिए संवेदना है और महादेव से ही प्रार्थना है कि जल्दी गोरखपुर जनपद को. हमने आपके माध्यम से अभी टोल नंबर भी दिया अपना और हेल्पलाइन नंबर भी है तो कृपया आप लोग उस पर भी फोन करें जब भी अचानक कोई आप लोगों को कहीं कोई दुर्घटना की खबर आती हो. हम मेयर साहब हैं, नगर आयुक्त जी, हम लोग सब पूरे हमारे प्रशासन पूरा जमीन पर, हमारे सारे कार्यकर्ता जमीन पर हैं. जितना हो सके सब लोगों को बचाने का काम. लेकिन पानी काफी हद तक, बारिश रुक गई पिछले 2 घंटे से नहीं हो रही. पानी का स्तर काफी नीचे जा रहा है. हमको लगता है अगर बरसात कल तक भगवान करे नहीं होगी तो 2 दिन में स्थिति सामान्य होगी.
6: माननीय सांसद जी से अनुरोध किया कि माननीय सांसद जी थोड़ा आप उच्च अधिकारियों से बात करिए कि जो भी जल निकासी के समुचित प्रबंध है वो अस्थायी तौर पर प्रभावी तौर पर किए जाएं. लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस रहे हैं और जनता का आर्थिक नुकसान हो रहा है. माननीय सांसद जी मेरी बात से तिलमिला गए और वह पूछने लगे कि आप फला पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं क्या? आप बताइए किसी सांसद से कोई जनप्रतिनिधि समस्या बता रहा है और सांसद जी उसका दल पूछने लगे तो निश्चित ही माननीय सांसद जी के लिए शर्मिंदगी की बात है. राजनीति में और जनता की सेवा में आप जब जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुन लिए गए तो आप पूरी जनता के प्रतिनिधि होते हैं, किसी व्यक्तिगत दल के सदस्यों के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। सांसद जी को वो अपने व्यवहार और अपनी भाषा शैली में संयम रखना चाहिए। यह राजनीतिक क्षेत्र है और जनता के प्रतिनिधि हैं, यह आपका अभिनय का क्षेत्र नहीं है। अभिनय का क्षेत्र आपका बंबई है, आप बंबई में वहां मजाक हंसी करिए वो अलग की बात है, लेकिन जनता पीड़ा में है, जनता का नुकसान हो रहा है घरों में।
10: तैयारी हमारी लगभग पूरी है, ऐसा नहीं है कि कहीं तैयारी में कमी हो। पिछले 3 दिनों से आपने देखा होगा कि लगातार बारिश चल रही है और आज का रिकॉर्ड आपको बताऊं कि जो है आज 1 घंटे के अंदर कुल 116 mm बारिश हुई। हमारा नगर निगम का पूरे अधिकारी पूरे कर्मचारी, इसी तरह से गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सभी कर्मचारी अधिकारी लगे हुए हैं और जगह जगह जहां भी ऐसी संभावना है कि जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है वहां वहां हम लोग मैं और नगर आयुक्त साहब गए, सांसद जी भी हमारे साथ अभी गल्ला मंडी में थे, आप VC साहब GTA के या हमारे साथ हैं, तो इन सब जगहों पे हम लोग देख देख के जो है कोशिश कर रहे हैं कि जो है वहाँ किसी तरह की परेशानी को कम किया जाए।
5: Slipping into a very short break, news and updates will continue on the other side. Stay tuned, stay with us.
11: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
12: Hello and welcome to watching Prime 5 with Prima Isha's Heritage. What's that to be?
11: The show that sets the prime time agenda.
12: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
11: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, weekdays at 5 p.m. only on NDTV, when it really matters.
13: A healthier India doesn't happen in a day.
14: It starts with the health choices that we make every day.
15: हर घर तक सेहत की सही जानकारी पहुंचे
16: और हर हाथ में हो बेहतर सेहत का अधिकार।
17: Because बनेगा स्वस्थ इंडिया is just not about living longer.
18: It's about living healthier, feeling alive and making every day count.
19: One informed choice और एक healthier action.
20: Giving better health in more hands every day.